सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज बुधवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई सन 2026। सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज भारत रत्न के कामराज की जयंती है। रेडियो आज़ाद हिंद इन्हें शत शत नमन करता है। और आइए अब आपको जानकारी दे दें आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जीवन सौरभ, साथी सुनेगा अक्षय निधि और आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे कार्यक्रम होगा वतन का राग, जो केंद्रित है भारत रत्न के कामराज पर। 8:30 बजे इतिहास के पन्नों से आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है मकडाई का गौंड राज्य पर। इस विषय पर डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा सुनिएगा। सुबह 9 बजे कार्यक्रम होगा टैग गुरु। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है एआई पर। आज सुनेगा इसका पार्ट 2 भाग।

सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम होगा भारत विभूति, जो केंद्रित है आशुतोष मुखर्जी पर। प्रस्तुति स्वाति गिरे और विजयकांत नायक की। 10 बजे परिक्रमा, 10:30 बजे सुनेगा काव्य गुंजन। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रश्मि रथी का पहला भाग। 11 बजे सुनेगा हमारे वैज्ञानिक। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर। और 11:30 बजे युग प्रवर्तक विवेकानंद।

तो ये थी जानकारी आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण।

0: ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: बहुत विद्वान संत थे। वे कहीं भी ज्यादा दिन नहीं रहते थे, पैदल ही एक शहर से दूसरे शहर जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। लोग भी उन्हें बहुत मानते थे और उनका सम्मान भी करते थे। एक बार संत पैदल ही दूसरे शहर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सोने का सिक्का मिला। महात्मा ने उसे उठा लिया और अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा कि ये सिक्का मैं सबसे गरीब इंसान को दूंगा। संत कई दिनों तक ऐसे ही किसी इंसान की तलाश करते रहे जो बहुत गरीब हो, लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। इस तरह कुछ समय और बीत गया, संत भी वो बात भूल गए। एक दिन संत ने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। तभी साधु को सोने के सिक्के की याद आई। उन्होंने वो सिक्का निकाला और राजा के ऊपर फेंक दिया। संत को ऐसी हरकत देखकर राजा नाराज हुआ और आश्चर्यचकित भी। राजा ने संत से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि राजा, कुछ समय पहले ये सोने का सिक्का मुझे रास्ते में मिला था। मैं इसे सबसे गरीब इंसान को देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी तक कोई गरीब मनुष्य दिखाई नहीं दिया। तुम्हें देखा तो लगा कि तुम ही सबसे गरीब मनुष्य हो। राजा ने संत से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा? मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है। संत ने कहा, इतना धन होने के बाद भी तुम दूसरे राज्य पर अधिकार करना चाह रहे हो, वो भी सिर्फ उस राज्य का धन पाने के लिए? तो तुमसे बड़ा गरीब और कौन हो सकता है? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी सेना लेकर अपने देश लौट आया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर नहीं रखनी चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत से कमाए गए धन में ही संतोष करना चाहिए। इस दुनिया में संतोषी व्यक्ति ही सबसे सुखी है। संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो साधन होते हैं वे ही पर्याप्त लगते हैं।
1: जीवन सौरभ।

0: कृणवामा शविष्ठेन्द्र कृत्वा मरुतो यद्वशाम। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आपने हमारे साथ मिलकर अपनी सामर्थ्य के अनुरूप अनेकों वीरतापूर्ण कार्य किए हैं। हे शक्ति संपन्न इंद्रदेव, हम मरुतों ने भी अति वीरतापूर्ण कार्य किए हैं। हम मरुदगण अपने पुरुषार्थ से जो भी चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। वधीम वृत्रम मरुत इंद्रियेण स्वेन भामेन तविशो बभूवान अहमेता मनवे विश्वश्चंद्राह सुगा अपश्चकर वज्रबाहुः। हे मरुतो, अपनी सामर्थ्य शक्ति से ही मैंने वृत्रासुर का संहार किया और अपने ही पराक्रम से शक्ति संपन्न बना। वज्र को हाथों में धारण करके मैंने ही मनुष्यों तथा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए आनंददायी जल प्रवाहों को सहजता से प्रवाहित किया। अनुत्तमा ते मघवन्निकीर्णु न त्वावाम अस्ति देवता विदानः न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणु ही प्रवृद्ध। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आपसे बढ़कर और कोई धनवान नहीं है, आपके समान कोई ज्ञानी भी नहीं है। हे महान इंद्रदेव, आपके द्वारा किए गए कार्यों की समानता न कोई कर सका है और न ही आगे कर सकेगा। एकस्य चिन्मे विभव स्तवोजो यानु दधृष्वान कृणवई मनीषा अहम ह्यु ग्रो मरुतो विदानो यानि च्यवमिंद्र इदीश एशाम। मैं जिन कार्यों को करने की कामना करता हूँ उन्हें एकाग्र मन से करता हूँ, इसलिए मेरी अकेले की कीर्ति पताका चारों ओर फहरा रही है। हे मरुदगणों, चूंकि मेरे अंदर वीरोचित शौर्य और विद्वत्ता है, इसलिए जिनकी तरफ भी जाता हूँ उनका स्वामी बनकर शक्तियों का उपभोग करता हूँ। अमंदन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मचक्र इंद्राय वृष्णे सुमखाय मह्यं सख्ये सखायस्तन्वे तनुभिः। हे नेतृत्वकर्ता मित्र मरुतो, आपने जो प्रशंसित स्तोत्र मेरे निमित्त रचित किए हैं उनसे मुझे अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है। ये स्तोत्र वैभवशाली शक्ति संपन्न उत्तम याज्ञिक तथा शक्ति संपन्न मेरी सामर्थ्य को और भी पुष्ट करने वाले हैं। एवे देते प्रति मा रोचमाना अनेद्यः श्रव एषो दधानाः संचक्ष्या मरुतश्चंद्रवर्णा अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्। हे मरुतो, इसी प्रकार मुझे स्नेह प्रदान करते हुए प्रशंसनीय धन धान्य को धारण करते हुए आनंद प्रदायक स्वरूप से युक्त होकर चतुर्दिक मेरा यशोगान करें। कोन्वत्र मरुतो मामहे वह प्रयातन सखी रक्षा सखायह मन्मानी चित्रा अपि वातयंत एषां भूत नवेदा मरितानाम। हे मरुद्गणों, यहाँ कौन आपकी पूजा अर्चना करते हैं? यह भली प्रकार जानकर मित्र के समान जो आपके हितैषी हैं, उनके समीप जाएं, उनके द्वारा किए जाने वाले उद्देश्य पूर्ण स्तोत्रों के अभिप्राय को जानकर उसे पूरा करें। आ यद्दुवस्याद्दुवसे न कारुरस्मान् चक्रे मान्यस्य मेधा ओषुवर्त मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अर्चत। हे मरुतो, सम्माननीय स्तोता की मति हमें प्राप्त हो, जिससे हम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर सकें। चूंकि स्तोता आपकी स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं, अतः आप उन ज्ञान संपन्नों की ओर उन्मुख हों। एष वह स्तोमो मरुत इयम् गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा या सीष्ट तन्वे वयाम् विद्यामेषम् व्रजनम् जीरदानुम्। हे मरुतो, यह वाजी, यह स्तोत्र आपके लिए है, अतः आप आनंददायी सम्माननीय स्तोता को परिपुष्ट करने के निमित्त पधारें। हम भी अन्न बल तथा यशस्वी धन प्राप्त करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 165 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति

भक्ति संगीत सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरी यानी दीप्ति के साथ।

कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले हैं, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी।

हम ना बोलें फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है।

व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत यहीं संपन्न हुआ। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंदी के साथ। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंदी के साथ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंद।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

एक दृष्टि जो स्व की न हो समूह की हो, एक दृष्टि जो स्वयं को उसी ईमानदारी से परखे जिस ईमानदारी से वो दुनिया को परखती है, एक मन जो समय के प्रवाह के साथ आए मूल्यगत परिवर्तनों को खारिज करते हुए अपने आदर्शों पर टिका रहे, एक मन जिसके लिए राष्ट्र सदैव प्रथम रहे और उसके लिए जो सदैव सतर्क और कर्मशील रहे, उसे देश की आत्मा भारत रत्न कहकर पुकारती है। एक ऐसी ही विलक्षण विभूति थे भारत रत्न के कामराज। वो एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी

राष्ट्रहित में दूसरों को इस पद पर बैठाया। वो 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और शिक्षा, उद्योग तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व काम किए। के कामराज का जन्म 15 जुलाई सन 1903 को तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ था। उनका बचपन कठिनाई भरा था। वो कुछ ही साल स्कूली शिक्षा ग्रहण कर सके। पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां की मदद करने के लिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 11 साल की उम्र में वो अपने चाचा की राशन की दुकान पर बैठने लगे, लेकिन देश की राजनीतिक स्थिति से वो परिचित थे क्योंकि समाचार पत्र पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। यही कारण है कि होम रूल आंदोलन के समय उन्होंने सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके किशोर मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लेकर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का संकल्प लिया। अन्याय और अन्यायी सत्ता दोनों ही उन्हें सहन नहीं हो रहे थे। अंग्रेजों की बर्बरता ने जैसे उनके भीतर एक चिंगारी सुलगा दी थी। अपनी मातृभूमि पर विदेशी सत्ता का आधिपत्य उन्हें कचोट रहा था और राष्ट्र प्रेम में डूबकर वो स्वाधीनता समर में कूद पड़े।

इस भेंट का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। के कामराज ने असहयोग आंदोलन में प्राणपण से भागीदारी की। नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1930 का नमक सत्याग्रह हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, स्वाधीनता समर में वो सघन रूप से सक्रिय रहे। विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के कारण वो 6 बार गिरफ्तार हुए और लगभग 3000 दिन जेल में बिताए। सन 1937 में प्रांतीय चुनावों में सीट जीतकर उन्होंने विधानसभा में प्रवेश किया। 1946 में वो चुनाव जीतकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे थे। इस तरह उनके जीवन का हर पल देश को ही समर्पित रहा। भारत की आजादी के बाद संसदीय चुनावों में वो लोकसभा सदस्य चुने गए। 12 अप्रैल सन 1954 को जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब के कामराज ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। 13 अप्रैल सन 1954 से 2 अक्टूबर सन 1963 तक उन्होंने इस पद के दायित्व का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। दक्षिण भारत में के कामराज को शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उनके शासनकाल में तमिलनाडु में साक्षरता दर 7% से बढ़कर 37% तक पहुंच गई थी। उन्होंने हर गांव में प्राइमरी स्कूल और हर पंचायत में हाई स्कूल खोलने की मुहिम चलाई। इसके साथ ही उन्होंने 11वीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की योजना शुरू की। मुफ्त शिक्षा के साथ साथ उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क गणवेश की व्यवस्था भी की। बच्चों के लिए स्कूल में मध्याह्न भोजन की योजना लाने का श्रेय भी के कामराज को ही जाता है। बताया जाता है कि अपने एक दौरे के दौरान उन्होंने एक किशोर बालक को मवेशी चराते हुए देखा। वो उस बच्चे के पास गए और पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे खाना कौन खिलाएगा, बिना काम किए हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। बच्चे का ये जवाब उनके भीतर कहीं धंस सा गया और उन्होंने तय कर लिया कि उनके राज्य में कोई भी बच्चा अपने भोजन की व्यवस्था करने के कारण स्कूल न जाए, ऐसा नहीं होगा। इस तरह मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील की उन्होंने शुरुआत की। चूंकि अभाव के कारण उनकी शिक्षा बाधित हुई थी, इसलिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना उनकी प्राथमिकता थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 12,000 से अधिक स्कूल बनवाए थे।

के कामराज उच्च आदर्शों को जीने वाले राजनेता थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति सवालों के घेरे में थी और उधर वित्त मंत्रालय ने जनता पर कर का बोझ बढ़ा दिया था। इस तरह सत्ताधारी दल की साख घट रही थी, जनता आक्रोशित थी। इन परिस्थितियों में उनका सुझाव था कि वरिष्ठ नेताओं को संगठन की मजबूती के लिए काम करना चाहिए, न कि सरकार में रहकर पदों का लाभ लेना चाहिए। उनकी पहल पर कामराज योजना लागू हुई। उन्होंने उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हुए पहले स्वयं इस्तीफा दिया। इस तरह कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने पद का लालच छोड़कर जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए काम किया। दरअसल के कामराज गांधीवादी मूल्यों के पक्षधर थे। सन 1964 से 1966 के बीच भारत के दो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही चल बसे थे। इतने कम समय के भीतर देश के दो बड़े नेताओं के विदा होने से स्वाभाविक रूप से देश में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया था। के कामराज का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद वो स्वयं प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सामने रखा। इसी तरह जब शास्त्री जी का असामयिक निधन हुआ तब भी उनके सामने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने का प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में स्त्री शक्ति को ये दायित्व सौंपा। ऐसे उच्च आदर्शों के थे के कामराज। देश का हित उनके लिए सर्वोपरि था। सामूहिक नेतृत्व में उनका अटल विश्वास था। वो विभिन्न मुद्दों पर विभेद का समाधान सर्वसम्मति निर्माण के द्वारा करने के पक्षधर थे। उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। समय आने पर उन्होंने पद और संगठन दोनों का त्याग किया, लेकिन अपने आदर्शों को जीवित रखा। के कामराज ने मद्रास में शिक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण काम किए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान फोटो फिल्म फैक्ट्री ऊटी जैसी अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में 13 सिंचाई बांध परियोजनाएं भी आरंभ हुई, जिससे पेयजल संकट के साथ ही कृषि क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ। निरक्षरता उन्मूलन के लिए जहां एक ओर उन्होंने मुफ्त शिक्षा, मध्यान्ह भोजन योजना, प्राथमिक विद्यालय, अनिवार्य शिक्षा योजना की शुरुआत की, वहीं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संस्थान के लिए आवश्यक भूमि, भवन तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही उन्हें कल्वी थंथई यानी शिक्षा के जनक उपनाम से पुकारा गया। आज भी तमिलनाडु के स्कूलों में उनके जन्मदिन को एजुकेशन डेवलपमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। पल पल देश की सेवा करते हुए 2 अक्टूबर सन 1975 को उन्होंने अंतिम सांस ली। जब उनका निधन हुआ तो उनके पास 130 रुपए, 2 जोड़ी चप्पल, 4 कमीजें और कुछ किताबें ही कुल जमा पूंजी के तौर पर थीं। सन 1976 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: पन्नों से,
1: इतिहास के पन्नों से।
0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम इतिहास के पन्नों को उलटते हुए अपने 17वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। हम थोड़ी सी आपको याद दिला दें कि पिछले एपिसोड में 16वें अंक में हमने बात की थी चंद्रपुर महाराष्ट्र में। हमने वहां के गोंड शासकों की बात की, तलवार सिंह की, हीर शाह की, और उसके बाद हमने बात की राजमाता हीरई के राजत्व काल की, कि कैसे हीर शाह की मृत्यु के उपरांत उनकी रानी हीरई ने राजकाज संभाला। आज हम जो बातें करने जा रहे हैं, हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा सक्सेना, जो कि पुरातत्वविद हैं, प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं, और अभी तक हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देती आई हैं गोंड शासकों के बारे में, गोंड शासन के बारे में। तो पूजा जी का हम स्वागत करते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो पूजा जी, आज हम किस गोंड राज्य की बात करेंगे?
2: पिछले अंक में हमने महाराष्ट्र के चंद्रपुर की बात की थी, तो वहीं से आरंभ कर रही हूँ।
0: अच्छा,
2: और एक नए गोंड राज्य की बात हम करेंगे
0: जी।
2: तो चंद्रपुर में एक ककट राय नाम का व्यक्ति था।
0: अच्छा।
2: उसका दूसरा नाम महाराज सिंह भी मिलता है, संभवतः बाद में उसने अपना नाम बदल लिया
0: जी।
2: तो ककट राय जब चंद्रपुर में रहता था, उस समय गढ़ा के जो गोंड राज्य थे जबलपुर वाले, उनके साथ में ककट राय का कोई संबंध रहा होगा
0: जी।
2: किसी युद्ध में इन्होंने कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी
0: जी।
2: तो ककट राय को गढ़ा के गोंड राज्य ने खुश होकर अपना कुछ भाग राज्य का
0: जी,
2: वो दे दिया, और ये था मध्य प्रदेश में जो वर्तमान हरदा जिला है वो, और उसके आसपास का हिस्सा।
0: अच्छा।
2: तो एक नए गोंड राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम मकड़ाई मिलता है।
0: अच्छा।
2: तो एक नया गोंड राज्य बना, मकड़ाई का गोंड राज्य, जो कि हरदा और उसके आसपास फैला हुआ था। इसका जो विस्तार था
0: जी,
2: अगर हरदा और उसके आसपास के हम क्षेत्र देखें
0: जी,
2: तो ये उत्तर में एक हरदा से घोड़ा गांव नाम की एक जगह आती है
0: जी,
2: और यहाँ से दक्षिण की तरफ जाएं तो गोलखेड़ा नाम की एक जगह
0: अच्छा,
2: आती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ था। इसी तरीके से पूर्व में एक माचक नदी है, और पश्चिम में छिपाबड़ चारुआ नाम के गाँव हैं, बड़े प्रसिद्ध गाँव हैं, और किसी समय में ये बड़े व्यापारिक मार्ग के बड़े महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक का इनका पूरा क्षेत्र फैला हुआ था
0: जी।
2: इसके साथ ही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है नर्मदा का, हमने अभी दूसरा पार्ट पार कर लिया है। तो ये सतपुड़ा के घने जंगल हैं, और यहाँ पर माचक, सियानी, घोघई, सामहारी, ऐसी चार सहायक नदियां नर्मदा की बहती हैं
0: जी।
2: तो ये क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक दृष्टि से भी वन संपदा है, इतनी
0: जी,
2: बड़ी
0: जी,
2: बड़ी चार नदियां बह रही हैं, और वन क्षेत्र बहुत घना है, आज भी घना है
0: जी।
2: इसके साथ ही जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आपको यात्रा करनी है
0: जी,
2: तो फिर आपको नर्मदा नदी जो क्रॉस करनी पड़ती थी वो हरदा, होशंगाबाद यहाँ से करते थे, हंडिया से। तो इसलिए यह व्यापारिक चुंगियां भी होती थी, उस कारण से भी यह क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण था। तो मकड़ाई का महत्व उस समय बहुत रहा होगा। तो यहाँ पर फिर जब गोंड राज्य की स्थापना हुई तो एक किला भी बना, और किले के अंदर बहुत सारे महल, मंदिर
0: जी,
2: और
0: जी,
2: दूसरे स्थान भी निर्मित हुए।
0: उनके बारे में तो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन फिर से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या इस क्षेत्र को भी इसलिए चुना गया क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पर भी गोंड राज्य स्थापित हुए वहाँ खास तौर पर वन क्षेत्र और नदियाँ जरूर थी।
2: जी हाँ, जैसा हमारी पहले से चर्चा होती आ रही है कि गोंडों का वन क्षेत्र पर बहुत अच्छा अधिकार है, वे उसके बहुत अच्छे जानकार हमेशा से रहे हैं, और वे वन संपदा की सुरक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए इन क्षेत्रों में हमेशा से गोंड जनजाति का फैलाव तो था ही। और हमने जैसा पहले इतिहास में सुना था, जब हम गढ़ा के गोंड राज्य की बात कर रहे थे तो हमने वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी, और हम सब जानते हैं कि जब मुगल सेना नायक आसफ खान ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया और नरई में रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच में युद्ध हुआ, तो रानी दुर्गावती वीरांगना हुई, और उसका परिणाम यह हुआ कि गढ़ा के गोंड राज्य के 10 किले गढ़ा को मुगल शासक अकबर को देने पड़े थे
0: जी।
2: और हमने चर्चा में ये भी लिया था कि अकबर इन सघन क्षेत्र में फैले हुए 10 गढ़ों पर अपना अधिकार बहुत अच्छा रख नहीं पा रहा था, वह संचालित नहीं कर पा रहा था, तो उसने वो 10 गढ़ जो हैं वापस कर दिए थे
0: जी।
2: और ये 10 गढ़ कौन थे, जो गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मिलती है उसी समय की, वो है गणेश नृप वर्णन संग्रह श्लोका।
0: अच्छा।
2: तो इसका एक 27वां श्लोक है, संस्कृत में है ये, और इसमें हमें उन 10 गढ़ों के नाम मिलते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है कि करवाए चौकी गढ़ रायसेनम भोपाल भौरास गुनौर दारिम मरकाए काला पवनम सरा दिल्ली धनम चार पयेन निर्मयो भूत। अब इनमें इन 10 गढ़ों का नाम है।
0: अच्छा।
2: करवाई यानी कि कुरवाई जिसे आज कहते हैं, और चौकीगढ़ फेमस ही है, भोपाल के आसपास है, और रायसेन का किला भी भोपाल से नजदीक है, भोपाल तो भोपाल ही है, मध्य प्रदेश की आजकल राजधानी है, भौरास और गुन्नौर तो भोपाल के पास ही रायसेन जिला लगता है, वहां से गिन्नौरगढ़ का किला, आजकल ये गुन्नौर की जगह गिन्नौर कहलाता है, तो गिन्नौरगढ़ का किला है, दारी यानी दारी बारी का एक किला है, आजकल ये बारी कहलाता है।
0: अच्छा।
2: हाँ, और फिर ये जो मरकाई आ रहा है यही आजकल मकड़ाई कहलाता है।
0: ओ,
2: हाँ,
0: तो ये बात आज हम कर रहे हैं
2: जी। हाँ, और इसके बाद इसी श्लोक में अगला नाम है काला वनम। आजकल एक हरदा के पास एक जगह है कारू वन के नाम से।
0: अच्छा।
2: हाँ, तो ये कारू वन आज बोला जाता है, पहले इसके कई नाम मिलते हैं, जो स्पष्ट नाम हमें समझ में आता है वो है काल उपवन। तो वो काल उपवन कई बार अभ्रंश होते होते आजकल तो कारू वन ऐसा नाम आ गया है। तो ये श्लोक बताता है कि ये 10 गढ़ दिए गए थे और यही 10 गढ़ वापस हुए थे।
0: अच्छा।
2: तो मकड़ाई भी उनमें से एक था, और वो फिर जो स्थानीय गोंड थे उनके पास पुनः वापस आ गया था। तो 1657 तक जो ये काला उपवन था
0: जी,
2: ये ही मकड़ाई के गोंड राज्य की प्रमुख राजधानी रहा
0: जी।
2: लेकिन 1657 में मकड़ाई के राजा हुए मकरंत शाह, और मकरंत शाह को ऐसा लगा कि काला उपवन से अधिक मकड़ाई का सामरिक महत्व है।
0: अच्छा।
2: ये प्राकृतिक रूप से अधिक सुरक्षित भी है, इसलिए उन्होंने 1657 ईस्वी में अपनी राजधानी काला उपवन से बदलकर मकड़ाई स्थानांतरित कर दी। तो तब से मकड़ाई जो है वो गोंड राज्य वंश की राजधानी रही।
0: आपने बताया कि मकड़ाई उस समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था, एक व्यापारिक स्थान था, जहां दक्षिण जाने के लिए व्यापारिक कर लगाए जाते थे, चुंगी लगती थी। तो क्या आगे क्या हुआ राजधानी बनने के बाद, गोंड शासन का यहाँ पर क्या हुआ?
2: जी हाँ, जैसा आपने कहा कि यह एक व्यापारिक मार्ग था और महत्वपूर्ण भी रहा होगा, तो इसके कई प्रमाण भी मिलते हैं
0: जी।
2: अगर आप हरदा जिले में एक गांव है चारुवा गांव,
0: अच्छा,
2: वहां जाएं तो वहां पर दो बावड़ियां हैं, इसमें से एक बावड़ी में एक शिलालेख लगा हुआ है।
0: अच्छा।
2: और ये शिलालेख है 1670 ईस्वी का
0: जी।
2: और ये वो समय है जब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था
0: जी।
2: और इसी समय महाराष्ट्र की तरफ, मध्य भारत की तरफ एक नई शक्ति बड़ी जोर से उभर रही थी, वो थी मराठों की शक्ति। तो शिवाजी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, और दूसरी जो शक्ति इसके समकालीन आ रही थी वो थी पेशवा बाजीराव प्रथम। तो एक ओर से औरंगजेब जो है वो दक्कन पर अधिकार करने के लिए लालायित था। आपने तो इतिहास में पढ़ा भी होगा कि औरंगजेब की दक्कन नीति तो उसका नासूर बन गई थी, उसने दिल्ली छोड़कर अपना पूरा कंसंट्रेशन दक्कन पर लगा दिया था। उसका कारण ये था कि व्यापारिक मार्ग पर अधिकार करना था, सारा व्यापार जो है वो दक्कन से होता हुआ मसूली पट्टनम जो जहाजी पत्तन था वहां से हुआ करता था, और मुगलों ने जो इतनी समृद्धि हम देखते हैं मुगलों के काल में, उसका भी एक बड़ा कारण था कि उन्होंने दक्कन पर अधिकार करके वहां की जो संपत्ति थी उसको दिल्ली स्थानांतरित किया था, दूसरा मसूली पट्टनम पर अधिकार करके उससे होने वाले जो व्यापारिक लाभ थे वो भी दिल्ली की तरफ बहने लगे थे। तो एक और तो औरंगजेब इस व्यापारिक मार्ग पर अधिकार करना चाहता था, दूसरी ओर मराठा जो थे वे दिल्ली से मुगल शक्तियों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, तीसरा एक और शक्ति थी वो थी हैदराबाद का निज़ाम
0: जी, जी।
2: तो ये तीन शक्तियाँ उभर कर आ रही थीं और तीनों के लिए ही ये व्यापारिक मार्ग महत्वपूर्ण था, तो तीनों की ही सेना इस व्यापारिक मार्ग पर आया जाया करती थी
0: जी, जी।
2: और उसका खामियाजा कह सकते हैं कि यहाँ पड़ने वाली जो चौकियाँ थीं, किले थे, गढ़ थे या छोटे छोटे राज्य और रियासतें थीं, उनको भुगतना पड़ता था। तो लगातार जो मकड़ाई राज्य था वो मराठों का साथ दे रहा था और जीतने पर फायदा भी था और हारने के कई खामियाजे भी थे
0: जी, जी।
2: तो सन 1723 में जब पेशवा बाजीराव प्रथम मालवा की विजय के लिए निकले
0: जी।
2: तो वो मकड़ई भी रुके थे लगभग एक हफ्ता के लिए। हाँ, तो इस प्रकार के कई हमको ऐतिहासिक संदर्भ लगातार यहाँ से मिलते हैं।
0: हाँ बिल्कुल श्रोताओं, तो ये मध्य भारत का एक क्षेत्र इस बात से ही साबित हो जाता है कि बाजीराव प्रथम यहाँ आए थे और एक हफ्ते रुके थे, तो मतलब ये आवागमन के लिहाज से एक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था।
2: जी हाँ।
0: और जैसे कि आपने कहा कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी भाग को जोड़ने वाला ये रास्ता है और नर्मदा पार करने के बाद ही आप दक्कन यानी दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था ही ये सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से। गोंड राज्य की राजधानी बनाने से भी काफी फायदा हुआ होगा गोंडों को आर्थिक रूप से भी यहाँ पर आने से। तो
2: जी हाँ, मकड़ाई का महत्व बहुत बढ़ गया
0: जी।
2: हंडिया उनके पास ही था, हंडिया ही वह जगह है जहाँ से नदी को पार करके दक्षिणी मार्ग पर यात्रा आरंभ करते हैं,
0: बिल्कुल।
2: तो उसका निश्चित रूप से लाभ तो पहुँचा ही होगा। पर क्या होता है कि जो व्यापारिक मार्ग पर रहने वाले होते हैं उनको इतिहास में भी सक्रिय भाग लेना पड़ता है
0: जी,
2: हमेशा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो जैसे कि सन 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ
0: जी,
2: जो कि भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था, तो जब मराठे दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे
0: जी,
2: उस समय मकड़ाई ने भी मराठों का साथ दिया और उस समय मकड़ाई के राजा थे धारशाह।
0: अच्छा।
2: तो धारशाह की सेना मराठों के साथ दिल्ली तक गई थी
0: जी,
2: और हम सब जानते हैं कि पानीपत का परिणाम क्या हुआ और इससे मराठों की शक्ति सीमित हो गई
0: जी,
2: और दिल्ली का इतिहास या यूं कहें संपूर्ण भारत का इतिहास ही बदल गया और हमने फिर मुगलों के बाद औपनिवेशिक काल के 200 वर्ष सहे।
0: बिल्कुल।
2: तो ये एक लंबा इतिहास है।
0: तो आपने जो हमें ये जो सन बताई ईस्वी सन, इससे साफ ये मालूम जरूर चलता है पूजा जी कि यहाँ पर लंबे वक्त तक गोंड राज्य बना रहा, क्योंकि 1723 में बाजीराव प्रथम आए थे, फिर आपने बताया कि 1761 में पानीपत का जब युद्ध लड़ा गया तब भी मकड़ाई के लोग जो थे और जो राजा थे शासक थे उन्होंने मराठों की मदद की थी
2: जी। पर मकड़ाई के इतिहास में जब पानीपत से धारशाह की सेना लौटी उसके बाद एक स्थानीय युद्ध हुआ।
0: अच्छा।
2: और उसमें धारशाह की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र उस समय बहुत छोटा था
0: जी।
2: तो जो उनकी रानी थी खांडा उन्होंने वो स्थानीय युद्ध लड़ा था। हाँ, हमने हमेशा देखा है कि जो गोंड रानियां हैं
0: जी, जी, जी।
2: वो भी बड़ा युद्ध में कौशल है, पारंगत है और बड़ी शक्ति से लड़ती है
0: जी।
2: और उस युद्ध के बाद फिर रानी खांडा ने ही मकड़ाई राज्य का राजकाज संभाला था।
0: अच्छा।
2: तो ये भी इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है मकड़ाई के अंतर्गत।
0: यहाँ पर भी स्त्री शक्ति ने लंबे वक्त राजकाज किया है।
2: और फिर आगे हम देखते हैं मकड़ाई के इतिहास में कि 1893 तक आते आते
0: जी
2: औपनिवेशिक साम्राज्य की काली छाया मकड़ाई पर भी पड़ गई।
0: तो पूजा जी, ये जब औपनिवेशिक काल आ गया यहाँ पर, अंग्रेज भारत आ गए, उनकी नीतियां हर ओर छा गईं, उसके बाद क्या हुआ यहाँ मकड़ाई और इस पूरे क्षेत्र का किस तरह विकास हुआ?
2: एक अच्छे राजा की पहचान ये होती है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो भी रहा है
0: जी,
2: या किसी और सत्ता का अधिकार बढ़ता जा रहा है
0: जी,
2: तब भी राजा तो अपनी प्रजा के बारे में सोचता ही है।
0: बिल्कुल।
2: तो मकड़ाई के राजा ने भी ऐसा ही किया। मकड़ाई के एक राजा हुए हैं राजा लच्छू शाह
0: जी,
2: और उन्होंने उस जमाने में
0: जी
2: 10,000 रुपए दान देकर व्यक्तिगत खजाने से
0: अच्छा।
2: और एक कृषि महाविद्यालय बनवाया था।
0: वाह।
2: ये सन 1902 की बात है।
0: तो शिक्षा के लिए वो कितने गंभीर थे इसी बात से पता चलता है।
2: जी हाँ, केवल कृषि महाविद्यालय ही नहीं
0: जी
2: बल्कि बहुत सारे विद्यालय उस समय के हमको दिखाई देते हैं। मकड़ाई के किले में ही एक बिल्डिंग है, उसका नाम है दीवान साहब का बंगला।
0: अच्छा।
2: आजकल एक लंबे समय तक वहाँ पर स्कूल चलता रहा। ये मकड़ाई राज्य द्वारा ही स्थापित किया गया प्राचीन स्कूल है।
0: अच्छा।
2: तो हम मकड़ाई के इतिहास में देखते हैं कि जो राजा थे मकड़ाई के छत्रसाल, उनकी मृत्यु हो गई
0: जी।
2: तो उनका जो भाई था द्रकपाल शाह, उसे राजा घोषित किया गया। लेकिन द्रकपाल शाह उस समय नाबालिग थे।
0: अच्छा।
2: तो असल में जो राज्य किया वो उनकी भाभी ने किया, यानी कि जो राजा छत्रसाल की रानी थी भूप कुंवर, उन्होंने संरक्षिका बनकर मकड़ाई राज्य का शासन संभाला।
0: तो फिर एक बार गोंड शासन की जो कमान थी वो एक महिला के हाथों में।
2: हाँ बिल्कुल। और रानी भूप कंवर का जो शासन काल है उसे बड़े लोकहित कार्यों के लिए जाना जाता है
0: जी।
2: तो इस समय उन्होंने एक मकड़ई राज्य में काउंसिल बनवाई।
0: अच्छा।
2: काउंसिल के कई सदस्य थे और एक थम्बू शाह करके एक विद्वान हुआ करते थे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। और बाद में द्रकपाल शाह जो है वो स्वयं उस काउंसिल के अध्यक्ष बने।
0: अच्छा।
2: तो जब द्रकपाल शाह काउंसिल के अध्यक्ष बने, क्योंकि वो खुद बहुत पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षित थे, तो वो शिक्षा का महत्व समझते थे और उन्होंने रियासत में 8 स्कूल बनवाए और उन्हें सफलतापूर्वक संचालित किया।
0: वाकई तो, मतलब ये बहुत आश्चर्य की भी बात है, सुखद आश्चर्य की बात है कहें तो, क्योंकि उस समय तो कई कई नगरों में भी इतने स्कूल नहीं होते थे, इतनी शालाएं नहीं होती थी, और मकड़ाई जैसी जगह पर उन्होंने 8 स्कूलों को संचालित किया।
2: तो हरदा का एक स्थान है सिराली
0: जी।
2: तो वहां पर उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी माध्यम,
0: अच्छा,
2: दोनों माध्यमों में मिडिल स्कूल खोले।
0: अरे वाह।
2: इसके साथ ही मकड़ाई, पिपलिया, मिहिंद गांव, दीप गांव कला, जिनवानिया, बेड़िया कला, मर्दालपुर, इन सभी जगहों पर हिंदी के प्राइमरी स्कूल खुले।
0: अच्छा।
2: ये स्कूल आज तक हैं और कुछ में तो आज भी स्कूल संचालित हो रहे हैं और कुछ नए बनकर अब नए नाम से भी स्कूल संचालित हो रहे हैं।
0: तो अभी भी मतलब बहुत सारे उन गांव में वो स्कूल्स हैं उस जमाने वाले अभी भी हैं।
2: जी हाँ।
0: मकड़ाई के जो स्थापत्य कला थी, जो वहाँ की मॉन्यूमेंट्स थे, उनके बारे में कुछ नहीं बताया।
2: जैसा कि हमने पहले भी बात की कि सामरिक और प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है
0: जी।
2: तो आज भी अगर जाएंगे ना आप, तो हरदा शहर से आप काफी दूर निकल जाएंगे एकदम वीराने में, हालांकि सड़क बहुत अच्छी है वहां तक जाने के लिए, लेकिन एक पहाड़ी आएगी।
0: अच्छा।
2: और वो पहाड़ी चारों ओर से सघन वन से आज भी घिरी हुई है
0: जी।
2: और दो ओर से नदियां बहती हैं। तो ये स्थान चुना गया था उस समय, हमने पहले भी बात की थी कि गोंड किला बनाने के लिए एक अलग ही उनकी नीतियां हैं।
0: बिल्कुल।
2: वे क्या क्या गुण देखते हैं किसी स्थान के चयन के लिए, तो सेम यहाँ पर भी है। उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी को देखा, उस पर तालाब भी है और ऐसी पहाड़ी है जो तीन ओर से एकदम खड़ी हुई है
0: जी।
2: और एक ओर से जिस ओर से रास्ता आता है वहां पर एक विशाल प्रवेश द्वार है, तो दो या तीन प्रवेश द्वार रहे होंगे लेकिन आज एक ही स्थित
0: अच्छा।
2: है। तो किला जो है वो वैसे ही ऊंची ऊंची दीवारों से घेर कर बनाया गया है और बड़ा ही सुदृढ़ दिखाई देता है। हालांकि सन 1985 में मकड़ाई किले में आग लग गई थी।
0: अच्छा।
2: इस कारण से बहुत सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, क्योंकि ज्यादातर जो भवन थे उनमें छत निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग किया गया था।
0: तो
2: जब आग लगी तो छतें नीचे गिर गईं, जलकर राख हो गया। तो अभी बहुत कम भवन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम किले में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें दो गुड़ी दिखती हैं।
0: हाँ।
2: गुड़ी क्या होती हैं? एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कक्ष होता है, उसकी गुंबजाकार या वॉल्ट के आकार की छत होती है।
0: बिल्कुल।
2: तो ज्यादातर उनमें एक शिवलिंग रखा होता है।
0: अच्छा।
2: वे किसी के मरणोपरांत स्मृति में बनाए जाते हैं। तो ऐसी दो गुड़ी अभी भी है किले में। इसके बाद हम और आगे चलेंगे तो हमको एक महल के भग्नावशेष दिखाई देते हैं।
0: अच्छा।
2: ये महल बड़ा ही खूबसूरत रहा होगा, पर अब बस इसके कुछ ही अवशेष बाकी हैं, क्योंकि जब आग लगी तो इसकी पूरी छतें जल गईं और उसके ताप से फिर जो ब्रिक की और चूने की जो दीवारें थी वो भी ढह गईं। तो अब बहुत ही कम हिस्सा बाकी है, लेकिन जो दीवारें आज भी शेष हैं, आप उसके द्वारा जो महल की सुंदरता रही होगी उसका अनुमान लगा सकते हैं। दीवार पर बहुत सुंदर सुंदर ताक बने हैं, उन पर बहुत सुंदर चूने का काम है जिसे स्टको वर्क कहा जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दीवारों का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, दरवाजों का, मेहराबों का भी कुछ हिस्सा अभी बाकी है। तो यहाँ पर देखने लायक एक महल है
0: जी।
2: और इसके साथ ही एक राम मंदिर है।
0: अच्छा,
2: ये भी उसी मकड़ाई राज्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो राम मंदिर है ये पूरी तरह से अभी सुरक्षित है। हाँ, और ये राम मंदिर जो है इसमें अंदर एक गर्भगृह है
0: जी,
2: और सामने एक मंडप है।
0: अच्छा,
2: गर्भगृह में राम गमन की प्रतिमा रखी हुई है।
0: अच्छा,
2: जिसमें भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता तीनों वन में गमन कर रहे हैं
0: जी,
2: जब उन्हें वनवास प्राप्त हो गया है। तो अगर आप इस हरदा क्षेत्र में देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा ऐसे मंदिर मिलते हैं जिनमें राम वन गमन की प्रतिमाएं पूजित हैं। ये इस क्षेत्र की मुझे लगता है कि एक विशेषता है जो मैंने अपने कार्य की सर्वेक्षण के दौरान यहाँ पर देखी।
0: जी,
2: तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वन क्षेत्र हैं
0: जी,
2: उनमें राम वन गमन की बहुत प्रतिमाएं होती भी हैं, ये भी एक कारण है
0: जी।
2: और जो गोंड राजवंश की एक आस्था श्री राम के प्रति रही होगी उसका भी ये परिचायक है।
0: बिल्कुल।
2: तो आज भी ये मंदिर जो है जीवंत है और यहाँ पर पूजा पाठ होते हैं। मंदिर बड़ा सुंदर है
0: जी,
2: इसमें मुख्य रूप से लकड़ी का उपयोग किया गया है निर्माण के लिए। तो मंदिर का जो मंडप है वो 2 मंजिला है और लकड़ी के सुंदर सुंदर स्तंभ लगाए गए हैं। ऐसा भी लगता है कई बार देखने से कि कभी ये पेंटेड भी रहे होंगे, बहुत सुंदर चित्रकारी इन पर की गई होगी। वर्तमान में तो चित्रकारी दिखाई नहीं पड़ती पर कहीं कहीं ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इसकी जो छत है वो ढलवा है और क्योंकि ये औपनिवेशिक काल था, अंग्रेजों का भारत में आगमन हो चुका था, तो छत निर्माण के लिए टिन का उपयोग किया गया है।
0: अच्छा,
2: हाँ, और उसके ऊपर कभी टेराकोटा के खपरेल भी रहे होंगे, बाद में फिर वो कभी खपरेल तो हट गए, अब टिन की छत बाकी
0: टीन
2: है
0: की चादर।
2: पर बड़ा सुंदर दिखता है ये मंदिर देखने में।
0: तो पूजा जी, एक उस क्षेत्र में, हरदा क्षेत्र में कहा जाता है कि जब ये मंदिर बना था, क्या ये बात सही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तब ₹1,00,000 खर्च किया गया था इस मंदिर के निर्माण में?
2: जी हाँ, गोंड राजा ने इसके निर्माण के लिए ₹1,00,000 खर्च किया। इस मंदिर के पास में ही बाहर 2 छोटी छोटी तोपें रखी हुई हैं।
0: अच्छा,
2: इतनी छोटी तोपें कि उससे तो कोई घायल भी नहीं होगा,
0: मतलब प्रतीकात्मक कुछ है वो?
2: नहीं,
0: हाँ।
2: मंदिर के बाहर रखी ये तोपें किसी को मारने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो उत्सवों के दौरान जब रंग उड़ाया जाता है, रंग गुलाल उड़ाया जाता है या फिर फूलों की वर्षा की जाती है, उसके लिए ये तोप रखी है। 2-2 फीट की ये तोपें हैं। हाँ, मजल लोडिंग तोपें हैं। आपको जानते ही होंगे जो तोपें होती हैं वो अष्ट धातु से बनाते हैं जिससे कि जब गोला फटे तो तोप को नुकसान ना हो। तो इसमें पीछे की तरफ एक छेद है जिसमें कि आग लगाई जाती थी और जो तोप की नाल है उसमें बारूद भरते थे। तो क्योंकि ये छोटी सी तोप है, थोड़ा सा ही बारूद भरा जाएगा, तो जैसे ही बैंड से आग लगेगी तो बारूद फटेगा और उसके आगे यदि आपने रंग रखा हुआ है या गुलाल रखा है या फूल रखे हैं तो फिर वो भी दूर जाकर ऐसे उड़ेंगे, तो बड़ा खूबसूरत नजारा लगता होगा। राम मंदिर के पास में ही पहाड़ी के नीचे की तरफ एक महादेव का मंदिर भी है।
0: हाँ जी।
2: ये भी गोंड राज्य का ही एक महत्वपूर्ण अंग रहा और यहाँ पर तब से ही गोंड राजा जो थे वो फाल्गुन सुदी पूर्णिमा पर मेला लगवाया करते थे।
0: अच्छा।
2: और ये मेला इतने सालों तक आज भी बराबर लगता है
0: जी।
2: इसके अलावा दशहरा भी जो है वो मकड़ाई किले में बड़े जोर शोर से आज भी मनाया जाता है, पूरे एक मेला जैसा बन जाता है यहाँ पर।
0: जी, तो देखिए जो परंपराएं हमने, क्योंकि चंद्रपुर की भी हमने बात की थी, वहाँ की रानी ने भी जिस तरह से मेले को संचालित करना शुरू किया, तो आज भी वो मेला उसी तरह से बदस्तूर जारी है। और यहाँ भी मकड़ाई में भी, जो आज श्रोता हमने बात की मकड़ाई की, जो कि वर्तमान हरदा जिले में आता है, ये स्थान कभी गोंड शासकों की राजधानी रहा था। पूजा जी हमारे साथ हैं, हमें नित्य नई जानकारियां हर बार दे रही हैं। पूजा जी को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि अब समय सीमा आज के कार्यक्रम की समाप्त हो चुकी। तो पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अगली बार श्रोताओं, इतिहास के पन्ने किस तरह पलटेंगे, कहाँ हमें ले जाएंगे, हमें और क्या क्या नई जानकारियां मिलेंगी, ये तो हमें अपने अगले अंक में ही मालूम होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। अब मुझे यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: इतिहास के पन्नों से इतिहास

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए,

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टैग गुरु।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। टेक गुरु के संग में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने एआई विषय पर पहले बात की थी, बात आज भी करेंगे एआई पर, लेकिन आज जानेंगे एआई से क्या कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट कंप्यूटर ही है, या कंप्यूटर के बाद ये रिप्लेसमेंट मानव को भी करेगा, और ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस विषय की जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: अगर अपन फायदे की बात करें तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मसलन धीरे धीरे अभी लोगों तक पहुंचेगी, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि कंप्यूटर आया था तो एक डर था कि कंप्यूटर आया तो अब तो ये तो सारे काम कर लेता है, टाइपराइटर हटा तो मशीनरी चेंज हुई, ये बात तो समझ में आती है, मतलब मशीन का रिप्लेसमेंट मशीन हुआ, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक तो मशीन से मानव का रिप्लेसमेंट होगा नहीं होगा, कितना होगा, इस पर आपने कहा भी था कि आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ भूलना पड़ेगा, ये निरंतर चलते रहने वाला क्रिया है, ये कहें तो उसी का हिस्सा कहीं ना कहीं AI है।
3: जी,
2: AI से अभी जो लोग हैं वो AI को केवल सुना सुना है, एक ChatGPT तक कुछ लोगों की पहुंच पहुंची है। इसे एप्लीकेशन की बात करें, हर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी पहली एप्लीकेशन किसी क्लास में सीखता है, फोर्थ क्लास हो सकती है, फिफ्थ क्लास हो सकती है, पांचवी छठी सातवीं कोई भी हो सकती है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रह गई है। अब वो ChatGPT में अगर तुरंत कोई एप्लीकेशन डालता तो उस एप्लीकेशन तुरंत मिल जाएगी, अदरवाइज उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए उसे क्लास में सिखाई जाती थी, वो उसको सीखता तो शायद संभव था, कई तो ऐसे भी होते थे कि उसमें वो इसी एप्लीकेशन में छोटे मोटे सुधार करके शायद 10वीं या 12वीं के आगे तक वो एप्लीकेशन चलती रहती थी। अब AI के पास ये जानकारी इस तरह की, वो पांचवी तक के बच्चे को अलग तरह की एप्लीकेशन समझाएगा और 10वीं या कॉलेज के लेवल को, क्या ये सही बात है?
3: देखिए, AI एक ऐसा मान लीजिए कि वो एक सर्व सुविधा युक्त जिन है, पॉपुलर कल्चर के एक उदाहरण में दे रहा हूँ। अब उससे आप वरदान में कंघा भी मांग सकते हैं और बाल भी मांग सकते हैं, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा वो जवाब देगा। इंटरनेट के बारे में भी यही कहा जा सकता है, आप एंटरटेन भी हो सकते हैं और उसकी मदद से कुछ सीख सकते हैं। तो AI भी ऐसे ही है, अगर सही तरीके से प्रॉम्प्ट किया जाए तो यकीनन वो मतलब बहुत अच्छा टीचर बनाया जा सकता है, बशर्ते उसके ट्रेनिंग डेटा सेट, मतलब कौन से डेटा से ट्रेन किया हो, इस बारे में हमको ट्रांसपेरेंसी हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ इसका ट्रेनिंग डेटा सेट कहीं बायस नहीं है। तो AI के हर आउटपुट पे और ट्रेनिंग डेटा सेट पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हो रहा है तो AI की मदद से फर्स्ट क्लास का लड़का, उसके लिए उसके हिसाब से, उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से एक अलग कोर्स तैयार किया जा सकता है सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट के द्वारा, और पांचवी कक्षा के लिए अलग किया जा सकता है, 10वीं के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग। मैंने बताया ना, ये हर किसी को उपयोग करके देखना चाहिए ChatGPT की। इमेजिन यू आर अ टीचर, एक्सप्लेन, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ले लीजिए, कोई भी जियोपॉलिटिकल विषय ले लीजिए, एनी टॉपिक टू मी लाइक आई एम अ क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, और वो बड़े अच्छे से क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट के लेवल के आधार पर। अब उसके डेटाबेस में, ट्रेनिंग डेटाबेस में क्लास फिफ्थ के बच्चे का लेवल क्या है वो डिपेंड करता है कि वो क्लास फिफ्थ के बच्चे को कैसे परसीव करेगा, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है।
2: आपने ChatGPT का नाम लिया, एक सामान्य आदमी के लिए अपन बात करते हैं, जो लोग इससे रूबरू हो गए हैं मान लेते हैं और जो नहीं हुए, एक ChatGPT एक ऐप है, इसको डाउनलोड करना है और फिर वो संभवतः टेक्स्ट को लेकर, ऑडियो को लेकर या वीडियो को लेकर अलग अलग जानकारी दे पा रहा है, ये मान लेते हैं अपन। इसके अतिरिक्त कोई और ऐप या कौन से?
3: बहुत सारी है। देखिए, ChatGPT तो सबसे ज्यादा फेमस हो गई, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जो कहते हैं अपन, 2022 के एंड में आया और बस वो पूरे दुनिया में छा गया। फिर ये इस साल की शुरुआत में वो गिबली आर्ट, इमेजेस से कार्टून बनाना, जितने लोग उस टाइम नहीं सीख पाए थे वो उन्होंने गिबली आर्ट के टाइम पे सीख लिया। लेकिन ऐसे कई टूल्स है। मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ और मेरी कोशिश रहती है साल भर में 50 किताब पढ़ पाऊं, लेकिन वो करना, 50 किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। गूगल आपका जीमेल अकाउंट है, या अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल का भी ChatGPT के समतुल्य इक्विवेलेंट एक अपना मॉडल है जिसको बोलते हैं Gemini। तो अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, तो आप Gemini भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ChatGPT से काम कर सकते हैं। Gemini में एक नैनो बनाना करके उसका एक इमेज जनरेशन मॉडल है, वो मतलब फ्लॉलेस है, जबरदस्त है। तो इमेज जनरेशन के लिए मैं Gemini का नैनो बनाना यूज करता हूँ। Gemini कोर मॉडल और ChatGPT दोनों मोरलेस वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिससे टेक्स्ट जनरेट किया जा सकता है। गूगल का एक बहुत उपयोगी फीचर जो है नोटबुक LM, देखिए मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि इसका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है ये अपन को नहीं पता। नोटबुक LM बेसिकली एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो केवल उसी आधार पर जानकारी देता है जो आप उसे बताते हो। उदाहरण के लिए आपने एक पुस्तक की या एक रिपोर्ट की या एक कोर्ट के केस की समरी डाल दी। अब कोर्ट के जजमेंट जो रहते हैं वो आप और मैं शायद उतने आसानी से नहीं समझ पाए, तो आपने PDF दो तीन निकाली और वो PDF किसी भी तकनीकी विषय रिसर्च पेपर हो सकती है, कोर्ट के जजमेंट की हो सकती है, या एक सामान्य किताब का, मैंने शुरुआत किया था किताब का हो सकता है, और वो नोटबुक LM पे आप अपलोड करते हो, है ना। और या फिर आप एक 2.5 घंटे का पॉडकास्ट है YouTube पे उसकी लिंक आपने अपलोड कर दी। नोटबुक LM सिर्फ केवल जो PDF आपने डाली है, जो लिंक आपने शेयर किया है, केवल उसी आधार पे उस कंटेंट की समरी जनरेट करता है। तो नोटबुक LM की मदद से जो साल की 50 किताबें मैं पढ़ पा रहा था, वो मैंने 200-250 तक खींच ली है। हर किताब डीप पे जाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक किताब की PDF अपलोड की, उससे पूछा क्या रिलेवेंट पार्ट है, अगर कुछ ऐसा लगता है तो वो किताब के डीप में जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत आसानी, बहुत सुविधा हो जाती है। आप कभी कोशिश करके देखिएगा, आपके यहाँ कोई बीमार है तो उसकी जो मेडिकल केस हिस्ट्री की रिपोर्ट होगी उसकी PDF बना के आप नोटबुक LM में अपलोड कीजिए। उस डेटाबेस के आधार पे आप उससे प्रश्न पूछ लीजिए, जितना सरल हो जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, वो केवल अपलोडेड डेटा के हिसाब से जानकारी देगा। इसमें क्या रहता है कि वो जो बायसनेस वाला, गलत जानकारी वाले जो चीजें रहती है वो कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट आप ही प्रोवाइड कर रहे हो। तो नोटबुक LM इस मामले से बहुत बहुत बढ़िया टूल है। इसके अलावा जैसे जेमिनाई और ChatGPT, ये कई बार गलत जानकारी भी देते हैं
2: जी,
3: तो उन गलत जानकारियां जिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में सबसे कम ऐसे मानी जाती हैं, वो है एंथ्रोपिक का परप्लेक्सिटी।
2: अच्छा,
3: तो परप्लेक्सिटी में किसी किसी विषय के बारे में आपको सर्च करना है तो आमतौर पे तो ये बिल्कुल सही देंगे, परप्लेक्सिटी हो गया या ChatGPT हो गया या जेमिनाई हो गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि परप्लेक्सिटी के रिजल्ट ज्यादा रेफरेंस रहते हैं। तो जब अपन किसी विषय की गहराई में जाएंगे तो वो जो रेफरेंसेज है वो काम आ जाते हैं। मतलब हो सकता है ChatGPT और Gemini काफी एक स्टेज के बाद हेलुसिनेट करने लगे, डीप में जाते जाते उनको जानकारी नहीं और वो कॉन्फिडेंटली झूठ, हो सकता है, संभावना है कि वो दे रहे, लेकिन चूंकि ये रिलेवेंट रहता है तो एंथ्रोपिक का टेक्निकल शोध के विषय में काफी अच्छा माना जाता है परप्लेक्सिटी। इसके अलावा अगर क्रिएटिव राइटिंग है तो क्लॉड करके एक अलग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, अगर क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग इसकी बात करें तो उसके लिए वो सबसे अच्छा है। अगर आप ट्विटर में बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, नैरेटिव कैसे बढ़ रहे हैं, तो ग्रोक करके एक मॉडल है अपना, एक्स का है, एक्स के मतलब पुराना नाम जिसका ट्विटर था, एलन मस्क की कंपनी, उसके डेटा पे रिजल्ट देता है। ये सारे ट्रेनिंग डेटा से चूंकि पास्ट के किसी डेट पे है तो हो सकता है तत्कालिक कंटेम्प्रेरी जानकारी उतनी अच्छे से ना दे पाए, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड जानकारी चाहिए तो ग्रोक इज अ गुड AI मॉडल।
2: जितनी बात अभी आपने और हमने करी उससे एक बात जो समझ में आ रही है मोटी मोटी, वो ये कि जब भी आप AI का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका प्रश्न क्या है उस
3: जी,
2: है ना, जैसा आपका प्रश्न होगा उसी तरह का उत्तर वहां से आएगा। दूसरा, जो जानकारी वो दे रहा है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में कोई बीमार है और आप उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन या वो जो पर्चा होता है डॉक्टर ने, या कोई रिपोर्ट आप उस पर अपलोड कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से भी जो आप प्रश्न पूछेंगे वो आपको उत्तर दे देगा। मैं ठीक कह रहा
3: हूं? जी, इसमें केवियट है, मैंने कहा ना ChatGPT से आप बीमारी का इलाज नहीं पूछ रहे हैं
2: जी,
3: उसमें संभावना है कि हो सकता है गलत दे, लेकिन जो नोटबुक LM है जो एक टूल मैंने बताया था वहां पे आप जो PDF अपलोड करोगे वो उन PDF से ही अपना जवाब देगा, वो इंटरनेट पे नहीं जाएगा सर्च करने, या वो अपने डेटाबेस से खुद का ज्ञान नहीं प्रस्तुत करेगा, वो उसी PDF के आधार पे जवाब देगा जो आपने अपलोड किया, तो इस आधार पे वो बता सकता है।
2: कहने का मतलब एक ही कम्युनिकेशन है जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, एक जो व्यक्ति इधर बैठा है जो प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा AI टूल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा और फिर AI ने जो उसका जवाब दिया, दोनों सूरत में महत्वता ये आ रही है कि प्रश्न आपका उतना सटीक हो जैसा आपका प्रश्न वैसा उत्तर वाली बात होगी, और दूसरी अति महत्वपूर्ण बात ये कि वो आपको जो भी उत्तर देता है आपको अपने विवेक के साथ उसको क्रॉस चेक भी करना है, जो का तो मतलब जैसे कि आपने कहा कि वो कोई आपको इलाज तो बता नहीं रहा बीमारी का, वो आपको आपकी रिपोर्ट का एनालिसिस

0: बम कैसे बनाना चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ऐसे फिल्टर लगाने पड़ते हैं
1: सोशल, मतलब हर चीज का उपयोग गलत भी हो रहा है,
0: लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली कंपनियां ये बार बार ऐसे फिल्टर लगाती है ताकि उन मॉडल्स का गलत उपयोग ना हो सके। लेकिन इस चीज पे हमें भी एज ए यूजर और हमें भी एज अ गवर्नमेंट भी चेक करना पड़ेगा कि इनका ट्रेनिंग डेटा सेट और इनका अप्लाइड यूजर केसेस सिनेरियो ये सही दृष्टि से हो। लेकिन जहां पे ट्रेनिंग डेटा सेट सीमित है, मतलब जैसे नोटबुक एलएम किया, या आपने बोला कि भाई मेरे को लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए लेकिन मैं अपना डेटा किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो ऐसे ओपन सोर्स मॉडल है, फेसबुक का लामा एक ओपन सोर्स मॉडल है, आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए और इंटरनेट बंद करके लैपटॉप के ही लोकल डेटा पे आपने ट्रेन किया है, तो उसमें डेटा बाहर का डेटा का सवाल ही नहीं उठता, जो आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देंगे वो उस पर अपना जवाब देगा। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पास एक अलग मॉडल है। होता यह है कि जैसे मैंने बोला, मैं बार बार क्लेरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमें केस नहीं पता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, तो हो सकता है कोई अपने मेडिकल रिपोर्ट चैट जीपीटी पे जाके अपलोड करे और अपने मेडिकल हिस्ट्री के आधार पे उपाय मांगे, वो गलत हो जाएगा। वो एक एग्जांपल था, वो सिर्फ नोटबुक एलएम के केस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आना जरूरी है।
1: मतलब अपन ने ये बात कही थी कि एक तो प्रश्न आपका क्या है, दूसरा फिर उत्तर वो आपको क्या दे रहा है, दोनों बातों में जो इंसान इस पे काम कर रहा है उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है,
0: विवेक का इस्तेमाल करना है और एआई के बारे में जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा उद्देश्य रहता है, जो मैं अलग अलग जाता हूँ, वो यही बताता हूँ कि भाई ये टूल बहुत जबरदस्त है, इससे आप जो प्रश्न पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। लेकिन हर टूल की एक सीमाएं रहती है, वो सीमाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो लिमिटेशंस, वो चैलेंज, वो वर्स्ट केस सिनेरियो, सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम जिस उद्देश्य से यूज करना चाह रहे हैं ठीक उसी उद्देश्य से उसका उपयोग कर पाए, अन्यथा वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
1: एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अभी सबसे बड़ा वो कौन सा सेक्टर है जहां आईटी का यूज हो रहा है और अगले 5 या 10 साल में उसमें ज्यादा होने वाला है क्या?
0: देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब एआई के बारे में रिसर्च चालू हुई थी तो आपको पता है एआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को ऑब्सोलीट करना है। मतलब बिफोर द टेक्नोलॉजी बिकेम मेनस्ट्रीम 2022 के
1: पहले, ऑब्सोलीट से मतलब क्या है, रिप्लेस करना है।
0: मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे हर किसी ने जब स्कूल में कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा तो बड़ा सिंपल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जब एक्सप्लेन करते हैं स्कूल में तो ये रहता है कि एक सीपीयू रहता है डब्बा, कुछ इनपुट डिवाइसेस रहते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं। इनपुट डिवाइस से एरो जाता था सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वहां से वो एरो जाता था आउटपुट डिवाइसेस में। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस हो गए, आउटपुट में स्क्रीन और स्पीकर हो गए। तो ये बेसिक डायग्राम ऑलमोस्ट हर किसी ने जिसने आईटी या कंप्यूटर साइंस स्कूल में पढ़ा है सबको पता होगा। अब सीपीयू इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करता था, इसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती थी। आपको ध्यान होगा आज से 10, 20, 30 साल पहले इंडिया में जब कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन आया, हम लोग जब सॉफ्ट पावर बने, बीपीओ रिवॉल्यूशन आया, वो सब भारतीय प्रोग्रामर्स के दम पे हुआ। तो सीपीयू को इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए कंप्यूटर को सीपीयू को प्रोग्राम किया जाता था अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। आप ये मानिए सीपीयू में इनपुट प्लस प्रोग्राम यूज टू बी द आउटपुट, मतलब आपने इनपुट तो किया ही लेकिन उस इनपुट का करना क्या है ये भी कंप्यूटर को समझाया, तब जाके वो कंप्यूटर अपने लिए काम करने योग्य बन पाता था। मशीन लर्निंग क्या कर रहा है या एआई क्या कर रहा है, ये जो प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर था ये इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को मैनुअली प्रोग्राम करने की बजाय क्या ऐसा संभव है कि हम उसे बहुत सारा डेटा दे दें, जैसे मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उदाहरण लिया, एक लाइब्रेरी भर के डेटा दे दें कि भाई ये आपकी लाइब्रेरी है, आप इसको समय लेके पढ़ो। पहले सुपरवाइज लर्निंग आया, वहां पे हमारा ह्यूमन सुपरविजन रहता था कैसे कैसे ट्रेन करना, फिर अनसुपरवाइज लर्निंग आया, डीप लर्निंग आया, न्यूरल नेटवर्क आया, कुल मिला के हमने कंप्यूटर को दे दिया डेटा, ये डेटा है, यू टेक योर ओन टाइम। ये जो एनवीडिया के जीपीयू है, हाई, हमने आपको बिजली दे दी, हमने आपको जीपीयू दे दिए, अब कंप्यूटर को बोल दिया भैया आप इस पूरे डेटा से खुद ही इन्फ्रेंसिस करके यू स्टार्ट टू ट्रेन योर ओन वर्ल्ड। बीच बीच में हम ह्यूमन इंटरवेंशन, हम लोग आउटपुट देखते जाएंगे, प्रोग्रेस देखते जाएंगे और उस बेसिस पे इवेल्युएट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो उसका ट्रेनिंग डेटा सेट है वो हम लोग ने कंप्यूटर को दे दिया और प्रोग्रामिंग पार्ट से हम धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तो अब क्या परिस्थिति बन गई है, रॉ डेटा सेट, और यही रीजन है कि डेटा हैज बिकेम द न्यू ऑयल, ऐसा क्यों कहते हैं, जो पिछले 100 सालों में युद्ध पेट्रोल के लिए हुए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए हुए, वो अब डेटा के लिए हो रहे हैं। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनेगा, और कंप्यूटर इंटेलिजेंट बनेगा उसके यूज के सिनेरियो, जितना इंटेलिजेंट बनेगा उतना आप उपयोग कर पाएंगे। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने का जो प्रक्रिया था वो धीरे धीरे अब हट रही है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का ही है। आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि गूगल के हेड ने, सुंदर पिचाई ने कहा, कह चुका है, अमेजन के हेड ने कह चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड ने कह चुका है कि एटलीस्ट 50% जो कोडिंग थी वो अब एआई की मदद से ये सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर 50% कोडिंग का काम, और कोडिंग क्या होती है, ताकि कंप्यूटर को यूजेबल बनाया जा सके, जो इंडस्ट्री है, जो इफेक्ट होने वाली है वो यही है कि प्रोग्रामर्स का डोमेन था वो अब सीमित होता जाएगा। प्लस हम लोग कंप्यूटर्स को यूज करते थे लेकिन कंप्यूटर्स में जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उन्हीं को यूज करते थे। हम लोग यूज कर रहे थे लेकिन हमारे पास ये आप मान लीजिए कोई ऑडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वीडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये फीचर मेरे काम का नहीं है, थोड़ा और बेहतर हो सकता है। आपके पास ये सुविधा नहीं थी, क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल बैरियर था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और जो कमर्शियल प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर थे उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे उसकी कोडिंग, क्योंकि आपको पता नहीं था। लेकिन कोडिंग हट जाने से हम लोग भी, अब जैसे आपको अपना वेब पेज बनाना है, आप चैट जीपीटी पे जाकर बोलिए मेरे को अपना, ये मेरा रिज्यूमे है पीडीएफ में, मैंने अटैच कर दिया, आप एक वेब पेज की स्क्रिप्ट बना के दे दो, चैट जीपीटी आपको 10 सेकंड में एक बढ़िया वेब पेज की स्क्रिप्ट दे देगा। आप इंग्लिश में बोलते जा रहे हो कि भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, और वो आपकी इंग्लिश को समझ के उस वेब पेज की स्क्रिप्ट में चेंज कर रहा है। तो एक तरह से तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का काम ऑटोमेट हो रहा है, दूसरी तरह आपके पास ये सुविधा हो गई कि आपको अब प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर्स को अपने हिसाब से यूज करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबसे पावरफुल है। जब जब कंप्यूटर्स पहली बार आए थे 1970 के दशक में, तब कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए रहता था। मेरे ख्याल से 1995 में जब विंडोज 95 आया, तब जाके वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का दौर आया, जब अपन माउस या कीबोर्ड से क्लिक कर सकते थे। उससे पहले आपको याद होगा एमएस डॉस रहता था, टाइप करके अपन प्रॉम्प्ट करके खोलते थे, तो उसमें भी टेक्निकल बैरियर था। 95 के बाद सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गए, 2010 के बाद आईफोन के बाद सारे टच स्क्रीन फोन आ गए। आज एक बच्चा भी 2.5 साल का है, उसको भी यूट्यूब खोल के अपना वो लाल टमाटर वाला गाना खुलना आता है, इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस हो गया। तो एंट्री बैरियर है वो चेंज होता गया। एआई जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का एंट्री बैरियर भी खत्म कर देगा, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड वेब पेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ट्वीक कर पाएंगे। मुझे लगता है ये सबसे प्रोमिनेंट यूज है, और इसी यूज के कारण ही ये पूरी फील्ड आगे हुई थी। ये जो बाकी यूज हम देखते हैं, गिबली आर्ट, इमेज जनरेशन, ये तो साइड वाले टेक अवेज हैं। जो मेन यूज है, जो मोस्ट इम्पैक्टफुल डोमेन है, वो यही है।
1: आपने कहा कि जैसे कोडिंग वर्कर, तो क्या कोडिंग में जो जनरेशन काम कर रही है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आप खुद इंजीनियर हैं, पढ़ा भी रहे हैं अब तो एक बड़े हिंदुस्तान के इतने बड़े संस्थान में, तो क्या इंजीनियर्स का, कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में?
0: बिल्कुल, कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में है, क्योंकि मैंने बताया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज 50% ऑफ द कोड एआई से बना रही हैं। तो या तो आपको अपना स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो आपको अपने कोडिंग स्किल्स को एआई को ही बेहतर बनाने पे या एआई के नए नए फील्ड्स में उपयोग खोजने में लगाने पड़ेंगे, और या आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 50% कोड हो रहा था, अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो 50%, मैंने बोला ना रिपीटेड टास्क, ये बिल्कुल वही उदाहरण हो गया कि मैं अभी भी डिजिटाइज कर रहा हूँ, है ना, नक्शों को लैंड यूज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि एआई ये काम करके दे रहा है, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं कुछ लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो चाहेंगे कि नहीं कंप्यूटर से नहीं, मेरे से ही वो रोड का डिजिटाइजेशन करवाएं। तो ये सोचना बड़े बेमानी होगा कि हम जो 50% ऑटोमेटेड कोड हो रहा है जनरेशन, उसी के दर पे रह सकते हैं। तो हाँ, उन इंजीनियर्स वो अपने स्किल्स को ज्यादा बेहतर उपयोग में लगा सकते हैं अगर वो चाहे तो।
1: तो आईटी या सीएस में ब्रांच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं,
0: हाँ,
1: ये चुनौती उन्हीं के लिए है?
0: बिल्कुल है,
1: या बाकियों के लिए?
0: बाकियों के लिए भी है, बाकियों के लिए भी है, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहने वाला। हाँ, कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं और आप हो गए, हम चलिए, मैंने तो मेरी एक करियर ऐसी ट्रेजेक्टरी में गया, ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे टेक्नोलॉजी सही समय पे इनके बारे में पता चलता गया, और मेरे को एक पीयर ग्रुप मिला जिससे मैंने थोड़ा बहुत सीख भी लिया। लेकिन आईटी और कंप्यूटर, आईटी तो खैर ऑब्सोलीट हो गई, अब आईटी की उतनी ब्रांच नहीं, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों को ये समझना चाहिए कि वही उन्हीं के फील्ड से ये सारे परिवर्तन आ रहे, तो उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब उनको दूसरों के लिए तो एआई के उपयोग को सुगम बनाना ही है, और अगर वो ऐसा कर लेते दे विल मेक अ वेरी गुड करियर आउट ऑफ इट, लेकिन खुद को बचाने के लिए भी, ताकि वो लेवल से बाकी लोग से आगे रह सके, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बेहतरी से लेवरेज कर सके, इस चीज को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशन उनसे ज्यादा बेहतर अच्छे से तरीके से कोई नहीं समझ सकता है। हम लोग तो बाहर ही है, मैंने बताया ना, मैं भी आर्किटेक्चर प्लानिंग से गया हूँ, वही लोग के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, तो वो अगर इस चीज को समझेंगे दे विल बी अहेड ऑफ द कर्व।
1: हाल ही में देश की इतनी बड़ी संस्थान टीसीएस ने तकरीबन 10,000 या 12,000
0: जी
1: काम करने वाले को हटाया है
0: जी,
1: क्या ये इसी का सर?
0: हो सकता है, देखिए ग्लोबल कंपनीज में बिजनेस रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता रहती है, जैसे अब टीसीएस कहीं बाहर के प्रोजेक्ट ले रही है, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट ले रही है अगर उस कंपनी के पास खुद ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो 50% ऑफ द कोड खुद जनरेट कर सकते हैं, तो वो अपना मैन पावर या वो अपना बिजनेस कम करेंगे, इसके कारण ले ऑफ हो सकता है। पहले वाले टेक्नोलॉजिकल वेव्स में जो ले ऑफ हुए थे वो निचले स्तर के होते थे, एआई के बाद निचला और ऊपर वाला कोई स्तर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि नहीं मेरा जॉब तो सेफ है, मैं तो सबसे ऊपर बैठा हूँ। देखिए जेसन हुआंग करके एनवीडिया के फाउंडर हैं, एनवीडिया मतलब जो जीपीयू बनाती है,
1: जी
0: जीपीयू बोले तो कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का दिमाग, बिना जीपीयू के एआई रेवोल्यूशन संभव नहीं हो सकता, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। उनका बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं एआई आपको जॉब से रिप्लेस नहीं करेगा, समबडी यूजिंग एआई वुड रिप्लेस यू फ्रॉम योर जॉब। मेरे से बेहतर मैं एक प्राध्यापक हूं, मेरे को रिप्लेस वो करेगा जो एआई को बेहतर तरीके से यूज करेगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो। आपको वो दूसरा व्यक्ति रिप्लेस कर सकता है जिसको 5 एआई टूल्स के बारे में पता है, तो वो आपका काम बहुत कम समय में कर सकता है। तो एआई रिप्लेस नहीं करने वाला कोई भी जॉब, और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री हर सेक्टर में ये जॉब रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन जो रिप्लेस कर रहा है वो कोई व्यक्ति ही होगा जो एआई को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहा है।
1: ठीक है, जब आपने कहा कि बेहतर तरीके से यूज कर पाए, तो एक बात और बताइए कि लोग एआई को सीखे कहां से।
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चीज में और एआई के बारे में बताना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा होगा कि यार इलॉन मस्क बोलता है कि एआई वुड बी द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग विच विल हैपन टू द ह्यूमैनिटी, तो उसका जो एआई के प्रति दृष्टिकोण रहता है वो थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, वो डरता भी है, वो बोलता है संभल के रहने की भी जरूरत है और फायदे भी देखता है। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है वो एआई के अच्छी चीजें बताते हैं, जैसे सुंदर पिचाई कहते हैं कि जिस प्रकार आग ने, चक्के ने और बिजली ने या इंटरनेट ने हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया, एआई उससे 1000 गुना ज्यादा तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, तो सिर्फ एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस विषय के विशेषज्ञ लोगों में भी मतानुभेद है कि भाई कोई इसको नेगेटिव देख रहा है, कोई डर रहा है, कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छी चीज है, कोई बैलेंस व्यू देने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका एडवांसमेंट, जिसका प्रोग्रेशन कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। एंटिसिपेट नहीं कर सकता मतलब 2022 में चैट जीपीटी का पहला वर्जन आया 2.5, उसके एक साल बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया, उसके 6 महीने बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया। तो कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, चूंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव ही मशीन्स की वर्किंग को एफिशिएंट बनाना है, और मशीन्स एफिशिएंट होके कैसे विकसित होंगी इस पे चेक हम लोग बीच बीच में उसके आउटपुट को टेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे हाँ अगले 6 महीने में ये चेंज होगा। इससे पहले वाले जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आए उस टाइम पे लोगों का परसेप्शन एक रहता था कि हाँ ठीक है अगला जो चेंज आएगा, अगला पड़ाव आएगा, अगला ब्रेक थ्रू आएगा, उसमें लेट्स से 1 साल लगेगा या 1 महीना लगेगा। लेकिन यहाँ पे तकनीक इतने तेजी से इवॉल्व हो रही है, ब्रेक थ्रू कल भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, हो सकता है नहीं आए। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है टुवर्ड्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, फेसबुक में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आमने सामने बिठा दिया और बोला कि आप दोनों आपस में बात करके सीखो, मतलब जो ऑटोनोमस बॉट रहते हैं जिनसे बात करते हैं। चालू हुआ और उसका वीडियो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, दोनों ने बात करनी चालू की और मेरे ख्याल से थोड़ी देर बात की और फिर परिचय तो हो ही गया था कि बोला मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये अंग्रेजी तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है विच मे नॉट बी दैट एफिशिएंट, सो वाई आर वी वेस्टिंग आर टाइम, वाई नॉट हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने जो मोर एफिशिएंट मोड ऑफ टॉकिंग है उस पे शिफ्ट जाए, और फिर वो अपने बीप और फ्रीक्वेंसीज में बात करने लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया, ये वीडियो है आप देखिएगा। तो आप देखिए मशीन्स ने हमारी भाषा में बात करना चालू की और कुछ समय के बाद उनको मशीन्स को लगने लगा कि भाई ये तो बड़ा इनएफिशिएंट मोड है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या बीप्स में बात कर लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। इस प्रकार के जो चीजें हैं ये इसकी ग्रोथ को अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, और इसलिए सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंटली एआई की ही मदद से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चेक रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं बच्चे लोग से बहुत बात करता हूं। असाइनमेंट में जैसे उनको रिपोर्ट दी जाती थी, पहले रिपोर्ट बनाना जब मैं पढ़ रहा था, रिपोर्ट बनाना वॉज एक्चुअली अ वेरी स्किलफुल एक्सरसाइज। हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, तब तो इंटरनेट भी उतना नहीं था, लाइब्रेरी में जाते थे, 4 पुस्तक पढ़ते थे, फिर उसको लिखते थे, फिर उसको समराइज करते थे, फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद गूगल रिजल्ट और ये सब यूज करने से थोड़ा लाइब्रेरी जाने की जो पीड़ा थी वो कम हो गई। आज आपको चैट जीपीटी पे मैं तो कहता हूँ कि आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं, आपको जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसकी एक फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए बिना कुछ कहे, वो इमेज से रीड करके आपको बढ़िया एक रिपोर्ट बना के दे देगा। तो मैं बच्चों का जब असाइनमेंट चेक करता हूँ तो अक्सर उनसे पूछता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दिख रही है। अब व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसके स्तर का काम नहीं है, तो उसको बुला के पूछता भाई कैसे, तो मुझे बताता सर ये टूल आया है, ये प्रेजेंटेशन अपने आप बता देता है, ये रिपोर्ट है ये बहुत अच्छा बना देता है। तो कहने का मतलब यह है कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज। अगर मैं बोल दूं कि नहीं बच्चे लोग से मैं क्यों बात करूं, बच्चे लोग नेचुरली उनको कम समय में ज्यादा काम करना है तो वो इन टूल से अवेयर रहते हैं। तो मेरे प्राइमरी सोर्स वो है, एक बार उनसे टूल पूछ लिया, फिर चैट जीपीटी की मदद से उस टूल के बारे में और जानकारी लेके सीख लिया। लेकिन इस विषय में अपडेटेड रहने के लिए हमें इन्हीं टूल्स का मदद करके आगे ले जाना पड़ेगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके आजू बाजू जो बहुत ज़्यादा इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, आपके विषय के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, उससे बातचीत की जाए, संवाद किया जाए, उसके पॉडकास्ट देखें। लेकिन मोर और लेस मैंने कहा ना, लर्न अनलर्न और रीलर्न, ये जो अनलर्निंग और रीलर्निंग करनी है इसके लिए भी हमको इसी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
1: काफी वृहद विषय है। हमने सोचा था ये शुरू तो दो अक्षरों से हो रहा था, मतलब अंग्रेजी की वर्णमाला से AI केवल निकल के आया था, लेकिन ये चलता जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा इस पर और भी आगे बात करें।
0: जी जी।
1: लेकिन फिर भी हम मुझे लगता है कि जब हम हमारे श्रोता इसे सुनेंगे तो आज तक जो उनकी सीमित ज्ञान था AI को लेके, संभवतः उसमें वृद्धि जरूर होगी। आपने इसको काफी बेहतर तरीके से, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं और देश के इतने बड़े संस्थान में पढ़ाते हैं, आप स्वयं भी वहां से पढ़े हैं, और आपकी बातचीत में वो काफी बेहतर तरीके से निकल के आ रहा था। चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी हमने इसकी बेहतरी अच्छाइयों में बात करी, क्या इसकी कोई खामियां ड्रॉबैक्स भी हैं जिस पर आप रोशनी डालना चाहते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसकी ड्रॉबैक पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जो हॉलीवुड की तस्वीरों में देखते हैं कि टर्मिनेटर में जैसे मशीनें बंदूक लेके लड़ने आ जाएंगी, AI के दुष्परिणाम ऐसे नहीं होंगे। हो सकता है आज से ये भी संभव हो कि मशीनों के पास संज्ञान आ जाए, वो लड़ने आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल 100-200 साल में तो ऐसा नहीं हो रहा। जो इसकी चैलेंजेस हैं, जो इसकी चुनौतियां हैं, वो ज्यादा वास्तविक हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि चूंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्विंग है, तो इसकी जो लिमिटेशंस है, जो चुनौतियां हैं, वो भी इवॉल्विंग उसी दर से हो रही है। जैसे मैंने बताया ChatGPT भी यूज करते हैं, तो उसका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है, या उसमें कैसे बायसेज है, या उसके जो आउटपुट है वो सेफ है कि नहीं, सही है कि नहीं। ChatGPT नाम ले रहा हूँ एक ब्रांड का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन जितने भी AI मॉडल्स हैं, इंक्लूडिंग नोटबुक LLM, आप अपनी PDF अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको PDF के बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है वो अपने एंड पे जानकारी गलत देते, तो ऐसा संभव है। सबसे पहले तो यह है कि जो मॉडल काम कर रहा है उसकी सीमाएं और उनकी क्षमताओं की लिमिटेशंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एनीथिंग जनरेटेड बाई AI इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट, वो हमेशा सही बोले ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इंडिविजुअल तकनीक के टूल्स की सीमाएं क्षमताएं, जैसे आप बोलते हैं कि भाई फिल्टर वाली फोटो है, तो स्वाभाविक है आपको पता है फिल्टर वाली फोटो है, तो इस चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा कि जो जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं वो हो सकता है थोड़ा अलग दिखे, या आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, तो आने वाले समय में तो अब इतने रियलिस्टिक वो हो सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति है भी कि उसकी एक कैरिकेचर है, मतलब आपको लग रहा है कैमरे के सामने व्यक्ति बैठा है लेकिन वो नहीं है,
1: वास्तविकता नहीं।
0: तो ये सारे केवीएट अपन को ध्यान देने पड़ेंगे। इसके अलावा AI की मदद से, ये तो हो गया इंडिविजुअल यूज के सिनेरियो, गवर्नेंस या लॉ एंड ऑर्डर या सोसाइटल लेवल पे जो इसके दुष्परिणाम है उनके प्रति भी हमें सचेत रहना पड़ेगा। फेक न्यूज जो बोलते हैं, आज सोशल मीडिया न्यूज का एक बड़ा प्रामाणिक माध्यम माना जाता है, जैसे फेक न्यूज आपको बनानी है तो पहले आप हर किसी व्यक्ति को, एक आदमी 5 अकाउंट को या 10 या 25 या 50 अकाउंट को कंट्रोल करता था, आज की डेट में सिंगल प्रॉम्प्ट से आप मेरे ख्याल से एक फेक न्यूज के 1000 पॉइंट ऑफ ओरिजिन बना सकते हैं। तो फेक न्यूज का दुष्परिणाम, ये AI का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है सोसाइटल लेवल पे। मैं अक्सर अपने क्लास में एक उदाहरण देता हूँ, फर्ज करिए मैं अभी आपसे बात करके यहाँ से घर जाऊँगा और शाम तक आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में एक वीडियो क्लिप आती है, जिसको कहते हैं ना जो अनएथिकल या न्यूडिटी बढ़ाने वाली, और आप देखते हैं उस वीडियो क्लिप में कि जो व्यक्ति है वो मेरे जैसा दिख रहा है, उसकी आवाज़ मेरे जैसी है और मैं आपके पास फ़ोन करके बोलता हूँ या मैं आपके पास आता हूँ कि भाई ये व्यक्ति मैं नहीं हूँ, तो क्या अपना लीगल सिस्टम, और ये संभव है किसी के लिए भी, ये मैं अपना उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं सामने वाले का नहीं दे सकता, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि किशोर कुमार अरिजीत सिंह के गाने गा रहा है उसकी आवाज में, किशोर कुमार 90 में नहीं रहे, अरिजीत सिंह अभी आए हैं, लेकिन बहुत रियलिस्टिकली उसकी आवाज लग रही है। तो ये जो डीप फेक वाली बात है, ये एक बहुत प्रेसिंग इश्यू है जो AI के साथ आने वाला है। आज की डेट में इतने टूल्स ऐसे आ गए हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जो अपना साइबर स्कैमिंग होती है, डिजिटल अरेस्ट उसमें, या आपके पास फोन आया, हाँ साइबर अरेस्ट, आपके पास फोन आया बोला आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और अगली आवाज ने जो आपने सुनी वो बिल्कुल रियलिस्टिकली अपने बच्चे, तो ये वाले सारी चीजें भी AI के दुष्परिणाम। तो ये चैलेंजेस हैं जिनके हिसाब से आज के गवर्नेंस सेटअप को, सोसाइटी को, लॉ एंड ऑर्डर को इक्विप रहना पड़ेगा। तो ये सारे केवियट्स हैं, बदलती टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, तो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उसके यूज को रेगुलेट करना, वो अपने आप में चुनौती है, और इंडिविजुअली उस टेक्नोलॉजी से हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं या हमारा करियर कैसे प्रभावित हो रहा है, भाई हम अगर नहीं सीख पाएंगे कोई दूसरा इस टेक्नोलॉजी को सीख के हमसे ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, ये सारी चुनौतियों के प्रति सचेत रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना, तभी हम इसका समुचित उपयोग कर पाएंगे।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया, हमें हमारा प्रयास था कि ये हमारे सुनने वालों तक ये पहुँचे, और संभवतः ज़रूर ज़रूर ये काफ़ी बेहतर आप तक इसकी जानकारी पहुँची होगी। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि AI जिस तेज़ी से लोगों के बीच में दस्तक दे चुका है, हम इस पे समय समय पर आप तक जानकारी को और अपडेट करते रहें। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु, जिसमें आज हमने बात की AI पर। आज का जो कार्यक्रम था इसमें मोटा मोटा हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास करा। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना FM 90.8 MHz रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
3: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम भारत विभूति में आपका स्वागत है। भारत की महान परंपरा केवल राजाओं, योद्धाओं और संतों की परंपरा नहीं है, ये उन शिक्षकों, विचारकों और ज्ञान पुरुषों की भी परंपरा है जिन्होंने राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी, गणित के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का भी काम किया। आज की हमारी विभूति है सर आशुतोष मुखर्जी।
4: जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था तब बहुत से भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता था कि ज्ञान, विज्ञान और शोध केवल पश्चिम की देन है। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय बुद्धिमत्ता किसी से कम नहीं है। वह व्यक्ति था आशुतोष मुखर्जी, एक गणितज्ञ, एक न्यायविद, एक शिक्षाविद और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता।
3: 29 जून 1864, कलकत्ता का भवानीपुर क्षेत्र, एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे डॉक्टर गंगा प्रसाद मुखर्जी, वो अपने समय के जाने माने चिकित्सकों में गिने जाते थे। माता जगत तारिणी देवी संस्कार, धर्म और भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतीक थीं। घर में विद्या, संस्कृति और अनुशासन का वातावरण था और यहीं से प्रारंभ हुई उस बालक की यात्रा जो आगे चलकर भारतीय शिक्षा जगत का एक युग पुरुष बनने वाला था।
4: बचपन से ही आशुतोष असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि वे किसी भी विषय को केवल पढ़ते नहीं थे, उसे समझते थे। और केवल समझते ही नहीं थे, उसके भीतर छिपे तर्क को खोजने का प्रयास करते थे। शायद यही कारण था कि गणित उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता था। संख्याएं उनके लिए केवल गणना का साधन नहीं थी, वे उनके लिए चिंतन का माध्यम थी।
3: उनकी प्रारंभिक शिक्षा चक्रबेड़िया स्थित साउथ सबर्बन स्कूल में हुई। विद्यालय के दिनों में ही उनकी प्रतिभा सबका ध्यान आकर्षित करने लगी थी। शिक्षक समझ चुके थे कि यह बालक साधारण नहीं है, उनके भीतर कुछ तो विशेष है, कुछ ऐसा जो उसे आने वाले समय में अति विशिष्ट बनाएगा।
4: सन 1879, आयु मात्र 15 वर्ष, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और परिणाम आया। आशुतोष मुखर्जी ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उस समय यह उपलब्धि असाधारण मानी जाती थी। यह सफलता केवल एक विद्यार्थी की नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा की बड़ी पहली घोषणा थी।
3: और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह वही संस्थान था जहां उस समय भारत के कई प्रतिभाशाली युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात दो महान व्यक्तित्वों से हुई, एक थे वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय और दूसरे थे नरेंद्र नाथ दत्त। वही नरेंद्र नाथ दत्त जिन्हें दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी।
4: जरा कल्पना कीजिए उस वातावरण की, एक ओर विज्ञान का उजाला, दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन, एक ओर आधुनिकता और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की गहराई, इन सबके बीच अध्ययन कर रहे थे आशुतोष मुखर्जी। यह वातावरण उनके व्यक्तित्व को और व्यापक बनाता चला गया।
3: सन 1883 में उन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें प्रतिष्ठित प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह उस समय की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन आशुतोष मुखर्जी के लिए ये केवल एक पड़ाव मात्र था। उनकी यात्रा अभी बहुत आगे तक जाने वाली थी।
4: गणित में उनकी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गणित में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और इसके बाद भौतिक विज्ञान में भी स्नातकोत्तर किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले ऐसे विद्यार्थी बने जिन्होंने दो अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज भी यह उपलब्धि अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है।
3: लेकिन एक और खास बात थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो लगातार शोध कार्यों में भी लगे हुए थे। जब अधिकांश विद्यार्थी केवल परीक्षाओं की तैयारी करते, तब आशुतोष मुखर्जी नए गणितीय प्रश्नों के समाधान खोज रहे थे। वो विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों को पढ़ा करते, उनके प्रश्नों पर विचार करते और अपने समाधान भी तैयार करते।
4: सन 1880 के दशक का भारत, जहां शोध के अवसर सीमित थे, वैज्ञानिक संसाधन कम थे, फिर भी एक युवा भारतीय गणितज्ञ विश्व के प्रतिष्ठित गणितीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
3: 1881 में उन्होंने यूक्लिड के प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रमेय का नया प्रमाण प्रस्तुत किया। ये शोध इंग्लैंड की प्रसिद्ध गणितीय पत्रिका मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक में प्रकाशित हुआ। उस समय किसी भी भारतीय विद्वान के लिए यह अत्यंत गौरव की बात थी।
4: इसके बाद उन्होंने सलमोन के प्रमेय पर महत्वपूर्ण कार्य किया, एलिप्टिक फंक्शंस पर शोध किया, डिफरेंशियल समीकरणों पर लेख लिखे, ज्यामिति और कलन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके शोध पत्र इंग्लैंड और भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे और धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समुदाय में पहचाना जाने लगा।
3: श्रोताओं, कहा जाता है कि गणित उनके लिए केवल एक विषय नहीं था, वो उनके सोचने का एक तरीका था। वो हर समस्या को तर्क और विश्लेषण की दृष्टि से देखते थे और शायद यही वजह थी कि बाद में जब वो शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में आए, तब भी उनकी निर्णय क्षमता अत्यंत साफ और व्यवस्थित रही।
4: 1888 तक आते आते वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो चुने गए। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। यह सम्मान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता था। यह उस प्रतिभा की सार्वजनिक स्वीकृति थी जिसे पूरा शैक्षणिक जगत पहचान चुका था।
3: लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि अगर आशुतोष मुखर्जी इतने बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल गणित को क्यों नहीं समर्पित किया? वो विश्व के महानतम गणितज्ञों में स्थान प्राप्त कर सकते थे। उनके पास वो प्रतिभा थी, उनके पास वो क्षमता भी थी, फिर उन्होंने दूसरा मार्ग क्यों चुना?
4: क्योंकि उनके भीतर केवल एक गणितज्ञ नहीं था, उनके भीतर एक राष्ट्रभक्त भी था और वे समझ चुके थे कि भारत को केवल एक महान वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो हजारों वैज्ञानिक तैयार कर सके। भारत को ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जो विश्व स्तर का ज्ञान उत्पन्न कर सकें। और शायद यही विचार उनके जीवन की दिशा बदलने में सहायक सिद्ध हुआ। देश में नई चेतना जन्म ले रही थी। लोग शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण का साधन मानने लगे थे। ऐसे समय में आशुतोष मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने तय किया कि अब उनका ज्ञान समाज के काम आएगा।
3: हालांकि गणित के क्षेत्र में उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। वो शोध कर रहे थे, नए प्रमेयों पर काम भी कर रहे थे, ज्यामिति और कलन के जटिल प्रश्नों का वो समाधान खोज रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी समझ रहे थे।
4: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं थीं। ज्ञान की रचना कम होती थी, शोध की परंपरा लगभग न के बराबर थी, प्रयोगशालाएं सीमित थीं और भारतीय विद्यार्थियों के सामने अवसर भी बहुत कम थे। आशुतोष मुखर्जी इस स्थिति से कतई संतुष्ट नहीं थे।
3: श्रोताओं, आप जानते हैं कि वो मानते थे कि यदि किसी राष्ट्र को वास्तव में शक्तिशाली बनाना है तो उसे ज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उसे ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए होंगे जो केवल पढ़ाएं नहीं बल्कि नया ज्ञान भी उत्पन्न करें, जो केवल डिग्रियां ना दें बल्कि एक नया विचार भी दें।
4: यही सोच उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर ले गई। सन 1888 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बने। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में यह जिम्मेदारी मिलना उनकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
3: फेलो बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को बहुत करीब से जाना। उन्होंने महसूस किया कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उचित मार्गदर्शन और अवसरों की, और ये कमी दूर की जा सकती है।
4: और इसी बीच उनका गणितीय कार्य भी जारी रहा। उन्होंने एलिप्टिक फंक्शंस, डिफरेंशियल समीकरणों और ज्यामिति पर अनेक शोध पत्र लिखे। उनके शोध पत्र केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो रहे थे।
3: शोध पत्रों की सूची देखें तो पता चलता है कि उन्होंने यूक्लिड के प्रमेयों से लेकर मोंज के समीकरणों तक अनेक विषयों पर कार्य किया। उन्होंने गणित को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये भी दिखाया कि गणित का उपयोग वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को समझने में कैसे किया जा सकता है।
4: उनकी एक और विशेषता थी, वे केवल नए शोध नहीं करते थे, वे गणित को सरल बनाने का प्रयास भी करते थे। कहा जाता है कि वे जटिल ज्यामितीय सिद्धांतों को बीजगणितीय रूप में समझाने का प्रयास करते थे ताकि विद्यार्थी उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें।
3: सन 1887 से सन 1890 के बीच उन्होंने भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्था में गणित के अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों में विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते थे। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी सरल होती, वो कठिन से कठिन विषय को रोचक बना दिया करते।
4: श्रोताओं, ये वही समय था जब उनके भीतर शिक्षक का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होने लगा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह दूसरों तक पहुंचे, जब वह समाज को लाभ पहुंचाए।
3: आशुतोष मुखर्जी का यह विश्वास था कि भारत को पश्चिम से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उन्होंने हमेशा भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान परंपराओं के संतुलन की बात की। उनका मत था कि विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन शिक्षा की आत्मा अपने समाज और संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए।
4: और उनके विचारों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिक्षा जगत में उनका सम्मान बढ़ रहा था। गणितज्ञ उन्हें अपने बीच का विद्वान मानते थे, शिक्षक उन्हें प्रेरणा मानते थे और विद्यार्थी उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे।
3: लेकिन आशुतोष मुखर्जी केवल एक विषय तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और जल्द ही न्यायिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना ली।
4: यह उनके व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता थी। एक ओर गणितज्ञ, दूसरी ओर वैज्ञानिक चिंतक, तीसरी ओर शिक्षाविद और अब एक विधिवेत्ता। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व इतिहास में विरला ही देखने को मिलता है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। उनका अध्ययन इतना व्यापक था कि लोग उन्हें चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा करते थे। किसी भी विषय पर उनसे बातचीत कर लीजिए, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कानून या गणित, हर विषय पर उनकी पकड़ अद्भुत थी।
4: इसी बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में गणित के लिए सशक्त मंच होना चाहिए, और ऐसा मंच जहां गणितज्ञ अपने विचार साझा कर सकें, जहां शोध को प्रोत्साहन मिले, जहां भारतीय प्रतिभाएं विकसित हो सकें।
3: और इसी विचार के साथ आगे चलकर कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये संस्था भारत में गणितीय अनुसंधान की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। आशुतोष मुखर्जी इसके संस्थापकों में अग्रणी थे और लंबे समय तक इसके नेतृत्व से जुड़े रहे।
4: आज जब हम भारत में गणितीय अनुसंधान की समृद्ध परंपरा देखते हैं तो उसके प्रारंभिक स्तंभों में आशुतोष मुखर्जी का नाम अवश्य दिखाई देता है। उन्होंने न केवल स्वयं शोध किया बल्कि शोध की संस्कृति भी विकसित की।
3: धीरे धीरे उनकी दृष्टि और व्यापक होती चली गई। अब वो केवल गणित या किसी एक विषय के विकास की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे शिक्षा तंत्र के परिवर्तन की बात कर रहे थे।
4: और यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वह अध्याय जिसने उन्हें भारतीय शिक्षा जगत का महानायक बना दिया। एक ऐसा अध्याय जिसमें वे विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदलते हैं, नई संस्थानों की स्थापना करते हैं, देश भर की प्रतिभाओं को आगे लाते हैं और भारतीय उच्च शिक्षा को नई दिशा देते हैं। और अब उस समय की बात करते हैं जब भारत राजनीतिक रूप से गुलाम था लेकिन मानसिक रूप से जाग रहा था। देश में नई चेतना का उदय हो रहा था। युवा वर्ग शिक्षा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मार्ग मानने लगा था और ऐसे समय में शिक्षा संस्थानों की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी।
3: साल था 1906। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में एक ऐसा नाम सामने आया जो आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा का पर्याय बन गया, आशुतोष मुखर्जी।
4: उपकुलपति का पद संभालते ही उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले संस्थान नहीं रहेगा, यह ज्ञान निर्माण का केंद्र बनेगा। यहाँ केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाएंगे, यहाँ शोध होगा, नवाचार होगा, नए विचार जन्म लेंगे।
3: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी प्रशासन की जरूरतों के अनुसार काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य ऐसे कर्मचारी तैयार करना था जो शासन व्यवस्था को चलाने में सहायता कर सकें। लेकिन आशुतोष मुखर्जी का सपना इससे कहीं अधिक बड़ा था। वो ऐसे विश्वविद्यालय चाहते थे जो राष्ट्र की बौद्धिक शक्ति बने।
4: उन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई समाज महान नहीं बन सकता। महान समाज वह होता है जो नया ज्ञान उत्पन्न करता है, जो नए प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर खोजता है।
3: और यही कारण था कि उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रमों और उच्च अध्ययन को विशेष महत्व दिया। उन्होंने योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया, शोध वृत्तियां शुरू की और नए विभागों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त किया।
4: उनकी दूरदृष्टि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था विज्ञान शिक्षा को दिया गया महत्व। उस समय विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन आशुतोष मुखर्जी समझ चुके थे कि आने वाला युग विज्ञान का युग होगा
3: और इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए भी अथक प्रयास किए। उनका सपना था कि भारत के विद्यार्थी विदेश जाए बिना भी उच्च स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें और साथ ही ये भी कि भारत की धरती पर ही विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित हों।
4: उनके प्रयासों का परिणाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय का विज्ञान महाविद्यालय। यह केवल एक भवन नहीं था, यह भारतीय विज्ञान के भविष्य की नींव था।
3: कहा जाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार लोगों से सहयोग मांगते रहे, दानदाताओं को प्रेरित करते रहे और अंततः उनका सपना साकार हुआ।
4: यहीं से आगे चलकर अनेक वैज्ञानिक तैयार हुए जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। वास्तव में यदि हम आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास को देखें तो उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की दूरदृष्टि दिखाई देती है।
3: लेकिन विज्ञान ही उनकी प्राथमिकता नहीं था, उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वो भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी उतना ही महत्व देते थे।
4: उस समय अंग्रेजी शिक्षा को ही श्रेष्ठ माना जाता था, भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था, लेकिन आशुतोष मुखर्जी इस सोच से सहमत नहीं थे।
3: बिल्कुल, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा और संस्कृति से कटकर महान नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं और भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहन दिया।
4: संस्कृत, पाली, बांग्ला, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, इन सभी विषयों को उन्होंने सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया।
3: उनका विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति साथ साथ चल सकते हैं। एक और प्रयोगशालाएं हो सकती हैं, तो दूसरी ओर साहित्य और दर्शन भी। एक ओर आधुनिक शोध हो सकता है तो दूसरी ओर परंपरा का संरक्षण भी।
4: यही संतुलित दृष्टि उन्हें अपने समय के अन्य शिक्षाविदों से अलग बनाती है। वे अतीत में अटके हुए व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे अपनी जड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में भी विश्वास नहीं करते थे।
3: आशुतोष मुखर्जी की एक और विशेषता थी, प्रतिभा को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वो व्यक्ति नहीं देखते थे, वो क्षमता देखते थे।
4: कई युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उन्होंने अवसर दिए, उनकी सहायता की, उन्हें आगे बढ़ने का मंच दिया, क्योंकि वे जानते थे कि एक प्रतिभा को अवसर देना राष्ट्र के भविष्य में निवेश करना है।
3: और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना व्यापक था कि विद्यार्थी उन्हें केवल प्रशासक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। वो उनके पास केवल शैक्षणिक समस्याएं लेकर ही नहीं आते थे, बल्कि उनसे वो अपने जीवन से जुड़े प्रश्न भी पूछते थे।
4: आशुतोष मुखर्जी का उत्तर केवल एक ही दिशा में होता था, परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति में ये तीन गुण हैं, तो सफलता देर से मिलेगी लेकिन अवश्य मिलेगी।
3: धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी विद्वता और उनकी निर्भीकता और उनकी राष्ट्र निष्ठा, इन सब ने मिलकर उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया।
4: इसी दौरान लोगों ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू किया, बंगाल का बाघ। यह केवल एक प्रशंसा नहीं थी, यह उनके साहस और स्वाभिमान का सम्मान था।
3: कारण था कि वो किसी भी तरह के दबाव के सामने झुकते नहीं थे। यदि उन्हें लगता कि कोई निर्णय शिक्षा या विद्यार्थियों के हित में नहीं है, तो वो खुलकर उसका विरोध करते, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना खड़ी हो।
4: उनके लिए केवल पद महत्वपूर्ण नहीं था, सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं थी, सत्य महत्वपूर्ण था। और यही कारण था कि वे लाखों विद्यार्थियों की प्रेरणा बन गए।
3: श्रोताओं, जब आज हम भारत के शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि जिन संस्थाओं और परंपराओं पर हमें गर्व है, उनकी नींव रखने वालों में आशुतोष मुखर्जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4: लेकिन उनके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें जानना है एक न्यायाधीश के रूप में उनका योगदान, एक पिता के रूप में उनकी भूमिका, और वह विरासत जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी। वे केवल एक शिक्षाविद तक सीमित नहीं थे, वे न्याय के क्षेत्र में भी उतने ही सम्मानित थे जितने शिक्षा के क्षेत्र में।
3: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके तार्किक क्षमता, गहन अध्ययन और निष्पक्ष दृष्टि ने शीघ्र ही उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई।
4: गणित ने उन्हें तर्क दिया था, विज्ञान ने उन्हें विश्लेषण की क्षमता दी थी, और कानून ने उन्हें न्याय का दृष्टिकोण दिया। इन तीनों का अद्भुत समन्वय उनके निर्णयों में भी दिखाई देता था।
3: कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। उनकी पहचान एक ऐसे न्यायाधीश की थी जो तथ्यों को गहराई से समझता था और किसी भी तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होता था।
4: उनके लिए न्याय केवल कानून की भाषा नहीं था, यह नैतिक उत्तरदायित्व भी था। वे मानते थे कि न्यायालय केवल विवादों का समाधान करने का स्थान नहीं, बल्कि समाज के विश्वास का केंद्र है।
3: यही कारण था कि न्यायपालिका में भी उनका सम्मान अत्यंत ऊंचा था। लेकिन जितना बड़ा उनका पद था, उतनी ही बड़ी उनकी विनम्रता भी थी।
4: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था उनका पारिवारिक जीवन। वे एक अनुशासित पिता थे, लेकिन उससे भी अधिक एक प्रेरक मार्गदर्शक।
3: उनके पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रमुख राष्ट्रनायकों में गिने गए, लेकिन किसी भी महान व्यक्तित्व के पीछे कुछ संस्कार भी होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में इन आदर्शों की छाप साफ दिखाई देती है।
4: आशुतोष मुखर्जी ने अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं दी, उन्होंने आत्मसम्मान दिया, उन्होंने सत्य के प्रति निष्ठा दी, उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना दी।
3: वो मानते थे कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके चरित्र से होती है। डिग्रियां और पद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन चरित्र से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता।
4: उनका जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने कभी सुविधा का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने हमेशा सही मार्ग चुनने का प्रयास किया, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो।
3: और आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक संस्था नहीं थी, कोई एक पद नहीं था, कोई एक सम्मान नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसी बौद्धिक परंपरा का निर्माण जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया।
4: उन्होंने भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विश्व स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षा को यह आत्मविश्वास दिया कि वह केवल अनुकरण करने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि ज्ञान निर्माण करने वाली व्यवस्था भी बन सकती है।
3: श्रोताओं, उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना है, और शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना है।
4: आज भारत के विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं, आज भारतीय वैज्ञानिक जो उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आज भारतीय विद्यार्थी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो पहचान बना रहे हैं, उन सब की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं आशुतोष मुखर्जी जैसे दूरदर्शी शिक्षाविदों का योगदान मौजूद है।
3: उनकी दृष्टि समय से बहुत आगे थी। वह ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो ज्ञान में आत्मनिर्भर हो, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, जो विज्ञान में अग्रणी हो और जो दुनिया का केवल अनुसरण न करे बल्कि उसे दिशा भी दे।
4: ये वह दिन था जब यह महान व्यक्तित्व भौतिक रूप से हमारे बीच से विदा हो गया। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन काल से बड़े हो जाते हैं, वे शरीर से नहीं अपने विचारों से जीवित रहते हैं। आशुतोष मुखर्जी ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है।
3: उनके स्मृति आज भी भारतीय शिक्षा जगत में जीवित है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है।
4: जब भी कोई विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, जब भी कोई शिक्षक शिक्षा को केवल नौकरी नहीं मिशन मानता है, जब भी कोई विश्वविद्यालय नए ज्ञान के निर्माण का संकल्प लेता है, तब कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की विरासत हमारे सामने उपस्थित होती है।
3: श्रोताओं, भारत विभूति के आज के इस विशेष अंक में हमने जाना एक ऐसे महापुरुष को जिसने गणित को साधना बनाया, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया।
4: सर आशुतोष मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके विचारों को नमन, उनके योगदान को प्रणाम।
3: तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ।
4: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत विभूति। आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, आलेख मनीषा चतुर्वेदी का था और मैं था आपके साथ विजयकांत नायक
3: और मैं थी आपकी रेडियो मित्र स्वाति।
4: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। परिक्रमा सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की, साथ ही जानकारी देंगे मौसम की भी। तो बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। रीजनल साइंस सेंटर में मंगलवार को प्रदेश की पहली स्पेस गैलरी हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गैलरी की शुरुआत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और को भारतीय दृष्टिकोण से समझने वाले सेक्शन से होती है। यहाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल के प्रसिद्ध नासदीय सूक्त के माध्यम से सृष्टि की शुरुआत से जुड़े प्रश्नों को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब ना धरती थी, ना आकाश, ना दिन था और ना रात, तब क्या था। संस्कृत श्लोकों के साथ उनके हिंदी और अंग्रेजी अर्थ भी प्रदर्शित किए गए हैं।

पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा स्थापित नृत्य गुरुकुल श्री कामाख्या कलापीठ नई दिल्ली के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर 19 जुलाई को भारत भवन के अनहद सभागार में विशेष नृत्य प्रस्तुति कथा सियाराम की का आयोजन होने जा रहा है। शाम 7 बजे होने वाले ये आयोजन महिमा श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर सोनल मानसिंह के विशिष्ट कलात्मक योगदान को समर्पित है। कार्यक्रम में रामायण की कथा को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भावपूर्ण अभिव्यक्ति संगीत अभिनय के माध्यम से मंचित किया जाएगा। सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज में ठुमरी और दादरा पर कार्यशाला होगी। कोलकाता की गायिका एवं संगीत विशेषज्ञ विदुषी इंद्राणी मुखर्जी प्रतिभागियों को इन दोनों गायन शैलियों की बारीकियां सिखाएंगी। समय होगा सुबह 11 बजे से और इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कालिदास जयंती और वंदे मातरम राष्ट्र गीत सार्ध शती के उपलक्ष में राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 2026 के तहत भोपाल में देशभक्ति पर आधारित नाटक आजाद बुलंदी भगत सिंह का मंचन किया जाएगा। शाम 6 बजे से रविंद्र भवन में, इसमें भी प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

और श्रोताओं, आप जनजातीय संग्रहालय में सुबह 11 बजे से देख सकते हैं शलाखा चित्र प्रदर्शनी। साथ ही एक और चित्र प्रदर्शनी आप देख सकते हैं मानव संग्रहालय में सुबह 11 बजे से। यहाँ पर चित्र कार्यशाला भी लगी हुई है।

और आइए अब आपको जानकारी दे दें मौसम की। आज दिन का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री रहने की संभावना है। शहर में आज भी बादलों और धूप की आंख मिचोली होने की संभावना है।

परिक्रमा में आज बस इतना ही रखिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल, हमें दे अनुमति कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, PWD में काम करते, PWD में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बताए तेरे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आइए अब आपको सुनवाते हैं देशभक्ति गीत वीरों का कैसा हो बसंत। ये हैं देशभक्ति गीत के बोल।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। इस वक्त आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस पुष्प विन्यास में आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस सर्ग में जहां रण की गर्जना से पहले संकल्प की दीप्ति जन्म लेती है। श्रोताओं, रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की तपा भूमि से आगे बढ़ते हुए अब हम तृतीय सर्ग के द्वार पर हैं, जहां वनवास की अग्नि में तपे पांडव नव तेज के साथ लौटते हैं और विपत्ति से निखरा मानव साहस अपना स्वर पाता है। यहां शब्द शंखनाद नहीं, संकल्प की धधकती हुई शपथ है।
3: आइए श्रोताओं, अब प्रवेश करें रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में, जहां यह रथ अपने ज्वलंत अश्वों सहित इतिहास की सीमाएं लांघता हुआ हमें नई विभा, नए संघर्ष और नए उत्कर्ष की ओर ले चलेगा। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का भाग एक।
2: हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
3: मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के आगे पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी के जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोहे जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं।
2: रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का यह आरंभ हमें एक गहरे जीवन सत्य की ओर ले जाता है। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हुई और पांडव वन से लौटे, पर ये मात्र लौटना नहीं था, ये रूपांतरण था। वे जैसे गए थे वैसे नहीं लौटे, वे तपे हुए, निखरे हुए और भीतर से और अधिक दीप्त होकर लौटे।
3: यहाँ एक गूढ़ दार्शनिक संदेश निहित है, विपत्ति दंड नहीं अवसर है, वह हमारे व्यक्तित्व की छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। संघर्ष की अग्नि में ही मनुष्य अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता है और उसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग।
2: वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर।
3: विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। श्रोताओं, तृतीय सर्ग के भाग दो में मानो दिनकर जी ने कहीं अपने ही जीवन के संघर्षों से उत्पन्न भावों को पांडवों की कहानी में उकेर दिया हो। जीवन जीना मानो पत्थर पर फूल उगाने की कोई कला जैसा होता है। जो पुरुष कर्मशील है उसे विपत्तियों से भयभीत नहीं होना चाहिए, और जो धीर है वह सुखों में डूबकर अपने लक्ष्य को नहीं भूलता।
2: श्रोताओं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, इन पंक्तियों में केवल पांडवों के लिए संदेश नहीं है, बल्कि भारत की युवा शक्ति के लिए एक कालजयी पुकार है। मानो कवि सीधे युवा हृदय से संवाद कर रहा हो और कह रहा हो, हे नवयुवक, तू कठिनाइयों से भागने के लिए नहीं जन्मा, तू उन्हें परास्त करने के लिए जन्मा है। संघर्ष तेरी बाधा नहीं, तेरी निर्माण भूमि है। विपत्ति तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। यदि तू आराम में डूबा रहेगा तो सो जाएगा, पर यदि तू संघर्ष को अपनाएगा तो जाग जाएगा। तेरी नसों में केवल रक्त नहीं, ऊर्जा स्वप्न और परिवर्तन की शक्ति बह रही है। समय उसी का साथ देता है जो साहस करता है, इसलिए उठ, अपने भीतर की अग्नि को पहचान, विपत्तियों पर छा जा और अपने पुरुषार्थ से अपना ही नहीं युग का भाग्य लिख दे।
3: श्रोताओं, हमें अब उस रथ की आवाज सुनाई दे रही है जिसके रथ से संसार के मनोरथ जुड़ते हैं, जिसके रथ के पहिए पहिए न होकर हम सभी के काल चक्र की ओर घूमते हुए हमारे जीवन और हमारी मृत्यु का विधान तय करते हैं। आइए उसी रथ के साथ तृतीय सर्ग के भाग तीन में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं इस तृतीय सर्ग का भाग तीन। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण कहते हैं,
2: दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे।
3: दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
2: जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र, शतकोट सरित सर सिंधु मंद्र।
3: श्रोताओं, अभी आपने तृतीय सर्ग का ये भाग सुना। कथा महाभारत से ली गई है, पर दृष्टि दिनकर जी की है। यही तो विशेषता है रश्मि रथी की कि ये केवल अतीत का आख्या नहीं, यह वर्तमान का मार्गदर्शन है। जीवन में शांति मार्ग सदैव श्रेष्ठ होता है। कृष्ण पहले दूत बनकर आते हैं, शस्त्र लेकर नहीं। ये हमें सिखाता है कि संवाद युद्ध से बड़ा होता है। अब समस्या ये है कि हमारा अहंकार उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक हम अपने भीतर के दुर्योधन को नहीं पहचानेंगे, तब तक विराट सत्य सामने होते हुए भी हम अंधे ही रहेंगे। दिनकर जी की कलम हमें झकझोरती है। यह काव्य केवल सुनने के लिए नहीं, आत्ममंथन के लिए है। आइए अब प्रवेश करें उस क्षण में जहां मनुष्य ईश्वर को बांधने चलता है और उत्तर में ईश्वर ब्रह्मांड का पट खोल देते हैं। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ। इसे श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से भी सुनते और जानते हैं।
2: शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, पर मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
3: थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
2: श्रोताओं, दिनकर जी की अमर कृति रश्मि रथी हमें केवल महाभारत की कथा नहीं सुनाती, वो हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र को उजागर करती है। अतः आइए इस प्रसंग से ये सीख लेकर आगे बढ़ें कि शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, विनम्रता ही बल है और आत्मचिंतन ही वो दीप है जो हमें विनाश से बचा सकता है।
3: आइए सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा,
2: हाय हम शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वी, तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं और क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हां एक बात यदि तू मानी, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने हो तत्पर। मां का स्नेह पाया ना कभी, सामने सत्य आया ना कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। हा हा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, हसली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुटमान सिंहासन ले ले, बस बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके।
3: श्रोताओं अभी आपने कृष्ण की वाणी सुनी, वह वाणी जो केवल शब्द नहीं करुणा का समुद्र है, केवल तर्क नहीं समय की अंतिम पुकार है। वे कर्ण को समझा रहे हैं, पर वस्तुतः मनुष्य के भीतर बैठे उस द्वंद को संबोधित कर रहे हैं, जहां कर्तव्य और कृतज्ञता, जन्म और पालन, सत्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्ण जैसे कोई दीपक लेकर अंधेरी सुरंग में उतर आए हों, वे कर्ण को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा,
4: हे कृष्ण, बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानी व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको पालती उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है अंतर का रुधिर पिलाती है आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए सुनना ना चाहते तनिक श्रवण जिस माँ ने मेरा किया जनन वो नहीं नारी कुलपाली थी सर्पणी परम विकराली थी पत्थर समान उसका ही था सुत से समाज बढ़कर प्रिय था गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया माताओं को बदनाम किया माँ का पै भी न पिया मैंने उल्टे अभिशाप लिया मैंने वो तो यशस्वनी बनी रही सबकी भौं मुझ पर तनी रही कन्या वो रही अपरिणीता जो कुछ बीता मुझ पर बीता मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मलीन जब रोज अनादर पाता था कह शूद्र पुकारा जाता था पत्थर की छाती फटी नहीं कुंती तब भी तो कटी नहीं मैं सूत वंश में पलता था अपमान अनल में जलता था सब देख रही थी दृश्य प्रथा माँ की ममता पर हुई वृथा छिपकर भी तो सुधी ले न सकी छाया अंचल की दे न सकी पांच तनय फूली फूली दिन रात बड़े सुख में भूली कुंती गौरव में चूर रही मुझ पतित पुत्र से दूर रही क्या हुआ कि अब अकुलाती है किस कारण मुझे बुलाती है क्या पांच पुत्र हो जाने पर सुत के धन धाम गवाने पर या महानाश के छाने पर अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती हैं बिछड़ों को गले लगाती हैं कुंती जिस भय से भरी रही तज मुझे दूर हट खड़ी रही वो पाप अभी भी है मुझ में वो शाप अभी भी है मुझ में क्या हुआ कि वो डर जाएगा कुंती को काट ना खाएगा सहसा क्या हाल विचित्र हुआ मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ कुंती का क्या चाहता हृदय मेरा सुख या पांडव की जय ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव ये परिवर्तन क्या है मैं हुआ धनुर्धर जब नामी सब लोग हुए हित के कामी पर ऐसा भी था एक समय जब ये समाज निष्ठुर निर्दय किंचित ना स्नेह दर्शाता था विष व्यंग सदा बरसाता था उस समय सुअंक लगा करके अंचल के तले छिपा करके चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर राधा को छोड़ भजूं किसको जननी है वही तजूं किसको हे कृष्ण जरा ये भी सुनिए सच है कि झूठ मन में गुनिए दोनों में मैं था पड़ा हुआ किसका स्नेह पा पड़ा हुआ किसने मुझको सम्मान दिया निरपता दे महिमा पान किया अपना विकास अवरुद्ध देख सारे समाज को क्रुद्ध देख भीतर जब टूट चुका था मन आ गया अचानक दुर्योधन निश्चल पवित्र अनुराग लिए मेरा समस्त सौभाग्य लिए कुंती ने केवल जन्म दिया राधा ने मां का कर्म किया राधा ने मां का कर्म किया।
2: श्रोताओं कर्ण के शब्दों में अभी आपने केवल आक्रोश को नहीं सुना एक ऐसे पुत्र का रिश्ता हुआ हृदय सुना है जिसे जन्म तो मिला पर अपनापन नहीं मिला। ये संवाद तीर की तरह बाहर नहीं आता, भीतर धसता चला जाता है। कर्ण आज प्रश्न कर रहा है, पर यह प्रश्न केवल कुंती से नहीं है, ये उस समाज से भी है जो समय देखकर रिश्तों की चादर ओढ़ता और उतारता है। सच ही कहा गया है श्रोताओं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिस बालक ने जन्म से ही तिरस्कार की धूप सही हो, वो अचानक मिले स्नेह पर सहज कैसे विश्वास कर ले।
3: और देखिए ना, कर्ण की वेदना केवल मातृत्व के अनुपस्थित तक सीमित नहीं है, उसके भीतर वर्षों का अपमान अंगार बनकर धधक रहा है। वह पूछ रहा है, जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराता था, तब किसने मेरा हाथ थामा था, कौन मेरे आंसुओं पर मरहम रखता था। यही कारण है कि उसका मन आज जन्म से अधिक पालन को सत्य मानता है। श्रोताओं, लोक में कहा जाता है कि जिसने दुख की धूप में साथ दिया वही अपना कहलाया। कर्ण के लिए राधा केवल पालक माता नहीं, उसकी आत्मा का आश्रय है।
2: दोस्तों, दिनकर जी यहां केवल कर्ण की कथा नहीं लिखते, वे मनुष्य के भीतर के उस खालीपन को शब्द देते हैं जहां अपनापन और उपेक्षा आमने सामने खड़े होते हैं। कृष्ण उसे उसके जन्म का सत्य दिखा रहे हैं, पर कर्ण जीवन का सत्य सामने रख रहा है। यही इस प्रसंग की महत्ता है। यहां धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, संबंधों की कसौटी पर भी परखा जा रहा है।
3: श्रोताओं, अभी कर्ण का मन पूरी तरह खुला नहीं है, उसके हृदय में वर्षों से दबा हुआ लावा अभी और फूटना बाकी है। उसकी वाणी में अभी भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समय के सीने पर चोट करने वाले हैं। अगले भाग में कर्ण अपने जीवन, अपनी मित्रता, अपने अपमान और अपने धर्म का ऐसा पक्ष रखेगा जहां करुणा और प्रतिज्ञा एक साथ दिखाई देंगी। अगले अंक में सुनेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के अंतर मन का वह ज्वालामुखी जो अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से फटने को है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, वाचन स्वर मैं भगवती सक्सेना,
5: मैं संदीप शर्मा
6: और मैं दीपक नेमा।
3: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन, ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
7: हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक, दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
8: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर ना आए।
2: नमस्कार, मैं हूँ कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक। श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
2: और मैं दीपक।
1: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: श्रोताओं, हम अपने इस कार्यक्रम में हर हफ्ते आपको बताते हैं हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें पूरा देश और ये दुनिया ही मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने भारत देश के राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही अर्थों में वे एक महान वैज्ञानिक हैं और मिसाइलों के सृजक के रूप में विख्यात हैं।
2: श्रोताओं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। वे APJ अब्दुल कलाम के नाम से विख्यात हैं। उनका जन्म एक गरीब पर ईमानदार और सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर अत्यंत कुशल, दक्ष और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके पिता के लिए अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करना आसान काम नहीं था, पर वे विनम्र और परिश्रमी व्यक्ति थे। वे अपनी नाव पर तीर्थयात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने और लाने का काम करते थे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने प्रतिभाशाली बालक अब्दुल कलाम को रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया।
1: डॉक्टर अब्दुल कलाम के एक लेख के अनुसार उनके घर के पास कुछ सुसंस्कृत हिंदू परिवार रहते थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था। इस पुजारी परिवार के मानवीय मूल्यों ने कुछ हद तक कलाम साहब को प्रभावित किया। भगवद गीता में कही गई गूढ़ बातों और उनके संदर्भ को उन्होंने समझा। वे आज भी शुद्ध शाकाहारी और गीता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाल्यावस्था में उन्हें इस सुसंस्कृत पड़ोसी से बहुत प्रेम और स्नेह मिला। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 13 वर्ष के अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम जिला मुख्यालय के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। पिता ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक उनके साथ भी गए। उन्होंने कलाम को आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।
2: डॉक्टर कलाम ने शॉर्ट्स हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस स्कूल का संचालन रामेश्वरम के ईसाई मिशनरी द्वारा किया जाता था। वहां वे छात्रावास में रहे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद अब्दुल कलाम के माता पिता ने उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा। पढ़ाई करने के लिए वे उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अपने अध्यापकों का भी दिल जीत लिया था। हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ाई के लिए सन 1950 में वे समीप के नगर तिरुचिरापल्ली गए और वहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। डॉक्टर कलाम वहाँ 4 वर्ष तक रहे। अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में उनकी रुचि भौतिकी में हो गई। BSc उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम यानी एविएशन इंजीनियरिंग कोर्स का चुनाव किया। उन्होंने मनी मन ठान लिया था कि वे विमान चालक बनेंगे। 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद अंत में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने DMIT की डिग्री प्राप्त की।
1: मद्रास का DMIT कोर्स पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम ने प्रशिक्षणार्थी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में प्रवेश लिया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने के बाद उनके सामने 2 अवसर थे। दोनों उनकी पसंद के थे। पहला था वायुसेना में भर्ती होकर पायलट के रूप में आगे बढ़ना और दूसरा था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTDAP में निदेशक का कार्यभार संभालना। उन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन पत्र भेजे और दोनों ही स्थानों पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद वे समय पर वायुसेना के साक्षात्कार के लिए गए और साक्षात्कार उनकी आशा के अनुकूल हुआ। इस साक्षात्कार के एक सप्ताह बाद उन्हें देहरादून में वायुसेना चयन समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना था। यहाँ शारीरिक योग्यता के साथ साथ अन्य अनेक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना था। ये थोड़ा सा अलग तरह का साक्षात्कार था। 25 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों का चयन किया जाना था और डॉक्टर कलाम 9वें स्थान पर थे। उन्हें लगा कि वे वायुसेना में जाने का अवसर गंवा चुके हैं। उन्हें दुख भी था। फिर उसके बाद वहां से वे ऋषिकेश गए। पावन गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्हें आत्म शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद वे पास ही स्थित शिवानंद आश्रम में गए। स्वामी जी के दर्शन कर वे बेहद प्रभावित हुए। वे स्वामी शिवानंद जी से मिले। स्वामी जी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने स्वामी जी को बताया कि वायुसेना में काम करने का अवसर खो देने के कारण वे दुखी हैं। तब स्वामी जी ने उनसे कहा, भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में होना था वो हो चुका है, इसलिए निराश मत हो। हो सकता है कि ये बेहतरी और उत्तम काम के लिए हुआ है। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। स्वामी जी की ये बातें सुनकर डॉक्टर कलाम जी को शांति मिली। इसके बाद वो वहां से चल दिए और दिल्ली आ गए।
2: कुछ समय पश्चात ही उन्हें 250 रुपए मासिक वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। शायद उनके भाग्य में यही काम करना लिखा था। वे 3 वर्ष उत्तर भारत में ही रहे। इस दौरान 1 वर्ष तक वे औद्योगिक नगरी कानपुर में भी रहे। अलग अलग लोगों से उनका संपर्क हुआ, पर उनका मन हमेशा रामेश्वरम की शांति के लिए लालायित रहता था।
1: इसके बाद उनका स्थानांतरण बेंगलुरु में नव स्थापित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हुआ। डॉक्टर कलाम कार्यभार संभालने के लिए बेंगलुरु गए। कुछ समय बाद उनके अधीन 4 वैज्ञानिकों का एक दल बनाया गया। इस दल को 3 वर्ष में पूर्ण रूप से स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट बनाने का दायित्व सौंपा।

0: हावरक्राफ्ट का नाम भगवान शिव के वाहन के नाम पर नंदी रखा गया था।
1: उसके बाद कृष्ण मेनन ने रक्षा मंत्रालय छोड़ दिया और यह परियोजना भी ताक पर रख दी गई। एक बार वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के प्रमुख ने कलाम से कहा कि एक उच्चाधिकारी इस परियोजना को देखने आ रहे हैं। वे उच्चाधिकारी नियत दिन आए। उन्होंने परियोजना और उसकी प्रगति के विषय में पूछताछ की और कई सवाल भी किए। डॉक्टर कलाम को यह पता नहीं था कि वे सज्जन कौन हैं। वास्तव में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के निदेशक प्रोफेसर MG के मेनन थे।
0: कुछ समय बाद अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी भारतीय समिति ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु एक साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन ने कलाम का साक्षात्कार लिया और फिर उनको अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिस तरीके से साक्षात्कार किया, डॉक्टर कलाम उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिया गया है। अगले दिन से TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर विभाग में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। उनके अनुसार अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का माहौल बहुत ही अच्छा और अनुकूल था और सरकार के अन्य विभागों से पूरी तरह से अलग।
1: सन 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक स्थान में एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया। इसके लिए डॉक्टर कलाम को रॉकेट लॉन्चिंग में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में जाने के लिए चुना गया। पूरे परिवार को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर कलाम को विदेश जाने का अवसर मिला है। 6 महीने बाद कलाम भारत लौटे। देश का प्रथम रॉकेट नाइक अपाशे विदेश से उपहार में मिला। इसे 21 नवंबर 1963 को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। डॉक्टर कलाम ने इसके तमाम तकनीकी दायित्वों को संभाला था। उसकी सफलता के बाद वैज्ञानिक और तकनीशियनों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। इसके बाद डॉक्टर साराभाई द्वारा बुलाई गई एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि उपग्रह विमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग

0: अनुसंधान समिति यानी इंडियन नेशनल रिसर्च कमेटी का पुनर्गठन किया गया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो नामक एक नई सरकारी एजेंसी की स्थापना की गई। इसके बाद फरवरी 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए थुम्बा में विषुवतीय यानी इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र का उद्घाटन किया। इससे किसी भी देश के वैज्ञानिक के लिए इस प्रयोगात्मक स्टेशन की सुविधा का उपयोग करना और उसका लाभ उठाना सुनिश्चित हो गया।
1: स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती 15-20 वर्षों के दौरान हमारी सेना को अतिरिक्त पुर्जे और अन्य रक्षा सामग्री के लिए पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशी शक्तियां अपनी पुरानी और अप्रचलित सैन्य सामग्री हमारे जैसे विकासशील देशों को देकर यह जताती थी जैसे वे हम पर कृपा कर रही हों। विदेशी इन उपकरणों की आपूर्ति कर विकासशील देशों से बहुत अधिक धन कमाते थे। इस कमी को दूर करने और इस पर काबू पाने के लिए एकीकृत नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। इसका पूरा उत्तरदायित्व डॉक्टर कलाम को सौंपा गया। प्रोग्राम के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद 12 से 15 घंटे तक प्रतिदिन काम करके डॉक्टर कलाम ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने मिसाइलों का जब गहन और विस्तृत अध्ययन शुरू किया तब उन्हें पता चला कि 4 प्रकार की मिसाइलें बहुत ही आवश्यक हैं।
0: पहली है जमीन से जमीन पर मार करने वाली और दुश्मन के टैंकों, जहाजों और सैन्य सामग्रियों को नष्ट करने वाली मिसाइल।
1: दूसरी है जमीन से आकाश में निर्धारित स्थल पर वार करने वाली मिसाइल। इस प्रकार की मिसाइल दुश्मन के हवाई हमलों का कारगर ढंग से सामना कर सकती है।
0: और तीसरी है आकाश से आकाश में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो आकाश में आने वाले दुश्मन के बम वर्षक विमानों और मिसाइलों की टोह लगाकर उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर सके। और चौथी मिसाइल है श्रोताओं, ऐसी मिसाइल जिन्हें लड़ाकू विमानों से दाग कर दुश्मन के ठिकानों और उनकी सैन्य सामग्रियों का सफाया किया जा सके।
1: इसके बाद रोहिणी परियोजना के प्रमुख के रूप में डॉक्टर कलाम ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने और मिलने जुलने का अवसर मिला। इसरो में उन्होंने उपग्रह प्रमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण का कार्य किया और SLV-3 की सफल उड़ान में कामयाब रहे। डॉक्टर कलाम को महसूस हुआ कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मिसाइलों के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा किए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए डॉक्टर कलाम आज भी उनके कृतज्ञ हैं।
0: अंतरिक्ष विभाग में कार्यभार संभाल लेने के बाद भी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं का लाभ उठाया। वे संगठन के निकट संपर्क में रहे, वहां पर वैज्ञानिकों के समूह ने मिसाइलों को विकसित करने में उनकी सहायता की थी। मिसाइलों के विकास में डॉक्टर कलाम ने सबसे अधिक योगदान दिया था। उनके अनुसार अग्रभाग यानी कि सामने के हिस्से पर बम लगे रॉकेट को मिसाइल कहते हैं। मिसाइल वास्तव में एक विध्वंसक हथियार है। अंतरिक्ष उड़ान में प्रयोग किए जाने वाले रॉकेट से इसका कोई संबंध नहीं है। मिसाइलों को वायुयानों, पनडुब्बियों और भूमि से दागा जा सकता है। जिन मिसाइलों को रेडियो तरंगों द्वारा या किसी आंतरिक क्रिया या यंत्र विधि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है उन्हें नियंत्रित मिसाइल कहते हैं। ये मिसाइल निश्चित स्थान पर अपने निर्धारित लक्ष्य का पता लगा सकती हैं। मिसाइल भेदी मिसाइलों का प्रयोग दागी गई मिसाइलों को उनके मार्ग में ही रोककर नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन देश मिसाइलों का उत्पादन करते थे। भारत ने पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि जैसी अलग अलग मिसाइलों के उत्पादन और निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है। श्रोताओं, भारत विश्व में 6ठा मिसाइल उत्पादक देश है।
1: एक दिन 30 दिसंबर 1971 को दिल्ली में एक विशिष्ट समिति की बैठक में भाग लेने के बाद डॉक्टर कलाम थुम्बा वापस लौट रहे थे। उस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई थुम्बा में ही थे। डॉक्टर कलाम ने दिल्ली से उन्हें टेलीफोन कर बैठक के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनसे कहा कि वे मुंबई जा रहे हैं डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर सारा भाई से थुम्बा हवाई अड्डे पर मिलने की इच्छा जाहिर की। परंतु डॉक्टर कलाम जब थुम्बा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ घंटे पहले डॉक्टर सारा भाई का स्वर्गवास हो गया है। इस घटना से डॉक्टर कलाम को बहुत गहरा दुख पहुंचा। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग का कार्यभार डॉक्टर सतीश धवन को सौंपा गया। डॉक्टर धवन ने SLV-3 की व्यवस्था डॉक्टर कलाम के हाथों सौंप दी।
0: इसके बाद सन 1975 में इसरो एक सरकारी संगठन बन गया और उसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया। सन 1976 में 102 वर्ष की आयु में डॉक्टर कलाम के पिता का निधन हो गया और कुछ समय बाद ही उनकी माता जी का भी देहांत हो गया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी डॉक्टर कलाम ने अपने आप को संभाले रखा। इसके बाद एक बार फिर डॉक्टर कलाम को इसरो से रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL में ले जाने की योजना शुरू हो गई। इसी बीच 18 जुलाई 1980 को 8:03 पर भारतीय उपग्रह प्रमोचन यान यानी SLV-3 श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। समस्त चरणों को सही ढंग से कार्यान्वित किया गया और रोहिणी उपग्रह को निर्धारित समय पर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जब डॉक्टर कलाम केंद्र के परिसर से बाहर आए तो लाज से भरे उनके सहकर्मियों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। प्रोजेक्ट की सफलता की घोषणा तत्काल रेडियो और TV पर कर दी गई।
1: तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सफलता पर पूरे दल को बधाई दी। भारत इस प्रकार की असाधारण सफलता प्राप्त करने वाला विश्व में 5वां देश बन गया। 26 जनवरी 1981 को डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद जून 1982 से डॉक्टर कलाम ने अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। कुछ समय पश्चात उनकी सेवाओं के लिए चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद डिग्री प्रदान की। इसके बाद संशोधित ASLV का निर्माण किया गया जिसमें पेलोड 40 किलोग्राम से बढ़ाकर 150 किलोग्राम कर दिया गया। 26 जून 1984 को डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में विशेष रूप से सेना के लिए विकसित डेविल मिशन का सफल परीक्षण किया गया।
0: इसकी प्रगति देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी परीक्षण स्थल पर गए थे। अगस्त 1985 में डॉक्टर कलाम को अमेरिकी वायुसेना ने अपनी निपुणताओं का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। उनके साथ उनके 3 अन्य सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया। इसी बीच 16 सितंबर 1985 को श्री हरिकोटा परीक्षण रेंज से त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर श्री हरिकोटा रेंज से पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम भार वाले बम ले जा सकती है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। पश्चिमी राष्ट्रों ने सफलता पर चिंता प्रकट की और 7 देशों ने भारत को आवश्यक कच्चा माल नहीं देने का निर्णय किया। परंतु इसके बाद भी अपनी क्षमता को सिद्ध करते हुए भारत ने 22 मई 1989 को सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1990 को गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। साथ ही जादवपुर विश्वविद्यालय और उसके बाद IIT मुंबई ने उनको डॉक्टरेट की मानद डिग्रियां प्रदान की। इसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और 25 नवंबर 1999 को उन्हें केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके कुछ वर्षों बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया और उसके बाद डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। वे प्रधानमंत्री को अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक और तकनीकी नीतियों और साथ ही वैज्ञानिक विकास के संबंध में परामर्श देते और उनका मार्गदर्शन करते रहते।
1: केंद्र सरकार ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए सतह से सतह तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल विकसित की। ये 250 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसकी मालवाहन क्षमता 1000 किलोग्राम है। इसका प्रयोग एक युद्ध अस्त्र के रूप में किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने पराध्वनि प्रणाली यानी सुपरसोनिक सिस्टम विकसित किया जो शत्रु के युद्धपोतों को नष्ट कर सकती है। वायुसेना के लिए भी डॉक्टर कलाम ने एक शक्तिशाली मिसाइल विकसित की है। यह मिसाइल आकाश से जमीन पर मार कर सकती है। अब वे इसे राडार प्रणाली से जोड़कर और अधिक प्रभावी बना रहे हैं। इस प्रकार चालक रहित विमान स्वयं ही शत्रु के विमानों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकते हैं।
0: श्रोताओं, सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। और इसके बाद डॉक्टर कलाम ने कुछ वर्षों बाद प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद से त्याग पत्र दे दिया और विज्ञान की सेवा करने की योजना बनाई। उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला और इसी बीच नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने उनसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। 15 जुलाई 2002 को काफी बहुमत से डॉक्टर कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN कृपाल द्वारा उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। और इस प्रकार श्रोताओं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। श्रोताओं,
1: सदैव मुस्कुराते रहने वाले डॉक्टर कलाम सरल, विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। वे मित्रों और सहकर्मियों की बात शांतिपूर्वक सुनते हैं और उन्हें सरल ढंग से समझाते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सरल और महान वैज्ञानिक अपने प्रयासों में प्रगति करते हुए अपेक्षित सफलता प्राप्त करें।
0: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारे ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, जो आज केंद्रित था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं उमेश वीनस तरकसवार के संगीत निर्देशन में मध्य प्रदेश गान।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि नामक पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देना।
1: स्वभाव से ही मानव मन अति चंचल है, वो एक क्षण भी किसी वस्तु पर ठहर नहीं सकता। इस मन की चंचलता को नष्ट कर उसे किस प्रकार अपने काबू में लाना, किस प्रकार उसकी इधर उधर बिखरी हुई शक्तियों को समेट कर सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर देना, यही राजयोग का विषय है।
0: गीता में श्री कृष्ण ने कहा है,
2: जो किसी से घृणा नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो सबके प्रति करुणा संपन्न है, जिसका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट है, जो सर्वदा योग युक्त यतात्मा और दृढ़ निश्चय वाला है, जिसका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित हो गई है, वही मेरा प्रिय भक्त है, जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, जिसने अतिरिक्त हर्ष दुख भय और उद्वेग त्याग दिया है, ऐसा भक्त ही मेरा प्रिय है। जो किसी का भरोसा नहीं करता, जो शुचि और दक्ष है, सुख और दुख में उदासीन है, जिसका दुख चला गया है, जो निंदा और स्तुति में समभावापन है, मौनी है, जो कुछ पाता है उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं।
1: गीता के इसी वचन को स्वामी विवेकानंद ने एक कहानी के माध्यम से कहा।
3: नारद नामक एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन वन से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभु आप कहां जा रही हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं बैकुंठ जा रहा हूं। तब उसने कहा, अच्छा आप भगवान से पूछते आए, वे मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा। फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वो कूद फांद रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति का कंठ स्वर चाल ढाल आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने उसे भी पहले के समान उत्तर दिया। वो बोला, अच्छा तो भगवान से पूछते आए, मैं कब मुक्त होऊंगा। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हां पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा मुझको पाने के लिए उसे और चार जन्म लगेंगे। तब तो वो योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और चार जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हां भगवान ने कहा है उसके सामने जो इमली का पेड़ है उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार इसको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब एक देववाणी हुई, मेरे बच्चे तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे।
0: वो दूसरा व्यक्ति इतना अध्य व्यवसाय संपन्न था, इसलिए उसे वो पुरस्कार मिला। वो इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था, कुछ भी उसे उद्योग शून्य न कर सका। परंतु वो प्रथमोक्त व्यक्ति चार जन्मों की ही बात सुनकर घबरा गया। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए सैकड़ों युग तक बाट जोहने को तैयार था, उसके समान अध्य व्यवसाय संपन्न होने पर ही उच्चतम फल प्राप्त होता है।
1: स्वामी जी राजयोग को समझाते हुए कहते हैं,
3: योग से ज्ञान लाभ होता है। ज्ञान योगी की मुक्ति के पथ का सहायक है। जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान हैं, ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होता है। जो लोग प्रतिदिन एक बार, दो बार, तीन बार या सारे समय महायोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें देवता समझना चाहिए। योग दो प्रकार के हैं, जैसे अभाव योग और महायोग। जब शून्य तथा सब प्रकार के गुण से रहित रूप से अपना चिंतन किया जाता है, तब उसे अभाव योग कहते हैं। और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंद पूर्ण, पवित्र और ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है, उसे महायोग कहते हैं। योगी इनमें से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। हम दूसरे जिन योगों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं, वे सब योग इस उत्तम महायोग, जिसमें योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं, के साथ एक श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते। ये सारे योगों में श्रेष्ठ है।
0: इसके बाद स्वामी जी समझाते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। उन्होंने कहा,
3: आप इस बात को ध्यान में रखिए कि धर्म न बातों में है, न सिद्धांतों में और न पुस्तकों में है। वो है प्रत्यक्ष अनुभव में। वो शिक्षा नहीं है, आचरण है। वो सीखना नहीं है, होना है। चोरी मत करो, इसे सब जानते हैं, पर इससे क्या? इसे तो यथार्थ में उसी ने जाना जिसने चोरी नहीं की। दूसरे को हानि मत पहुंचाओ, ये बात हर एक को मालूम है, पर इसके क्या लाभ? जिन्होंने दूसरों को हानि नहीं पहुंचाई, उन्हीं ने इस वाक्य का अनुभव किया, उन्हीं ने उसे जाना और उस सिद्धांत पर अपने चरित्र का निर्माण किया। अतः हमें अपने धर्म का अनुभव करना है। धर्म का यह अनुभव एक लंबी क्रिया है। जब लोग किसी उच्च अद्भुत विषय के संबंध में सुनते हैं, तब वे यही समझने लगते हैं कि वे उसे एकदम प्राप्त कर लेंगे। क्षण भर भी वे ये नहीं विचारते कि उसकी प्राप्ति की जाए, उन्हें उसका रास्ता तय करना पड़ेगा। वे तो वहां एकदम कूद कर पहुंच जाना चाहते हैं। यदि वो स्थान अत्यंत उच्च है तो भी हम वहां पहुंच जाना चाहते हैं। हम ये सोचने के लिए कभी नहीं रुकते कि हम में उतनी शक्ति है या नहीं। नतीजा ये होता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। आप किसी मनुष्य को जबरदस्ती उठाकर ऊपर नहीं ढकेल सकते। हम सबको क्रमशः प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। अतः धर्म का ये पहला भाग वैधि भक्ति उपासना की निचली श्रेणी है।
1: हमारी कल्पना शक्ति सीमित है। उस सीमित कल्पना के द्वारा हम असीम यानी ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा,
3: आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप कहते हैं कि परमेश्वर है और वो सर्वव्यापी व्यक्ति है, परंतु सर्वव्यापित्व के संबंध में आपकी क्या कल्पना है? उत्तर देते समय आप केवल अपनी आंखें मूंद लेते हैं और मुझे बताते हैं कि वो सर्वव्यापी किस तरह का है। आप क्या पाते हैं? या तो आप समुद्र का विचार कर रहे हैं, या नीले आकाश का, या किसी मैदान के विस्तार का, या ऐसी कुछ चीजों का जिन्हें आपने अपने जीवन में देखा है। यदि ऐसा ही है तो आप सर्वव्यापी ईश्वर शब्दों से कुछ नहीं समझते। आपके पास उनका कोई अर्थ नहीं। इसी तरह ईश्वर के अन्य गुणों के संबंध में भी समझिए।
0: हम स्थूल से भाव की ओर जाते हैं, अनुभव बाद में आता है।
3: साधारणतः सर्वशक्तिमान या सर्वदर्शी के संबंध में हमारी क्या कल्पना हुआ करती है? कुछ भी नहीं। अनुभव करना ही धर्म है। और जब आप ईश्वर के संबंध में आपकी जो कल्पना है उसका अनुभव करने में समर्थ हो जाएंगे, तब मैं आपको ईश्वर का उपासक कहूंगा। पर तब तक आपको केवल शब्द के हिज्जे ही मालूम है। आप इससे अधिक और कुछ नहीं जानते। उस अवस्था में पहुंचने के लिए जिसमें हम ईश्वर का अनुभवन कर सकेंगे, हमें साकार वस्तु के माध्यम से जाना होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि बच्चे प्रथम साकार वस्तुओं का अभ्यास करके तदुपरांत क्रमशः भाववाचक की ओर जाते हैं। यदि आप किसी बालक को पंजे 10 बताते हैं तो वो नहीं समझेगा, पर यदि आप उसे 10 चीजें दें और दो दो पांच बार उठाने से 10 कैसे हुए ये दिखा दें, वो उसे ठीक समझ लेगा। ये धीरे धीरे चलने तथा देरी का तरीका है। यहां धर्म के क्षेत्र में हम सब बच्चे ही हैं। हर उम्र में चाहे बूढ़े हों, संसार की सारी पुस्तकों का अध्ययन चाहे हमने कर लिया हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम सब बच्चे ही हैं। अनुभव करने की इस शक्ति से धर्म बनता है।
1: मनुष्य अपनी कल्पना से मंदिर मस्जिद बनाकर उसे ही भगवान का प्रतीक मानकर पूजा करता है। स्वामी जी समझाते हैं,
3: हमें स्थूल या साकार रूप में विधि, मंत्र, स्त्रोत, संस्कार और अनुष्ठानों द्वारा प्रारंभ करना होगा। ये स्थूल विधियां हजारों होंगी, सबके लिए एक ही विधि होना आवश्यक नहीं है। किसी को मूर्ति से सहायता मिलती है और किसी को नहीं। किसी को बाहरी मूर्ति की आवश्यकता होती है और किसी को अपने मन में ही मूर्ति की कल्पना करने की आवश्यकता पड़ती है। मन में ही मूर्ति की कल्पना करने वाला कहता है, मैं उच्च श्रेणी का हूं क्योंकि मानस पूजा ठीक है। बाहरी मूर्ति की पूजा करना बुतपरस्ती है, निंदनीय है, मैं उसका विरोध करूंगा। जब मनुष्य गिरजाघर या मंदिर के रूप में मूर्ति बनाता है तो वो उसे पवित्र समझता है, पर यदि वो मूर्ति मनुष्य की आकृति हुई तो उसे वो बिल्कुल घृणित समझता है। अतः मन अपना ये स्थूल अभ्यास भिन्न भिन्न रूपों द्वारा करेगा और धीरे धीरे हमें सूक्ष्म का ज्ञान प्राप्त होगा, सूक्ष्म का अनुभव होगा। एक ही विधि सबके लिए ठीक नहीं हो सकती। एक विधि मेरे लिए उपयुक्त हो सकती है, दूसरी किसी और के लिए। आदि आदि सभी मार्ग यद्यपि उसी ध्येय को पहुंचाते हैं, तथापि वे सभी सबके योग्य नहीं होते।
0: स्वामी जी कहते हैं, अपनी धारणा दूसरों पर थोपना ठीक नहीं, सबका पथ अलग अलग है।
3: हम एक गलती और करते हैं, मेरा आदर्श आपके लायक नहीं है तो मैं उसे जबरदस्ती आपके गले क्यों मढूं? गिरजाघर बनाने का मेरा नमूना या स्त्रोत पाठ करने की मेरी विधि यदि आपको ठीक नहीं जचती तो मैं उस संबंध में आप पर जबरदस्ती क्यों करूं? आप दुनिया में जाइए, प्रत्येक अबोध व्यक्ति यही कहेगा कि मेरी ही विधि ठीक है तथा अन्य सब विधियां आसुरी हैं। संसार में मेरे सिवाय ईश्वर का और कृपा पात्र पैदा ही नहीं हुआ, पर सभी विधियां अच्छी और उपयोगी हैं। मानव प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अतः यह आवश्यक है कि धर्म भिन्न भिन्न प्रकार का हो, और जितने ही अधिक प्रकार के धर्म हो उतना ही संसार के लिए भला है। यदि संसार में 20 प्रकार के धर्म हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि 400 प्रकार के धर्म हो गए तो और भी अच्छा, क्योंकि उस अवस्था में धर्म पसंद करने का अवसर तथा क्षेत्र अधिक रहेगा। अतः हमें तो धर्म तथा धार्मिक आदर्शों की संख्या बढ़ने पर उल्टे प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी धर्म पालन का अवसर मिलेगा तथा मानव जाति को और अधिक सहायता मिलेगी। ईश्वर करे धर्मों की संख्या यहां तक बढ़े कि प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए किसी के धर्म से अलग एक धर्म मिल जाए। भक्ति योग की यही कल्पना है।
1: प्रत्येक व्यक्ति का भक्ति मार्ग अलग अलग है, हालांकि सभी की मंजिल एक है, ईश्वर प्राप्ति है।
3: अंतिम भाव यही है कि मेरा धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता और ना तुम्हारा धर्म मेरा। यद्यपि ध्येय और उद्देश्य एक ही है, तथापि हरेक का मार्ग अपनी अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग है, और यद्यपि ये मार्ग भिन्न भिन्न हैं, तो ये सभी मार्ग ठीक ही होने चाहिए, क्योंकि वे सभी उसी स्थान को पहुंचाते हैं। उनमें से एक ही सत्य हो और बाकी सब गलत हो ये संभव नहीं। अपना मार्ग पसंद कर लेना ही भक्ति की भाषा में इष्ट कहलाता है।
0: कहते हैं शब्द ब्रह्म है। स्वामी जी हमें शब्दों की शक्ति समझाते हैं।
3: फिर है शब्द। आप सभी ने शब्दों की शक्ति के संबंध में सुना है, उनमें कैसी अद्भुत शक्ति होती है। धर्म ग्रंथ बाइबल, कुरान और वेद इन शब्दों की शक्ति से भरे पड़े हैं। कुछ शब्दों का मानव जाति पर अद्भुत प्रभाव होता है। फिर उपासना के दूसरे रूप भी हैं, जैसे प्रतीक। प्रतीकों का मनुष्य के मन पर बहुत असर पड़ता है। धर्म के बड़े बड़े प्रतीक ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं, वे विचारों को प्रकट करने के स्वाभाविक तरीके हैं। हम प्रतीकों द्वारा ही विचार करते हैं, हमारे शब्द उनके पीछे रहने वाले विचारों के प्रतीक मात्र हैं। भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न प्रतीकों का उपयोग बिना उसका कारण जाने ही करने लगे हैं। विचार या भाव भीतर रहते हैं और इन प्रतीकों का इन भावों और विचारों से संबंध रहता है। जिस तरह भीतरी भाव इन प्रतीकों को बाहर प्रकट करते हैं, उसी तरह ये प्रतीक भी भीतर उन विचारों या भाव को पैदा कर सकते हैं।
1: ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो ऊंची चीजें मांगो, तुच्छ भौतिक चीजों से क्या फायदा।
3: प्रत्येक धर्म में प्रार्थनाएं हैं, पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आरोग्य या धन के लिए प्रार्थना करना भक्ति नहीं है, वो सब कर्म है। किसी भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना करना निराकर्म है, जैसे स्वर्ग प्राप्ति अथवा अन्य किसी कार्य के लिए प्रार्थना करना। जो ईश्वर से प्रेम करना चाहता है, भक्त होना चाहता है, उसे ऐसी प्रार्थनाएं छोड़ देनी चाहिए। जो ज्योतिर्मय प्रदेश में प्रवेश चाहता है, उसे इस क्रय विक्रय इस दुकानदारी के धर्म की गठरी बांधकर अलग धर देनी होगी। तत्पश्चात उस प्रदेश के द्वार में प्रवेश करना होगा। ऐसी बात नहीं कि जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करोगे उसे नहीं पाओगे। तुम प्रत्येक वस्तु पा सकते हो, पर यह तो निम्न और गंवार का याचक का धर्म हुआ। वो सचमुच मूर्ख है जो गंगा के किनारे रहकर पानी के लिए कुआं खोदता है, जो हमारी हीरों की खान में आकर कांच के टुकड़ों की खोज करता है। वो मूर्ख नहीं तो और क्या है? कैसा आश्चर्य है, ईश्वर के पास मांगा भी तो आरोग्य, भोजन या कपड़े का टुकड़ा। जो ईश्वर हीरों की खदान है, उसके पास इन सांसारिक कांच के टुकड़ों की मांग। ये शरीर कभी ना कभी मरेगा ही, तब इसकी आरोग्यता के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करने से क्या लाभ? आरोग्य और धन में रखा ही क्या है? धनी से धनी मनुष्य भी अपने धन का थोड़े से ही अंश का उपभोग कर सकता है। हम संसार की सभी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम उन्हें प्राप्त ही नहीं कर सकते तो क्यों हमें उनकी चिंता में डूबे रहना चाहिए? जब ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा तब इन वस्तुओं की परवाह कैसी? यदि अच्छी चीजें आए तो भली बात है, जब वे आती हैं तो भी धन्य है, जब जाती हैं तो भी धन्य है।
0: भगवान दुकानदार नहीं है, वहां खरीद फरोख्त नहीं चलती, उन्होंने समझाया।
3: हम तो ईश्वर का साक्षात्कार करने जा रहे हैं, हम उन सम्राटों के सम्राट के समक्ष पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम वहां याचक के वेश में नहीं पहुंच सकते। यदि हम याचक के वेश में बादशाह के दरबार में प्रवेश करना चाहें तो क्या हम प्रवेश पा सकेंगे? कदापि नहीं, हम भगा दिए जाएंगे। हमारे ईश्वर सम्राटों के सम्राट हैं और हम उनके समक्ष याचक के चिथड़ों में प्रवेश नहीं कर सकते। और ना दुकानदारों का ही वहां प्रवेश है, वहां क्रय विक्रय से काम नहीं चलता। तुमने बाइबल में पढ़ा ही है, ईसा ने खरीदने और बेचने वालों को मंदिर से भगा दिया, फिर भी लोग प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मैं अपनी तुच्छ विनती तुझ तक भेजता हूं, मुझे इसके बदले एक नई पोशाक दे दे। हे ईश्वर मेरा सिर का दर्द मिटा दे, मैं कल 2 घंटे अधिक प्रार्थना करूंगा।
1: स्वर्ग क्या है, वहां हम क्यों जाना चाहते हैं? ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
3: अपनी मानसिक प्रवृत्ति को इससे कुछ ऊपर उठाओ। इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करने की अवस्था से अपने को परे समझो। यदि मनुष्य मानसिक शक्ति को ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करने में लगा दे तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या रहा? ऐसी समस्त इच्छाओं का, यहां तक कि स्वर्ग प्राप्ति की कामना का भी परित्याग करना भक्त का पहला कार्य है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यहां के ही इन स्थानों के समान है, शायद इनसे कुछ अधिक अच्छा होगा। यहां हमें कुछ दुख और कुछ सुख मिलता है, वहां स्वर्ग में शायद दुख कुछ कम मिले और सुख कुछ अधिक। पर यहां की अपेक्षा वहां हमें ज्ञान का प्रकाश कोई अधिक ना मिलेगा, वो तो केवल हमारे शुभ कार्यों के फलस्वरूप होगा। ईसाई लोग स्वर्ग को घनीभूत सुख भोग का स्थान मानते हैं। ऐसा स्वर्ग भला ईश्वर का स्थान कैसे ले सकता है? स्वर्ग प्राप्ति से हमें ईश्वर प्राप्ति का आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है?
0: हम जीवन भर अनावश्यक वस्तुओं को पाने की लालसा में दौड़ते रहते हैं, स्वामी जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया।
3: प्रश्न ये है कि इन सब कामनाओं का त्याग कैसे किया जाए? ये कामनाएं ही मनुष्य को दुखी बनाती हैं। मनुष्य इन कामनाओं से बंधे हुए गुलाम होते हैं, उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और खिलौनों की तरह इधर उधर पटक दिए जाते हैं। जिस शरीर को कोई भी वस्तु चूर्ण कर दे सकती है, उसी शरीर की चिंता लिए हुए हम सदा बैठे रहते हैं। इसी कारण हम निरंतर भय की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने पढ़ा है कि मृग को केवल अपने डर के कारण प्रतिदिन 60-70 मील की दौड़ लगानी पड़ती है। मीलों वो दौड़े ही जाता है और तत्पश्चात थोड़ा रुककर कुछ खाता है। परंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि हम मृग से भी गई बीती स्थिति में हैं। मृग को तो कुछ आराम मिलता भी है, पर हमें आराम कहां। यदि मृग को पर्याप्त तृण मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है, पर हम तो अपनी आवश्यकताएं सदा बढ़ाते ही रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की हमारी प्रवृत्ति बहुत दूषित है। हम ऐसे विक्षिप्त और अस्वाभाविक बन गए हैं कि हमें किसी भी स्वाभाविक वस्तु से संतोष नहीं मिलता। हम सदा दूषित चीजों के पीछे, अस्वाभाविक उत्तेजनाओं के पीछे दौड़ा करते हैं। हमें खान पान, आसपास की चीजें और जीवन भी अस्वाभाविक चाहिए। हम सांस लेने के लिए वायु को भी पहले जहरीली बना दिया करते हैं, और डर का तो कुछ पूछो ही नहीं। हमारा सारा जीवन ही डर के तानों बानों से बना है। मृग को तो केवल बाघ, भेड़िया इत्यादि का ही डर रहता है, पर मनुष्य को सारी सृष्टि से डर रहता है।
1: हमारे चाहते अनंत हैं, हमारी प्यास बुझती ही नहीं, मन को कैसे काबू में लाएं?
3: अब प्रश्न ये है कि इससे हम अपने को मुक्त कैसे रख सकते हैं। उपयोगितावादी खड़े होकर ललकारते हैं, ईश्वर और परलोक की बातें मत करो, हमें इनके विषय में कुछ मालूम नहीं, इस संसार में ही सुख की जिंदगी बिताना उचित है। यदि हम ऐसा कर सकती हैं तो मैं सबसे पहले यही करता, पर दुनिया हमें जब ऐसा करने दे तब ना। जब तुम प्रकृति के गुलाम हो तब ऐसा कर ही कैसे सकते हो। तुम जितना ही अधिक प्रयत्न करते हो उतना ही अधिक उलझते जाते हो। न मालूम कितने वर्षों से तुम कितने उपाय कर रहे हो, पर हम अंत में यही देखते हैं कि अवस्था उत्तरोत्तर बुरी होती जा रही है।
0: पुराने दिनों में हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी, ये उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम स्वर्ग जाना चाहते हैं।
3: 200 वर्ष पहले पुरानी दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थी, पर जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान अंक गणित के जोड़ के क्रम से बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं गुणन क्रम से बढ़ती गईं। हम सोचते हैं कि स्वर्ग जाने से हमारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी, और इसलिए हम स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। पर यह तृष्णा अनंत है, वो कभी बुझने वाली नहीं, सदा किसी न किसी वस्तु की कमी बनी ही रहती है। यदि मनुष्य याचक है तो धन चाहिए, यदि धनी हो गया तो उसे अन्य चीज चाहिए, समाज चाहिए, और उसके बाद भी कुछ और चाहिए। आराम या शांति कभी मिलती ही नहीं, तो इस तृष्णा को हम कैसे बुझा सकते हैं? यदि हम स्वर्ग को जाती हैं तो हमारी इच्छाओं की और भी वृद्धि होती है। यदि गरीब आदमी धनी हो जाता है तो उसकी वासना तृप्त नहीं होती। धन तो अग्नि में घृत छोड़ने के समान उसकी प्रदीप्त ज्वालाओं की वृद्धि करता है। स्वर्ग जाने का अर्थ है अत्यधिक धनवान होना, और तब तो वासना अधिकाधिक बढ़ती ही है। हम संसार के भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि स्वर्ग के देवता मनुष्यों की तरह कई प्रकार के द्वंद किया करते हैं, वे सर्वदा अच्छे ही रहते हैं ऐसा नहीं। आखिर ये स्वर्ग जाने की इच्छा भी तो सुख भोग की वासना ही है, इस इच्छा का परित्याग करना चाहिए। आप लोगों के लिए स्वर्ग जाने का विचार करना बहुत हीन और तुच्छ है। यह ठीक उसी विचार के सदृश है कि मैं करोड़पति होऊंगा और लोगों पर हुकूमत करूंगा। ऐसे स्वर्ग तो अनेक हैं, पर धर्म और प्रेम के द्वार में प्रवेश करने का अधिकार इन स्वर्गों के द्वारा

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 गीगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।
1: मैं हूं रंजीत सावरकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बता दे रहे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण दीप्ति के साथ। दिन के 12 बजे हैं। आइए आपको अवगत करा दें, दिन के 2 बजे तक

किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें आप आनंद लेते हैं संगीत का।

आज इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं गया प्रसाद प्रजापति और उनके साथी।

तीन सखियां बड़े प्रेम से पनघट पर आपस में बात कर रही हैं। बोली सखी बताओ आपके बे कैसे हैं? एक दूसरे को बता रही हैं कि मेरो ढोलक बजाए, दूसरी बोली

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं बुंदेली गायन। कलाकार हैं फूल सिंह मांडरे और उनके साथी।
2: बुंदेली संस्कार गीत तीज त्योहार पे गाए जाने वाले गीत तेज कर

कार्यक्रम भारत भारती में अभी आप आनंद ले रहे थे बुंदेली गायन का। कलाकार थे फूल सिंह मांडरे और उनके साथी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का समय है, आप नींद में हैं, कोई सुंदर सा सपना देख रहे हैं और अचानक कोई आए और धड़धड़ा कर आपको उठा दे। अजी उठा क्या दे, साथ में एक गिलास फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी आपके मुंह पर भी डाल दे तो कितना गुस्सा आएगा ना आपको। ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ हमारे नाटक के मुख्य पात्र उमेश के साथ भी, क्योंकि उनका बढ़ता वजन और उनकी बढ़ती खुराक के कारण उनकी सेहत उनके लिए मुसीबत बन गई थी। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, इस कश्मकश पर आधारित है हमारा हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत। आइए सुनते हैं।
2: अरे ओ कुंभकर्ण के मामा, पूरी दुनिया जाग गई है और तुम हो कि घर्राटे ही भरे जा रहे हो, जैसे कि सोने के लिए ही दुनिया में आए हो।
3: अच्छा, जैसे सुन ही नहीं रहे हो। मैं भी देखती हूँ आज कैसे नहीं उठते तुम।

0: तो किसी की नींद न खुले तो कटार भोंक दोगे उसे? भला ये भी कोई शराफत हुई?
1: शराफत शरीफों के साथ की जाती है। और सुनो ये मिस्टर, मैंने जल डाला है आपके ऊपर, कोई कटार वटार नहीं चलाई है।
0: जल? बर्फ की धार को तुम जल कहती हो? कल को उबलता पानी डाल दो मेरे ऊपर और कहो कि जल डाला है, उफनती नदी में ढकेल दो और कहो जल ही में तो ढकेला है, तेल में तल दो इंसान को और कहो कि ऑयल ही तो है। तुम्हारी परिभाषा चलने लगे ना कोर्टों में तो सबके सब हत्यारे साफ बच निकले। अरे छुरी से सब्जी भी कटती है और बकरी भी और इंसान भी, लेकिन क्या इनमें कोई फर्क नहीं दिखता तुम्हें?
1: ए मिस्टर, अपना ये लॉजिक अपने पास ही रखो, हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से साबित करने पर तुले रहते हो।
0: है?
1: और सुनो जल्दी।

कुमार स्वामी कामराज स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने अपने गृहनगर में कई जनसभाएं आयोजित की। वो गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। गांधी जी जब सन 1921 में मदुरई आए तब के कामराज उनसे पहली बार मिले। इस भेंट का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। के कामराज ने असहयोग आंदोलन में प्राणपण से भागीदारी की। नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1930 का नमक सत्याग्रह हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, स्वाधीनता समर में वो सघन रूप से सक्रिय रहे। विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के कारण वो 6 बार गिरफ्तार हुए और लगभग 3000 दिन जेल में बिताए। सन 1937 में प्रांतीय चुनावों में सीट जीतकर उन्होंने विधानसभा में प्रवेश किया। 1946 में वो चुनाव जीतकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे थे। इस तरह उनके जीवन का हर पल देश को ही समर्पित रहा। भारत की आजादी के बाद संसदीय चुनावों में वो लोकसभा सदस्य चुने गए। 12 अप्रैल सन 1954 को जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तब के कामराज ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। 13 अप्रैल सन 1954 से 2 अक्टूबर सन 1963 तक उन्होंने इस पद के दायित्व का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। दक्षिण भारत में के कामराज को शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उनके शासनकाल में तमिलनाडु में साक्षरता दर 7% से बढ़कर 37% तक पहुंच गई थी। उन्होंने हर गांव में प्राइमरी स्कूल और हर पंचायत में

तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? बिना काम किए हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। बच्चे का ये जवाब उनके भीतर कहीं धंस सा गया और उन्होंने तय कर लिया कि उनके राज्य में कोई भी बच्चा अपने भोजन की व्यवस्था करने के कारण स्कूल न जाए, ऐसा नहीं होगा। इस तरह मध्यान्ह भोजन योजना यानी मिड डे मील की उन्होंने शुरुआत की। चूंकि अभाव के कारण उनकी शिक्षा बाधित हुई थी, इसलिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना उनकी प्राथमिकता थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 12,000 से अधिक स्कूल बनवाए थे।

के कामराज उच्च आदर्शों को जीने वाले राजनेता थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति सवालों के घेरे में थी और उधर वित्त मंत्रालय ने जनता पर कर का बोझ बढ़ा दिया था। इस तरह सत्ताधारी दल की साख घट रही थी, जनता आक्रोशित थी। इन परिस्थितियों में उनका सुझाव था कि वरिष्ठ नेताओं को संगठन की मजबूती के लिए काम करना चाहिए, न कि सरकार में रहकर पदों का लाभ लेना चाहिए। उनकी पहल पर कामराज योजना लागू हुई। उन्होंने उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हुए पहले स्वयं इस्तीफा दिया। इस तरह कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने पद का लालच छोड़कर जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए काम किया। दरअसल के कामराज गांधीवादी मूल्यों के पक्षधर थे। सन 1964 से 1966 के बीच भारत के दो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही चल बसे थे। इतने कम समय के भीतर देश के दो बड़े नेताओं के विदा होने से स्वाभाविक रूप से देश में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया था। के कामराज का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद वो स्वयं प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सामने रखा। इसी तरह जब शास्त्री जी का असामयिक निधन हुआ तब भी उनके सामने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने का प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में स्त्री शक्ति को ये दायित्व सौंपा। ऐसे उच्च आदर्शों के थे के कामराज। देश का हित उनके लिए सर्वोपरि था। सामूहिक नेतृत्व में उनका अटल विश्वास था। वो विभिन्न मुद्दों पर विभेद का समाधान सर्वसम्मति निर्माण के द्वारा करने के पक्षधर थे। उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। समय आने पर उन्होंने पद और संगठन दोनों का त्याग किया, लेकिन अपने आदर्शों को जीवित रखा। के कामराज ने मद्रास में शिक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण काम किए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी, नेवेरी लिग्नाइट कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान फोटो फिल्म फैक्ट्री ऊटी जैसी अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में 13 सिंचाई बांध परियोजनाएं भी आरंभ हुईं, जिससे पेयजल संकट के साथ ही कृषि क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ। निरक्षरता उन्मूलन के लिए जहां एक ओर उन्होंने मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, प्राथमिक विद्यालय, अनिवार्य शिक्षा योजना की शुरुआत की, वहीं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संस्थान के लिए आवश्यक भूमि, भवन तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की। शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही उन्हें कल्वी थंथई यानी शिक्षा के जनक उपनाम से पुकारा गया। आज भी तमिलनाडु के स्कूलों में उनके जन्मदिन को एजुकेशन डेवलपमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। पल पल देश की सेवा करते हुए 2 अक्टूबर सन 1975 को उन्होंने अंतिम सांस ली। जब उनका निधन हुआ तो उनके पास 130 रुपये, 2 जोड़ी चप्पल, 4 कमीजें और कुछ किताबें ही कुल जमा पूंजी के तौर पर थीं। सन 1976 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम इतिहास के पन्नों को उलटते हुए अपने 17वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। हम थोड़ी सी आपको याद दिला दें कि पिछले एपिसोड में 16वें अंक में हमने बात की थी चंद्रपुर महाराष्ट्र में। हमने वहां के गोंड शासकों की बात की, तलवार सिंह की, हीर शाह की, और उसके बाद हमने बात की राजमाता हीरई के राजत्व काल की, कि कैसे हीर शाह की मृत्यु के उपरांत उनकी रानी हीरई ने राजकाज संभाला। आज हम जो बातें करने जा रहे हैं, हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा सक्सेना, जो कि पुरातत्वविद हैं, प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं, और अभी तक हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देती आई हैं गोंड शासकों के बारे में, गोंड शासन के बारे में। तो पूजा जी का हम स्वागत करते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो पूजा जी, आज हम किस गोंड राज्य की बात करेंगे?
2: पिछले अंक में हमने महाराष्ट्र के चंद्रपुर की बात की थी, तो वहीं से आरंभ कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: और एक नए गोंड राज्य की बात हम करेंगे
1: जी।
2: तो चंद्रपुर में एक ककट राय नाम का व्यक्ति था।
1: अच्छा।
2: उसका दूसरा नाम महाराज सिंह भी मिलता है, संभवतः बाद में उसने अपना नाम बदल लिया
1: जी।
2: तो ककट राय जब चंद्रपुर में रहता था, उस समय गढ़ा के जो गोंड राज्य थे जबलपुर वाले, उनके साथ में ककट राय का कोई संबंध रहा होगा
1: जी।
2: किसी युद्ध में इन्होंने कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी
1: जी।
2: तो ककट राय को गढ़ा के गोंड राज्य ने खुश होकर अपना कुछ भाग राज्य का वो दे दिया, और ये था मध्य प्रदेश में जो वर्तमान हरदा जिला है वो, और उसके आसपास का हिस्सा।
1: अच्छा।
2: तो एक नए गोंड राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम मकड़ाई मिलता है।
1: अच्छा।
2: तो एक नया गोंड राज्य बना, मकड़ाई का गोंड राज्य, जो कि हरदा और उसके आसपास फैला हुआ था। इसका जो विस्तार था
1: जी।
2: अगर हरदा और उसके आसपास के हम क्षेत्र देखें
1: जी।
2: तो ये उत्तर में एक हरदा से घोड़ा गांव नाम की एक जगह आती है
1: जी।
2: और यहाँ से दक्षिण की तरफ जाएं तो गोलखेड़ा नाम की एक जगह आती
1: अच्छा।
2: है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ था। इसी तरीके से पूर्व में एक माचक नदी है, और पश्चिम में छिपाबड़ चारुआ नाम के गाँव है, बड़े प्रसिद्ध गाँव है, और किसी समय में ये बड़े व्यापारिक मार्ग के बड़े महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक का इनका पूरा क्षेत्र फैला हुआ था
1: जी।
2: इसके साथ ही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, नर्मदा का हमने अभी दूसरा पार्ट पार कर लिया है। तो ये सतपुड़ा के घने जंगल हैं, और यहाँ पर माचक, सियानी, घोघई, सामहारी, ऐसी चार सहायक नदियां नर्मदा की बहती हैं
1: जी।
2: तो ये क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक दृष्टि से भी वन संपदा है, इतनी बड़ी बड़ी चार नदियां बह रही हैं, और वन क्षेत्र बहुत घना है, आज भी घना है
1: जी।
2: इसके साथ ही जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आपको यात्रा करनी है तो फिर आपको नर्मदा नदी जो क्रॉस करनी पड़ती थी वो हरदा, होशंगाबाद यहाँ से करते थे, हंडिया से। तो इसलिए यह व्यापारिक चुंगियां भी होती थी, उस कारण से भी यह क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण था। तो मकड़ाई का महत्व उस समय बहुत रहा होगा। तो यहाँ पर फिर जब गोंड राज्य की स्थापना हुई तो एक किला भी बना, और किले के अंदर बहुत सारे महल, मंदिर
1: जी,
2: और
1: जी।
2: दूसरे स्थान भी निर्मित हुए।
1: उनके बारे में तो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन फिर से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या इस क्षेत्र को भी इसलिए चुना गया, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि जहां जहां पर भी गोंड राज्य स्थापित हुए वहाँ खास तौर पर वन क्षेत्र और नदियाँ जरूर थी।
2: जी हाँ, जैसा हमारी पहले से चर्चा होती आ रही है कि गोंडों का वन क्षेत्र पर बहुत अच्छा अधिकार है, वे उसके बहुत अच्छे जानकार हमेशा से रहे हैं, और वे वन संपदा की सुरक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए इन क्षेत्रों में हमेशा से गोंड जनजाति का फैलाव तो था ही। और हमने जैसा पहले इतिहास में सुना था, जब हम गढ़ा के गोंड राज्य की बात कर रहे थे तो हमने वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। और हम सब जानते हैं कि जब मुगल सेना नायक आसफ खान ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया और नरई में रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच में युद्ध हुआ, तो रानी दुर्गावती वीरांगना हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि गढ़ा के गोंड राज्य के 10 किले गढ़ा को मुगल शासक अकबर को देने पड़े थे
1: जी।
2: और हमने चर्चा में ये भी लिया था कि अकबर इन सघन क्षेत्र में फैले हुए 10 गढ़ों पर अपना अधिकार बहुत अच्छा रख नहीं पा रहा था, वह संचालित नहीं कर पा रहा था, तो उसने वो 10 गढ़ जो हैं वापस कर दिए थे
1: जी।
2: और ये 10 गढ़ कौन थे, जो गढ़ा के गोंड राज्य के बारे में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मिलती है उसी समय की, वो है गणेश नृप वर्णन संग्रह श्लोका।
1: अच्छा।
2: तो इसका एक 27वां श्लोक है, संस्कृत में है ये, और इसमें हमें उन 10 गढ़ों के नाम मिलते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है कि करवाए चौकी गढ़ रायसेनम भोपाल भौरास गुनौर दारिम मरकाए काला पवनम सरा दिल्ली धनम चार पयेन निर्मयो भूत। अब इनमें इन 10 गढ़ों का नाम है।
1: अच्छा।
2: करवाई यानी कि कुरवाई जिसे आज कहते हैं, और चौकीगढ़ फेमस ही है, भोपाल के आसपास है, और रायसेन का किला भी भोपाल से नजदीक है, भोपाल तो भोपाल ही है, मध्य प्रदेश की आजकल राजधानी है, भौरास और गुन्नौर तो भोपाल के पास ही रायसेन जिला लगता है, वहां से गिन्नौरगढ़ का किला, आजकल ये गुन्नौर की जगह गिन्नौर कहलाता है, तो गिन्नौरगढ़ का किला है, दारी यानी दारी बारी का एक किला है, आजकल ये बारी कहलाता है।
1: अच्छा।
2: हाँ, और फिर ये जो मरकाई आ रहा है यही आजकल मकड़ाई कहलाता है।
1: ओ,
2: हाँ,
1: तो ये बात आज हम कर रहे हैं
2: जी। हाँ, और इसके बाद इसी श्लोक में अगला नाम है काला वनम। आजकल एक हरदा के पास एक जगह है कारू वन के नाम से।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो ये कारू वन आज बोला जाता है, पहले इसके कई नाम मिलते हैं, जो स्पष्ट नाम हमें समझ में आता है वो है काल उपवन।
1: जी,
2: तो
1: जी,
2: वो
1: जी।
2: काल उपवन कई बार अभ्रंश होते होते आजकल तो कारू वन ऐसा नाम आ गया है।
1: जी।
2: तो ये श्लोक बताता है कि ये 10 गढ़ दिए गए थे और यही 10 गढ़ वापस हुए थे।
1: अच्छा।
2: तो मकड़ाई भी उनमें से एक था, और वो फिर जो स्थानीय गोंड थे उनके पास पुनः वापस आ गया था। तो 1657 तक जो ये काला उपवन था
1: जी,
2: ये ही मकड़ाई के गोंड राज्य की प्रमुख राजधानी रहा
1: जी।
2: लेकिन 1657 में मकड़ाई के राजा हुए मकरंत शाह, और मकरंत शाह को ऐसा लगा कि काला उपवन से अधिक मकड़ाई का सामरिक महत्व है।
1: अच्छा।
2: ये प्राकृतिक रूप से अधिक सुरक्षित भी है, इसलिए उन्होंने 1657 ईस्वी में अपनी राजधानी काला उपवन से बदलकर मकड़ाई स्थानांतरित कर दी। तो तब से मकड़ाई जो है वो गोंड राज्य वंश की राजधानी रही।
1: आपने बताया कि मकड़ाई उस समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था, एक व्यापारिक स्थान था, जहाँ दक्षिण जाने के लिए व्यापारिक कर लगाए जाते थे, चुंगी लगती थी। तो क्या आगे क्या हुआ राजधानी बनने के बाद गोंड शासन का यहाँ पर क्या हुआ?
2: जी हाँ, जैसा आपने कहा कि ये एक व्यापारिक मार्ग था और महत्वपूर्ण भी रहा होगा, तो इसके कई प्रमाण भी मिलते हैं
1: जी।
2: अगर आप हरदा जिले में एक गांव है चारुवा गांव,
1: अच्छा,
2: वहां जाएं तो वहां पर दो बावड़ियां हैं, इसमें से एक बावड़ी में एक शिलालेख लगा हुआ है।
1: अच्छा।
2: और ये शिलालेख है 1670 ईस्वी का
1: जी।
2: और ये वो समय है जब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था
1: जी।
2: और इसी समय महाराष्ट्र की तरफ, मध्य भारत की तरफ एक नई शक्ति बड़ी जोर से उभर रही थी, वो थी मराठों की शक्ति। तो शिवाजी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, और दूसरी जो शक्ति इसके समकालीन आ रही थी वो थी पेशवा बाजीराव प्रथम। तो एक ओर से औरंगजेब जो है वो दक्कन पर अधिकार करने के लिए लालायित था। आपने तो इतिहास में पढ़ा भी होगा कि औरंगजेब की दक्कन नीति तो उसका नासूर बन गई थी, उसने दिल्ली छोड़कर अपना पूरा कंसंट्रेशन दक्कन पर लगा दिया था। उसका कारण ये था कि व्यापारिक मार्ग पर अधिकार करना था, सारा व्यापार जो है वो दक्कन से होता हुआ मसूलीपट्टनम जो जहाजी पत्तन था वहां से हुआ करता था, और मुगलों ने जो इतनी समृद्धि हम देखते हैं मुगलों के काल में, उसका भी एक बड़ा कारण था कि उन्होंने दक्कन पर अधिकार करके वहां की जो संपत्ति थी उसको दिल्ली स्थानांतरित किया था, दूसरा मसूलीपट्टनम पर अधिकार करके उससे होने वाले जो व्यापारिक लाभ थे वो भी दिल्ली की तरफ बहने लगे थे। तो एक और तो औरंगजेब इस व्यापारिक मार्ग पर अधिकार करना चाहता था, दूसरी ओर मराठा जो थे वे दिल्ली से मुगल शक्तियों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, तीसरा एक और शक्ति थी वो थी हैदराबाद का निजाम
1: जी, जी।
2: तो ये तीन शक्तियां उभर कर आ रही थी और तीनों के लिए ही ये व्यापारिक मार्ग महत्वपूर्ण था, तो तीनों की ही सेना इस व्यापारिक मार्ग पर आया जाया करती थी
1: जी, जी।
2: और उसका खामियाजा कह सकते हैं कि यहाँ पड़ने वाली जो चौकियाँ थीं, किले थे, गढ़ थे या छोटे छोटे राज्य और रियासतें थीं, उनको भुगतना पड़ता था। तो लगातार जो मकड़ाई राज्य था वो मराठों का साथ दे रहा था और जीतने पर फायदा भी था और हारने के कई खामियाजे भी थे
1: जी, जी।
2: तो सन 1723 में जब पेशवा बाजीराव प्रथम मालवा की विजय के लिए निकले तो वो मकड़ई भी रुके थे लगभग एक हफ्ता के लिए। हाँ, तो इस प्रकार के कई हमको ऐतिहासिक संदर्भ लगातार यहाँ से मिलते हैं।
1: हाँ बिल्कुल श्रोताओं, तो ये मध्य भारत का एक क्षेत्र इस बात से ही साबित हो जाता है कि बाजीराव प्रथम यहाँ आए थे और एक हफ्ते रुके थे, तो मतलब ये आवागमन के लिहाज से एक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था।
2: जी हाँ।
1: और जैसे कि आपने कहा कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी भाग को जोड़ने वाला ये रास्ता है और नर्मदा पार करने के बाद ही आप दक्कन यानी दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था ही ये सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से। गोंड राज्य की राजधानी बनाने से भी काफी फायदा हुआ होगा गोंडों को आर्थिक रूप से भी यहाँ पर आने से। तो
2: जी हाँ, मकड़ाई का महत्व बहुत बढ़ गया
1: जी।
2: हंडिया उनके पास ही था, हंडिया ही वह जगह है जहाँ से नदी को पार करके दक्षिणी मार्ग पर यात्रा आरंभ करते हैं, तो उसका निश्चित रूप से लाभ तो पहुंचा ही होगा। पर क्या होता है कि जो व्यापारिक मार्ग पर रहने वाले होते हैं उनको इतिहास में भी सक्रिय भाग लेना पड़ता है
1: जी,
2: हमेशा
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो जैसे कि सन 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ
1: जी,
2: जो कि भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था, तो जब मराठे दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे उस समय मकड़ाई ने भी मराठों का साथ दिया और उस समय मकड़ाई के राजा थे धार शाह।
1: अच्छा।
2: तो धार शाह की सेना मराठों के साथ दिल्ली तक गई थी
1: जी।
2: और हम सब जानते हैं कि पानीपत का परिणाम क्या हुआ और इससे मराठों की शक्ति सीमित हो गई
1: जी।
2: और दिल्ली का इतिहास या यूं कहें संपूर्ण भारत का इतिहास ही बदल गया और हमने फिर मुगलों के बाद औपनिवेशिक काल के 200 वर्ष सहे।
1: बिल्कुल,
2: तो ये एक लंबा इतिहास है।
1: तो आपने जो हमें ये जो सन बताई ईस्वी सन, इससे साफ ये मालूम जरूर चलता है पूजा जी कि यहाँ पर लंबे वक्त तक गोंड राज्य बना रहा, क्योंकि 1723 में बाजीराव प्रथम आए थे, फिर आपने बताया कि 1761 में पानीपत का जब युद्ध लड़ा गया तब भी मकड़ाई के लोग जो थे और जो राजा थे शासक थे उन्होंने मराठों की मदद की थी
2: जी। पर मकड़ाई के इतिहास में जब पानीपत से धारशाह की सेना लौटी उसके बाद एक स्थानीय युद्ध हुआ।
1: अच्छा।
2: और उसमें धारशाह की मृत्यु हो गई और उनका पुत्र उस समय बहुत छोटा था
1: जी।
2: तो जो उनकी रानी थी खांडा उन्होंने वो स्थानीय युद्ध लड़ा था। हाँ, हमने हमेशा देखा है कि जो गोंड रानियां हैं
1: जी, जी, जी।
2: वो भी बड़ा युद्ध में कौशल है, पारंगत है और बड़ी शक्ति से लड़ती है
1: जी।
2: और उस युद्ध के बाद फिर रानी खांडा ने ही मकड़ाई राज्य का राजकाज संभाला था।
1: अच्छा।
2: तो ये भी इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है मकड़ाई के अंतर्गत,
1: यहाँ पर भी स्त्री शक्ति ने लंबे वक्त राजकाज किया है।
2: और फिर आगे हम देखते हैं मकड़ाई के इतिहास में कि 1893 तक आते आते
1: जी
2: औपनिवेशिक साम्राज्य की काली छाया मकड़ाई पर भी पड़ गई।
1: तो पूजा जी, ये जब औपनिवेशिक काल आ गया यहाँ पर, अंग्रेज भारत आ गए, उनकी नीतियां हर ओर छा गईं, उसके बाद क्या हुआ यहाँ मकड़ाई और इस पूरे क्षेत्र का किस तरह विकास हुआ?
2: एक अच्छे राजा की पहचान ये होती है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो भी रहा है
1: जी।
2: या किसी और सत्ता का अधिकार बढ़ता जा रहा है
1: जी।
2: तब भी राजा तो अपनी प्रजा के बारे में सोचता ही है।
1: बिल्कुल।
2: तो मकड़ाई के राजा ने भी ऐसा ही किया। मकड़ाई के एक राजा हुए हैं राजा लच्छू शाह
1: जी,
2: और उन्होंने उस जमाने में
1: जी
2: 10,000 रुपए दान देकर व्यक्तिगत खजाने से।
1: अच्छा।
2: और एक कृषि महाविद्यालय बनवाया था।
1: वाह।
2: ये सन 1902 की बात है।
1: तो शिक्षा के लिए वो कितने गंभीर थे इसी बात से पता चलता है।
2: जी हाँ, केवल कृषि महाविद्यालय ही नहीं जी, बल्कि बहुत सारे विद्यालय उस समय के हमको दिखाई देते हैं। मकड़ाई के किले में ही एक बिल्डिंग है, उसका नाम है दीवान साहब का बंगला।
1: अच्छा।
2: आजकल एक लंबे समय तक वहाँ पर स्कूल चलता रहा। ये मकड़ाई राज्य द्वारा ही स्थापित किया गया प्राचीन स्कूल है।
1: अच्छा।
2: तो हम मकड़ाई के इतिहास में देखते हैं कि जो राजा थे मकड़ाई के छत्रसाल, उनकी मृत्यु हो गई
1: जी।
2: तो उनका जो भाई था द्रकपाल शाह, उसे राजा घोषित किया गया। लेकिन द्रकपाल शाह उस समय नाबालिग थे।
1: अच्छा।
2: तो असल में जो राज्य किया वो उनकी भाभी ने किया, यानी कि जो राजा छत्रसाल की रानी थी भूप कुंवर, उन्होंने संरक्षिका बनकर मकड़ाई राज्य का शासन संभाला।
1: तो फिर एक बार गोंड शासन की जो कमान थी वो एक महिला के हाथों में।
2: हाँ बिल्कुल। और रानी भूप कुंवर का जो शासन काल है उसे बड़े लोकहित कार्यों के लिए जाना जाता है
1: जी।
2: तो इस समय उन्होंने एक मकड़ई राज्य में काउंसिल बनवाई।
1: अच्छा।
2: काउंसिल के कई सदस्य थे और एक थंबू शाह करके एक विद्वान हुआ करते थे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। और बाद में द्रकपाल शाह जो है वो स्वयं उस काउंसिल के अध्यक्ष बने।
1: अच्छा।
2: तो जब द्रकपाल शाह काउंसिल के अध्यक्ष बने, क्योंकि वो खुद बहुत पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षित थे, तो वो शिक्षा का महत्व समझते थे और उन्होंने रियासत में 8 स्कूल बनवाए और उन्हें सफलतापूर्वक संचालित किया।
1: वाकई तो, मतलब ये बहुत आश्चर्य की भी बात है, सुखद आश्चर्य की बात है कहें तो, क्योंकि उस समय तो कई कई नगरों में भी इतने स्कूल नहीं होते थे, इतनी शालाएं नहीं होती थी, और मकड़ाई जैसी जगह पर उन्होंने 8 स्कूलों को संचालित किया।
2: तो हरदा का एक स्थान है सिराली
1: जी,
2: तो वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में और हिंदी माध्यम,
1: अच्छा,
2: दोनों माध्यमों में मिडिल स्कूल खोले।
1: अरे वाह।
2: इसके साथ ही मकड़ाई, पिपलिया, मिहिंद गांव, दीप गांव कला, जिनवानिया, बेड़िया कला, मर्दालपुर, इन सभी जगहों पर हिंदी के प्राइमरी स्कूल खोले।
1: अच्छा।
2: ये स्कूल आज तक हैं और कुछ में तो आज भी स्कूल संचालित हो रहे हैं और कुछ नए बनकर अब नए नाम से भी स्कूल संचालित हो रहे हैं।
1: तो अभी भी मतलब बहुत सारे उन गांव में वो स्कूल्स हैं उस जमाने वाले अभी भी हैं।
2: जी हाँ।
1: मकड़ाई के जो स्थापत्य कला थी, जो वहाँ की मॉन्यूमेंट्स थे, उनके बारे में कुछ नहीं बताया।
2: जैसा कि हमने पहले भी बात की कि सामरिक और प्राकृतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: तो आज भी अगर जाएंगे ना तो हरदा शहर से आप काफी दूर निकल जाएंगे, एकदम वीराने में, हालांकि सड़क बहुत अच्छी है वहां तक जाने के लिए, लेकिन एक पहाड़ी आएगी।
1: अच्छा।
2: और वो पहाड़ी चारों ओर से सघन वन से आज भी घिरी हुई है
1: जी।
2: और दो ओर से नदियां बहती हैं। तो ये स्थान चुना गया था उस समय, हमने पहले भी बात की
1: हमेशा
2: थी कि गोंड किला बनाने के लिए एक अलग ही उनकी नीतियां हैं।
1: बिल्कुल।
2: वे क्या क्या गुण देखते हैं किसी स्थान के चयन के लिए, तो सेम यहाँ पर भी है। उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी को देखा, उस पर तालाब भी है और ऐसी पहाड़ी है जो तीन ओर से एकदम खड़ी हुई है
1: जी।
2: और एक ओर से जिस ओर से रास्ता आता है वहां पर एक विशाल प्रवेश द्वार है। तो दो या तीन प्रवेश द्वार रहे होंगे लेकिन आज एक ही स्थित
1: अच्छा।
2: है। तो किला जो है वो वैसे ही ऊंची ऊंची दीवारों से घेर कर बनाया गया है और बड़ा ही सुदृढ़ दिखाई देता है। हालांकि सन 1985 में मकड़ाई किले में आग लग गई थी।
1: अच्छा।
2: इस कारण से बहुत सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, क्योंकि ज्यादातर जो भवन थे उनमें छत निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग किया गया था। तो जब आग लगी तो छतें नीचे गिर गईं, जलकर राख हो गया। तो अभी बहुत कम भवन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम किले में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें दो गुड़ी दिखती हैं।
1: हाँ।
2: गुड़ी क्या होती हैं? एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कक्ष होता है, उसकी गुंबजाकार या वॉल्ट के आकार की छत होती है। तो ज्यादातर उनमें एक शिवलिंग रखा होता है।
1: अच्छा।
2: वे किसी के मरणोपरांत स्मृति में बनाए जाते हैं। तो ऐसी दो गुड़ी अभी भी है किले में। इसके बाद हम और आगे चलेंगे तो हमको एक महल के भग्नावशेष दिखाई देते हैं।
1: अच्छा।
2: ये महल बड़ा ही खूबसूरत रहा होगा, पर अब बस इसके कुछ ही अवशेष बाकी हैं, क्योंकि जब आग लगी तो इसकी पूरी छतें जल गईं और उसके ताप से फिर जो ब्रिक की और चूने की जो दीवारें थी वो भी ढह गईं। तो अब बहुत ही कम हिस्सा बाकी है, लेकिन जो दीवारें आज भी शेष हैं आप उसके द्वारा जो महल की सुंदरता रही होगी उसका अनुमान लगा सकते हैं। दीवार पर बहुत सुंदर सुंदर ताक बने हैं, उन पर बहुत सुंदर चूने का काम है जिसे स्टको वर्क कहा जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दीवारों का कुछ हिस्सा अभी बाकी है, दरवाजों का, मेहराबों का भी कुछ हिस्सा अभी बाकी है। तो यहाँ पर देखने लायक एक महल है
1: जी।
2: और इसके साथ ही एक राम मंदिर है।
1: अच्छा,
2: ये भी उसी मकड़ाई राज्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो राम मंदिर है ये पूरी तरह से अभी सुरक्षित है। हाँ, और ये राम मंदिर जो है इसमें अंदर एक गर्भगृह है
1: जी
2: और सामने एक मंडप है।
1: अच्छा,
2: गर्भगृह में राम गमन की प्रतिमा रखी हुई है।
1: अच्छा,
2: जिसमें भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता तीनों वन में गमन कर रहे हैं
1: जी।
2: जब उन्हें वनवास प्राप्त हो गया है। तो अगर आप इस हरदा क्षेत्र में देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा ऐसे मंदिर मिलते हैं जिनमें राम वन गमन की प्रतिमाएं पूजित हैं। ये इस क्षेत्र की मुझे लगता है कि एक विशेषता है जो मैंने अपने कार्य की सर्वेक्षण के दौरान यहाँ पर देखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वन क्षेत्र हैं उनमें राम वन गमन की बहुत प्रतिमाएं होती भी हैं, ये भी एक कारण है
1: जी।
2: और जो गोंड राजवंश की एक आस्था श्री राम के प्रति रही होगी उसका भी ये परिचायक है। तो आज भी ये मंदिर जो है जीवंत है और यहाँ पर पूजा पाठ होते हैं। मंदिर बड़ा सुंदर है
1: जी।
2: इसमें मुख्य रूप से लकड़ी का उपयोग किया गया है निर्माण के लिए। तो मंदिर का जो मंडप है वो दो मंजिला है और लकड़ी के सुंदर सुंदर स्तंभ लगाए गए हैं। ऐसा भी लगता है कई बार देखने से कि कभी ये पेंटेड भी रहे होंगे, बहुत सुंदर चित्रकारी इन पर की गई होगी। वर्तमान में तो चित्रकारी दिखाई नहीं पड़ती पर कहीं कहीं ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इसकी जो छत है वो ढलवा है और क्योंकि ये औपनिवेशिक काल था, अंग्रेजों का भारत में आगमन हो चुका था, तो छत निर्माण के लिए टिन का उपयोग किया गया है।
1: अच्छा,
2: हाँ, और उसके ऊपर कभी एक टेराकोटा के खपरेल भी रहे होंगे, बाद में फिर वो कभी खपरेल तो हट गए हैं, अब टिन की छत बाकी
1: टीन
2: है,
1: की चादर
2: पर है। बड़ा सुंदर दिखता है ये मंदिर देखने में।
1: तो पूजा जी, एक उस क्षेत्र में, हरदा क्षेत्र में कहा जाता है कि जब ये मंदिर बना था, क्या ये बात सही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तब लाख रुपया खर्च किया गया था इस मंदिर के निर्माण में?
2: जी हाँ, गोंड राजा ने इसके निर्माण के लिए लाख रुपया खर्च किया। इस मंदिर के पास में ही बाहर दो छोटी छोटी तोपें रखी हुई हैं।
1: अच्छा,
2: इतनी छोटी तोपें कि उससे तो कोई घायल भी नहीं होगा,
1: मतलब प्रतीकात्मक कुछ है वो?
2: नहीं नहीं,
1: हाँ।
2: मंदिर के बाहर रखी ये तोपें किसी को मारने के लिए नहीं है
1: जी।
2: बल्कि ये तो उत्सवों के दौरान जब रंग उड़ाया जाता है, रंग गुलाल उड़ाया जाता है या फिर फूलों की वर्षा की जाती है, उसके लिए ये तोप रखी है। दो दो फिट की ये तोपे हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ, मजल लोडिंग तोपे हैं। आपको जानते ही होंगे जो तोपे होती हैं वो अष्ट धातु से बनाते हैं, जिससे कि जब गोला फटे तो तोप को नुकसान ना हो। तो इसमें पीछे की तरफ एक छेद है जिसमें कि आग लगाई जाती थी और जो तोप की नाल है उसमें बारूद भरते थे। तो क्योंकि ये छोटी सी तोप है, थोड़ा सा ही बारूद भरा जाएगा, तो जैसे ही बैंड से आग लगेगी तो बारूद फटेगा और उसके आगे यदि आपने रंग रखा हुआ है या गुलाल रखा है या फूल रखे हैं तो फिर वो भी दूर जाकर ऐसे
1: उड़ेंगे,
2: तो बड़ा खूबसूरत नजारा लगता होगा। राम मंदिर के पास में ही पहाड़ी के नीचे की तरफ एक महादेव का मंदिर भी है।
1: हाँ जी।
2: ये भी गोंड राज्य का ही एक महत्वपूर्ण अंग रहा और यहाँ पर तब से ही गोंड राजा जो थे वो फाल्गुन सुदी पूर्णिमा पर मेला लगवाया करते थे।
1: अच्छा।
2: और ये मेला इतने सालों तक आज भी बराबर लगता है
1: जी।
2: इसके अलावा दशहरा भी जो है वो मकड़ाई किले में बड़े जोर शोर से आज भी मनाया जाता है, पूरे एक मेला जैसा बन जाता है यहाँ पर
1: जी। तो देखिए, जो परंपराएं हमने, क्योंकि चंद्रपुर की भी हमने बात की थी, वहाँ की रानी ने भी जिस तरह से मेले को संचालित करना शुरू किया, तो आज भी वो मेला उसी तरह से बदस्तूर जारी है। और यहाँ भी मकड़ाई में भी, जो आज श्रोता हमने बात की मकड़ाई की, जो कि वर्तमान हरदा जिले में आता है, ये स्थान कभी गोंड शासकों की राजधानी रहा था। पूजा जी हमारे साथ हैं, हमें नित्य नई जानकारियां हर बार दे रही हैं। पूजा जी को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि अब समय सीमा आज के कार्यक्रम की समाप्त हो चुकी। तो पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और अगली बार श्रोताओं, इतिहास के पन्ने किस तरह पलटेंगे, कहाँ हमें ले जाएंगे, हमें और क्या क्या नई जानकारियां मिलेंगी, ये तो हमें अपने अगले अंक में ही मालूम होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। अब मुझे यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। इतिहास के पन्नों से।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे AI पर। टेक गुरु के संग में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने AI विषय पर पहले बात की थी, बात आज भी करेंगे AI पर, लेकिन आज जानेंगे AI से क्या कंप्यूटर का रिप्लेसमेंट कंप्यूटर ही है, या कंप्यूटर के बाद ये रिप्लेसमेंट मानव को भी करेगा, और ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस विषय की जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: अगर अपन फायदे की बात करें तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, मसलन धीरे धीरे अभी लोगों तक पहुंचेगी, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि कंप्यूटर आया था तो एक डर था कि कंप्यूटर आया तो अब तो ये तो सारे काम कर लेता है, टाइपराइटर हटा तो मशीनरी चेंज हुई, ये बात तो समझ में आती है, मतलब मशीन का रिप्लेसमेंट मशीन हुआ, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन एक तो मशीन से मानव का रिप्लेसमेंट होगा नहीं होगा, कितना होगा, इस पर आपने कहा भी था कि आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ भूलना पड़ेगा, ये निरंतर चलते रहने वाला क्रिया है, ये कहें तो उसी का हिस्सा कहीं ना कहीं AI है।
2: जी,
1: AI से अभी जो लोग हैं वो AI को केवल सुना सुना है, एक ChatGPT तक कुछ लोगों की पहुंच पहुंची है। जैसे एप्लीकेशन की बात करें, हर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी पहली एप्लीकेशन किसी क्लास में सीखता है, फोर्थ क्लास हो सकती है, फिफ्थ क्लास हो सकती है, पांचवीं, छठी, सातवीं, कोई भी हो सकती है। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रह गई है, अब वो ChatGPT में अगर तुरंत कोई एप्लीकेशन डालता तो उस एप्लीकेशन तुरंत मिल जाएगी, अदरवाइज उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए उसे क्लास में सिखाई जाती थी, वो उसको सीखता था, शायद संभवतः कई तो ऐसे भी होते थे कि उसमें वो इसी एप्लीकेशन में छोटे मोटे सुधार करके शायद 10वीं या 12वीं या आगे तक वो एप्लीकेशन चलती रहती थी। अब AI के पास ये जानकारी इस तरह की, वो 5वीं तक के बच्चे को अलग तरह की एप्लीकेशन समझाएगा और 10वीं या कॉलेज के लेवल को, क्या ये सही बात है?
2: देखिए, AI एक ऐसा मान लीजिए कि वो एक सर्व सुविधा युक्त जिन है, पॉपुलर कल्चर के एक उदाहरण में दे रहा हूँ। अब उससे आप वरदान में कंघा भी मांग सकते हैं और बाल भी मांग सकते हैं, जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा वो जवाब देगा। इंटरनेट के बारे में भी यही कहा जा सकता है, आप एंटरटेन भी हो सकते हैं और उसकी मदद से कुछ सीख सकते हैं। तो AI भी ऐसे ही है, अगर सही तरीके से प्रॉम्प्ट किया जाए तो यकीनन वो मतलब बहुत अच्छा टीचर बनाया जा सकता है, बशर्ते उसके ट्रेनिंग डेटा सेट, मतलब कौन से डेटा से ट्रेन किया हो इस बारे में हमको ट्रांसपेरेंसी हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ इसका ट्रेनिंग डेटा सेट कहीं बायस नहीं है। तो AI के हर आउटपुट पे और ट्रेनिंग डेटा सेट पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हो रहा है तो AI की मदद से फर्स्ट क्लास का लड़का, उसके लिए उसके हिसाब से, उसकी अपेक्षाओं के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से एक अलग कोर्स तैयार किया जा सकता है सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट के द्वारा, और 5वीं कक्षा के लिए अलग किया जा सकता है, 10वीं के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग। मैंने बताया ना, ये हर किसी को उपयोग करके देखना चाहिए ChatGPT की। इमेजिन यू आर अ टीचर, एक्सप्लेन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ले लीजिए, कोई भी जियोपॉलिटिकल विषय ले लीजिए, एनी टॉपिक टू मी लाइक आई एम अ क्लास 5th स्टूडेंट, और वो बड़े अच्छे से क्लास 5th के स्टूडेंट के लेवल के आधार पर। अब उसके डेटाबेस में, ट्रेनिंग डेटाबेस में क्लास 5th के बच्चे का लेवल क्या है वो डिपेंड करता है कि वो क्लास 5th के बच्चे को कैसे परसीव करेगा, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है।
1: आपने ChatGPT का नाम लिया, एक सामान्य आदमी के लिए अपन बात करते हैं, जो लोग इससे रूबरू हो गए हैं मान लेते हैं और जो नहीं हुए, एक ChatGPT एक ऐप है, इसको डाउनलोड करना है और फिर वो संभवतः टेक्स्ट को लेकर, ऑडियो को लेकर या वीडियो को लेकर अलग अलग जानकारी दे पा रहे हैं, ये मान लेते हैं अपन। इसके अतिरिक्त कोई और ऐप या कौन से?
2: बहुत सारी है। देखिए, ChatGPT तो सबसे ज्यादा फेमस हो गई, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जो कहते हैं अपन, 2022 के एंड में आया और बस वो पूरी दुनिया में छा गया। फिर ये इस साल की शुरुआत में वो गिबली आर्ट, इमेजेस से कार्टून बनाना, जितने लोग उस टाइम नहीं सीख पाए थे वो उन्होंने गिबली आर्ट के टाइम पे सीख लिया। लेकिन ऐसे कई टूल्स है, मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ और मेरी कोशिश रहती है साल भर में 50 किताब पढ़ पाऊं, लेकिन वो करना, 50 किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था। गूगल आपका जीमेल अकाउंट है, या अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल का भी ChatGPT के समतुल्य इक्विवेलेंट एक अपना मॉडल है जिसको बोलते हैं Gemini। तो अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो आप Gemini भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी ChatGPT से काम कर सकते हैं। Gemini में एक नैनो बनाना करके उसका एक इमेज जनरेशन मॉडल है, वो मतलब फ्लॉलेस है, जबरदस्त है। तो इमेज जनरेशन के लिए मैं Gemini का नैनो बनाना यूज करता हूँ। Gemini कोर मॉडल और ChatGPT दोनों मोरलेस वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिससे टेक्स्ट जनरेट किया जा सकता है। गूगल का एक बहुत उपयोगी फीचर जो है नोटबुक LM, देखिए मैंने बताया था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि इसका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है ये अपन को नहीं पता। नोटबुक LM बेसिकली एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो केवल उसी आधार पे जानकारी देता है जो आप उसे बताते हो। उदाहरण के लिए आपने एक पुस्तक किया, एक रिपोर्ट किया, एक कोर्ट के केस की समरी डाल दी। अब कोर्ट के जजमेंट जो रहते हैं वो आप और मैं शायद उतने आसानी से नहीं समझ पाए, तो आपने पीडीएफ दो तीन निकाली और वो पीडीएफ किसी भी तकनीकी विषय रिसर्च पेपर हो सकती है, कोर्ट के जजमेंट की हो सकती है, या एक सामान्य किताब का, मैंने शुरुआत किया था किताब का हो सकता है, और वो नोटबुक एलएम पे आप अपलोड करते हो, है ना, और या फिर आप एक ढाई घंटे का पॉडकास्ट है यूट्यूब पे, उसकी लिंक आपने अपलोड कर दी। नोटबुक एलएम सिर्फ केवल जो पीडीएफ आपने डाली है, जो लिंक आपने शेयर किया है, केवल उसी आधार पे उस कंटेंट की समरी जनरेट करता है। तो नोटबुक एलएम की मदद से जो साल की 50 किताबें मैं पढ़ पा रहा था, वो मैंने 250 तक खींच ली है। हर किताब डीप पे जाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक किताब की पीडीएफ अपलोड की, उससे पूछा क्या रिलेवेंट पार्ट है, अगर कुछ ऐसा लगता है तो वो किताब के डीप में जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत आसानी, बहुत सुविधा हो जाती है। आप कभी कोशिश करके देखिएगा, आपके यहाँ कोई बीमार है तो उसकी जो मेडिकल केस हिस्ट्री की रिपोर्ट होगी उसकी पीडीएफ बना के आप नोटबुक एलएम में अपलोड कीजिए। उस डेटाबेस के आधार पे आप उससे प्रश्न पूछ लीजिए, जितना सरल हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड हो, वो केवल अपलोडेड डेटा के हिसाब से जानकारी देगा। इसमें क्या रहता है कि वो जो बायसनेस वाला, गलत जानकारी वाले जो चीजें रहती है वो कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट आप ही प्रोवाइड कर रहे हो। तो नोटबुक एलएम इस मामले से बहुत बहुत बढ़िया टूल है। इसके अलावा जैसे जेमिनी और चैट जीपीटी, ये कई बार गलत जानकारी भी देते हैं
1: जी,
2: तो उन गलत जानकारियां जिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल में सबसे कम ऐसे मानी जाती हैं, वो है एंथ्रोपिक का परप्लेक्सिटी।
1: अच्छा,
2: तो परप्लेक्सिटी में किसी किसी विषय के बारे में आपको सर्च करना है तो आमतौर पे तो ये बिल्कुल सही देंगे, परप्लेक्सिटी हो गया या चैट जीपीटी हो गया या जेमिनी हो गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि परप्लेक्सिटी के रिजल्ट ज्यादा रेफरेंस रहते हैं। तो जब अपन किसी विषय की गहराई में जाएंगे तो वो जो रेफरेंसेज है वो काम आ जाते हैं। मतलब हो सकता है चैट जीपीटी और जेमिनी काफी एक स्टेज के बाद हेलुसिनेट करने लगे, डीप में जाते जाते उनको जानकारी नहीं और वो कॉन्फिडेंटली झूठ, हो सकता है, संभावना है कि वो दे रहे, लेकिन चूंकि ये रिलेवेंट रहता है तो एंथ्रोपिक का टेक्निकल शोध के विषय में काफी अच्छा माना जाता है परप्लेक्सिटी। इसके अलावा अगर क्रिएटिव राइटिंग है तो क्लॉड करके एक अलग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, अगर क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग इसकी बात करें तो उसके लिए वो सबसे अच्छा है। अगर आप ट्विटर में बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, नैरेटिव कैसे बढ़ रहे हैं, तो ग्रोक करके एक मॉडल है अपना, एक्स का है, एक्स के मतलब पुराना नाम जिसका ट्विटर था, एलन मस्क की कंपनी, उसके डेटा पे रिजल्ट देता है। तो ये सारे ट्रेनिंग डेटा से चूंकि पास्ट के किसी डेट पे है तो हो सकता है तत्कालिक कंटेम्प्रेरी जानकारी उतनी अच्छे से ना दे पाए, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड जानकारी चाहिए तो ग्रोक इज अ गुड एआई मॉडल।
1: जितनी बात अभी आपने और हमने करी उससे एक बात जो समझ में आ रही है मोटी मोटी, वो ये कि जब भी आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका प्रश्न क्या है उस,
2: जी
1: है ना, जैसा आपका प्रश्न होगा उसी तरह का उत्तर वहां से आएगा। दूसरा, जो जानकारी वो दे रहा है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर में कोई बीमार है और आप उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन या वो जो पर्चा होता है डॉक्टर ने, या कोई रिपोर्ट आप उस पर अपलोड कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से भी जो आप प्रश्न पूछेंगे वो आपको उत्तर दे देगा। मैं ठीक कह रहा
2: हूं? जी, इसमें केवियट है, मैंने कहा ना चैट जीपीटी से आप बीमारी का इलाज नहीं पूछ रहे हैं, उसमें संभावना है कि हो सकता है गलत दे, लेकिन जो नोटबुक एलएम है, जो एक टूल मैंने बताया था, वहां पे आप जो पीडीएफ अपलोड करोगे वो उन पीडीएफ से ही अपना जवाब देगा, वो इंटरनेट पे नहीं जाएगा सर्च करने, या वो अपने डेटाबेस से खुद का ज्ञान नहीं प्रस्तुत करेगा, वो उसी पीडीएफ के आधार पर जवाब देगा जो आपने अपलोड किया, तो इस आधार पर वो बता सकता है।
1: कहने का मतलब एक ही कम्युनिकेशन है जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, एक जो व्यक्ति इधर बैठा है जो प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा एआई टूल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा और फिर एआई ने जो उसका जवाब दिया, दोनों सूरत में महत्वता ये आ रही है कि प्रश्न आपका उतना सटीक हो जैसा आपका प्रश्न वैसा उत्तर वाली बात होगी, और दूसरी अति महत्वपूर्ण बात यह कि वो आपको जो भी उत्तर देता है आपको अपने विवेक के साथ उसको क्रॉस चेक भी करना है, जो का तो मतलब जैसे कि आपने कहा कि वो कोई आपको इलाज तो बता नहीं रहा बीमारी का, वो आपको आपकी रिपोर्ट का एनालाइज करके दे रहा है, क्या ठीक कह रहा हूं?
2: हाँ, नोटबुक एलएम से जो हम लोड कर रहे हैं वो हमारी रिपोर्ट को एनालाइज करके हमको दे रहा है, चैट जीपीटी से जो पूछ रहे हैं वो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट पे बेसिस पे जवाब दे रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग क्षमता है, तो जहां पे इंटरनेट से या उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में, वहां पे हम लोग ये देखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग डेटा सेट क्या था, कैसा था, उसमें बायस तो नहीं थे, या उसके आउटपुट को चेक करना पड़ता है कि ये कितने सही दे रहा है कितने गलत दे रहा है, इससे कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा। आपने केसेस सुने होंगे कि वहां पे लोग जो है उनको सुसाइड के लिए इनकरेज कर लिया, या किसी ने ऐसे लार्ज लैंग्वेज, चूंकि उनका ट्रेनिंग डेटा सेट तो वास्ट है, अब कोई इनसे उदाहरण के लिए ये भी पूछ सकता है कि बम कैसे बनाना चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ऐसे फिल्टर लगाने पड़ते हैं
1: सोशल, मतलब हर चीज का उपयोग गलत भी हो रहा है,
2: लार्ज लैंग्वेज मॉडल वाली कंपनियां ये बार बार ऐसे फिल्टर लगाती है ताकि उन मॉडल्स का गलत उपयोग ना हो सके। लेकिन इस चीज पे हमें भी एज अ यूजर और हमें भी एज अ गवर्नमेंट भी चेक करना पड़ेगा कि इनका ट्रेनिंग डेटा सेट और इनका अप्लाइड यूजर केसेस सिनेरियो ये सही दृष्टि से हो। लेकिन जहां पे ट्रेनिंग डेटा सेट सीमित है मतलब जैसे नोटबुक एलएम किया या आपने बोला कि भाई मेरे को लार्ज लैंग्वेज मॉडल चाहिए लेकिन मैं अपना डेटा किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो ऐसे ओपन सोर्स मॉडल है, फेसबुक का लामा एक ओपन सोर्स मॉडल है, आप डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए और इंटरनेट बंद करके लैपटॉप के ही लोकल डेटा पे आपने ट्रेन किया है तो उसमें डेटा बाहर का डेटा का सवाल ही नहीं उठता, जो आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देंगे वो उस पर अपना जवाब देगा। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पास एक अलग मॉडल है। होता यह है कि जैसे मैंने बोला, मैं बार बार क्लेरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमें केस नहीं पता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, तो हो सकता है कोई अपने मेडिकल रिपोर्ट चैट जीपीटी पे जाके अपलोड करे और अपने मेडिकल हिस्ट्री के आधार पे उपाय मांगे, वो गलत हो जाएगा। वो एक एग्जांपल था, वो सिर्फ नोटबुक एलएम के केस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आना जरूरी है।
1: मतलब अपन ने ये बात कही थी कि एक तो प्रश्न आपका क्या है, दूसरा फिर उत्तर वो आपको क्या दे रहा है, दोनों बातों में जो इंसान इस पे काम कर रहा है उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है
2: और एआई के बारे में जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा उद्देश्य रहता है, जो मैं अलग अलग जगह था वो यही बताता हूँ कि भाई ये टूल बहुत जबरदस्त है, इससे आप जो प्रश्न पूछोगे उसका जवाब मिलेगा, लेकिन हर टूल की एक सीमाएं रहती है, वो सीमाओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, वो लिमिटेशंस, वो चैलेंज, वो वर्स्ट केस सिनेरियो, सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम जिस उद्देश्य से यूज करना चाह रहे हैं ठीक उसी उद्देश्य से उसका उपयोग कर पाए, अन्यथा वो अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
1: एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अभी सबसे बड़ा वो कौन सा सेक्टर है जहां आईटी का यूज हो रहा है और अगले 5 या 10 साल में उसमें ज्यादा होने वाला है, क्या है?
2: ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब एआई के बारे में रिसर्च चालू हुई थी तो आपको पता है एआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को ऑब्सोलीट करना है, मतलब बिफोर द टेक्नोलॉजी बिकेम मेनस्ट्रीम 2022 के पहले।
1: से मतलब क्या है, ऑब्सोलीट या रिप्लेस करना है?
2: मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे हर किसी ने जब स्कूल में कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा तो बड़ा सिंपल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जब एक्सप्लेन करते हैं स्कूल में तो ये रहता है कि एक सीपीयू रहता है डब्बा, कुछ इनपुट डिवाइसेस रहते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं। इनपुट डिवाइस से एरो जाता था सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और वहां से वो एरो जाता था आउटपुट डिवाइसेस में। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस हो गए, आउटपुट में स्क्रीन और स्पीकर हो गए। तो ये बेसिक डायग्राम ऑलमोस्ट हर किसी ने जिसने आईटी या कंप्यूटर साइंस स्कूल में पढ़ा है सबको पता होगा। अब सीपीयू इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करता था, इसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती थी। आपको ध्यान होगा आज से 10, 20, 30 साल पहले इंडिया में जब कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन आया, हम लोग जब सॉफ्ट पावर बने, बीपीओ रिवॉल्यूशन आया, वो सब भारतीय प्रोग्रामर्स के दम पे हुआ। तो सीपीयू को इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए कंप्यूटर को सीपीयू को प्रोग्राम किया जाता था अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। आप ये मानिए सीपीयू में इनपुट प्लस प्रोग्राम यूज टू बी द आउटपुट, मतलब आपने इनपुट तो किया ही लेकिन उस इनपुट का करना क्या है ये भी कंप्यूटर को समझाया, तब जाके वो कंप्यूटर अपने लिए काम करने योग्य बन पाता था। मशीन लर्निंग क्या कर रहा है या एआई क्या कर रहा है, ये जो प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर था ये इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स को मैनुअली प्रोग्राम करने की बजाय क्या ऐसा संभव है कि हम उसे बहुत सारा डेटा दे दें, जैसे मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उदाहरण लिया, एक लाइब्रेरी भर के डेटा दे दें कि भाई ये आपकी लाइब्रेरी है, आप इसको समय लेके पढ़ो। पहले सुपरवाइज लर्निंग आया, वहाँ पे हमारा ह्यूमन सुपरविजन रहता था कैसे कैसे ट्रेन करना है, फिर अनसुपरवाइज लर्निंग आया, डीप लर्निंग आया, न्यूरल नेटवर्क आया, कुल मिला के हमने कंप्यूटर को दे दिया डेटा, ये डेटा है, यू टेक योर ओन टाइम, ये जो एनवी

0: था वो धीरे धीरे अब हट रही है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का ही है। आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि गूगल के हेड ने, सुंदर पिचाई ने कहा, कह चुका है, अमेजन के हेड ने कह चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड ने कह चुका है कि एटलीस्ट 50% जो कोडिंग थी वो अब एआई की मदद से ये सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर 50% कोडिंग का काम, और कोडिंग क्या होती है, ताकि कंप्यूटर को यूजेबल बनाया जा सके, जो इंडस्ट्री है, जो इफेक्ट होने वाली है वो यही है कि प्रोग्रामर्स का डोमेन था वो अब
1: हाँ
0: सीमित होता जाएगा। प्लस हम लोग कंप्यूटर्स को यूज करते थे, लेकिन कंप्यूटर्स में जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उन्हीं को यूज करते थे। हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन हमारे पास ये, अब आप मान लीजिए कोई ऑडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वीडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये फीचर मेरे काम का नहीं है, थोड़ा और बेहतर हो सकता है, आपके पास ये सुविधा नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल बैरियर था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और जो कमर्शियल प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर थे उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे उसकी कोडिंग, क्योंकि अपन को पता नहीं था। लेकिन कोडिंग हट जाने से हम लोग भी, अब जैसे आपको अपना वेब पेज बनाना है, आप चैट जीपीटी पे जाके बोलिए मेरे को अपना, ये मेरा रिज्यूमे है पीडीएफ में, मैंने अटैच कर दिया, आप एक वेब पेज की स्क्रिप्ट बना के दे दो, चैट जीपीटी आपको 10 सेकंड में एक बढ़िया वेब पेज की स्क्रिप्ट दे देगा। आप इंग्लिश में बोलते जा रहे हो कि भाई मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, और वो आपकी इंग्लिश को समझ के उस वेब पेज की स्क्रिप्ट में चेंज कर रहा है। तो एक तरह से तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का काम ऑटोमेट हो रहा है, दूसरी तरह आपके पास ये सुविधा हो गई कि आपको अब प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर्स को अपने हिसाब से यूज करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबसे पावरफुल है। जब जब कंप्यूटर्स पहली बार आए थे 1970 के दशक में, तब कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए भी एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए रहता था। मेरे ख्याल से 1995 में जब विंडोज 95 आया, तब जाके वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का दौर आया, जब अपन माउस या कीबोर्ड से क्लिक कर सकते थे। उससे पहले आपको याद होगा एमएस डॉस रहता था, टाइप करके अपन प्रॉम्प्ट करके खोलते थे, तो उसमें भी टेक्निकल बैरियर था। 95 के बाद सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गए, 2010 के बाद आईफोन के बाद सारे टच स्क्रीन फोन आ गए। आज एक बच्चा भी 2.5 साल का है, उसको भी यूट्यूब खोल के अपना वो लाल टमाटर वाला गाना खुलना आता है, इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस हो गया। तो एंट्री बैरियर है वो चेंज होता गया। एआई जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का एंट्री बैरियर भी खत्म कर देगा। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड वेब पेज, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस ट्वीक कर पाएंगे। मुझे लगता है ये सबसे प्रोमिनेंट यूज है, और इसी यूज के कारण ही ये पूरी फील्ड आगे हुई थी। ये जो बाकी यूज हम देखते हैं, गिबली आर्ट, इमेज जनरेशन, ये तो साइड वाले टेकअवेज हैं। जो मेन यूज है, जो मोस्ट इम्पैक्टफुल डोमेन है, वो यही है।
1: आपने कहा कि जैसे कोडिंग वर्कर, तो क्या कोडिंग में जो जनरेशन काम कर रही है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आप खुद इंजीनियर हैं, पढ़ा भी रहे हैं अब तो एक बड़े हिंदुस्तान के इतने बड़े संस्थान में, तो क्या इंजीनियर्स का, कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में?
0: बिल्कुल, कोडिंग करने वाले इंजीनियर्स का भविष्य खतरे में है, क्योंकि मैंने बताया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज 50% ऑफ द कोड एआई से बना रही हैं। तो या तो आपको अपना स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो आपको अपने कोडिंग स्किल्स को एआई को ही बेहतर बनाने पे, या एआई के नए नए फील्ड्स में उपयोग खोजने में लगाने पड़ेंगे, और या आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 50% कोड हो रहा था, अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो 50%, मैंने बोला ना रिपीटेड टास्क, ये बिल्कुल वही उदाहरण हो गया कि मैं अभी भी डिजिटाइज कर रहा हूँ, है ना, नक्शों को लैंड यूज कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि एआई ये काम करके दे रहा है, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि नहीं, ऐसे कुछ लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स होंगे जो चाहेंगे कि नहीं कंप्यूटर से नहीं, मेरे से ही वो रोड का डिजिटाइजेशन करवाएं। तो ये सोचना बड़े बेमानी होगा कि हम जो 50% ऑटोमेटेड कोड हो रहा है जनरेशन, उसी के दर पे रह सकते हैं। तो हाँ, उन इंजीनियर्स वो अपने स्किल्स को ज़्यादा बेहतर उपयोग में लगा सकते हैं अगर वो चाहे तो।
1: तो आईटी या सीएस में ब्रांच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं,
0: हाँ,
1: ये चुनौती उन्हीं के लिए है?
0: बिल्कुल है।
1: या बाकियों के लिए?
0: बाकियों के लिए भी है, बाकियों के लिए भी है। कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहने वाला। हाँ, कंप्यूटर साइंस और आईटी के बच्चों को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं और आप हो गए, हम, चलिए मैंने तो मेरी एक करियर ऐसी ट्रैजेक्टरी में गया, ईश्वर का आशीर्वाद था कि मुझे टेक्नोलॉजी सही समय पे इनके बारे में पता चलता गया, और मेरे को एक पीयर ग्रुप मिला जिससे मैंने थोड़ा बहुत सीख भी लिया। लेकिन आईटी और कंप्यूटर, आईटी तो खैर ऑब्सोलीट हो गई, अब आईटी की उतनी ब्रांच नहीं, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों को ये समझना चाहिए कि वही, उन्हीं के फील्ड से ये सारे परिवर्तन आ रहे, तो उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मतलब उनको दूसरों के लिए तो एआई के उपयोग को सुगम बनाना ही है, और अगर वो ऐसा कर लेते दे मेक अ वेरी गुड करियर आउट ऑफ इट, लेकिन खुद को बचाने के लिए भी, ताकि वो लेवल से बाकी लोग से आगे रह सके, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बेहतरी से लेवरेज कर सके, इस चीज को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशन उनसे ज्यादा बेहतर अच्छे से तरीके से कोई नहीं समझ सकता है। हम लोग तो बाहर ही है, मैंने बताया ना मैं भी आर्किटेक्चर प्लानिंग से गया हूँ, वही लोग के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, तो वो अगर इस चीज को समझेंगे दे विल बी अहेड ऑफ द कर्व।
1: हाल ही में देश की इतनी बड़ी संस्थान टीसीएस ने तकरीबन 10 या 12 हजार
0: जी
1: काम करने वाले को हटाया है
0: जी,
1: क्या ये इसी का सर?
0: हो सकता है, देखिए ग्लोबल कंपनीज में बिजनेस रिक्वायरमेंट की भी आवश्यकता रहती है, जैसे अब TCS कहीं बाहर के प्रोजेक्ट ले रही है, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट ले रही है अगर उस कंपनी के पास खुद ये कैपेबिलिटी आ गई है कि वो 50% ऑफ द कोड खुद जनरेट कर सकते हैं, तो वो अपना मैन पावर या वो अपना बिजनेस कम करेंगे, इसके कारण ले ऑफ हो सकता है। पहले वाले टेक्नोलॉजिकल वेव्स में जो ले ऑफ हुए थे वो निचले स्तर के होते थे, AI के बाद निचला और ऊपर वाला कोई स्तर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि नहीं मेरा जॉब तो सेफ है मैं तो सबसे ऊपर बैठा हूँ। देखिए जेसन हुआंग करके एनवीडिया के फाउंडर हैं, एनवीडिया मतलब जो GPU बनाती है, GPU बोले तो कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का दिमाग, बिना GPU के AI रेवोल्यूशन संभव नहीं हो सकता, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। उनका बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं AI आपको जॉब से रिप्लेस नहीं करेगा, समबडी यूजिंग AI वुड रिप्लेस यू फ्रॉम योर जॉब, मेरे से बेहतर मैं एक प्राध्यापक हूँ, मेरे को रिप्लेस वो करेगा जो AI को बेहतर तरीके से यूज करेगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो आपको वो दूसरा व्यक्ति रिप्लेस कर सकता है जिसको 5 AI टूल्स के बारे में पता है, तो वो आपका काम बहुत कम समय में कर सकता है। तो AI रिप्लेस नहीं करने वाला कोई भी जॉब, और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री हर सेक्टर में ये जॉब रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन जो रिप्लेस कर रहा है वो कोई व्यक्ति ही होगा जो AI को बेहतर तरीके से यूज कर पा रहा है।
1: ठीक है, जब आपने कहा कि बेहतर तरीके से यूज कर पाए तो एक बात और बताइए कि लोग AI को सीखे कहाँ से।
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चीज में और AI के बारे में बताना चाहूंगा कि आपने कभी सोचा होगा कि यार इलॉन मस्क बोलता है कि AI वुड बी द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग विच विल हैपन टू द ह्यूमैनिटी, तो उसका जो AI के प्रति दृष्टिकोण रहता है वो थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, वो डरता भी है, वो बोलता है संभल के रहने की भी जरूरत है और फायदे भी देखता है। गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है वो AI के अच्छी चीजें बताते हैं, जैसे सुंदर पिचाई कहते हैं कि जिस प्रकार आग ने, चक्के ने और बिजली ने या इंटरनेट ने हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया, AI उससे 1000 गुना ज्यादा तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, तो सिर्फ एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस विषय के विशेषज्ञ लोगों में भी मतानुभेद है कि भाई कोई इसको नेगेटिव देख रहा है, कोई डर रहा है, कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छी चीज है, कोई बैलेंस व्यू देने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका एडवांसमेंट, जिसका प्रोग्रेशन कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। एंटिसिपेट नहीं कर सकता मतलब 2022 में ChatGPT का पहला वर्जन आया 2.5, उसके एक साल बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया, उसके 6 महीने बाद उसका अपडेटेड वर्जन आया। तो कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, चूंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव ही मशीन्स की वर्किंग को एफिशिएंट बनाना है, और मशीन्स एफिशिएंट होके कैसे विकसित होंगी इस पे चेक हम लोग बीच बीच में उसके आउटपुट को टेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे हाँ अगले 6 महीने में ये चेंज होगा। इससे पहले वाले जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आए उस टाइम पे लोगों का परसेप्शन एक रहता था कि हाँ ठीक है अगला जो चेंज आएगा, अगला पड़ाव आएगा, अगला ब्रेक थ्रू आएगा, उसमें लेट्स से 1 साल लगेगा या 1 महीना लगेगा। लेकिन यहाँ पे तकनीक इतने तेजी से इवॉल्व हो रही है, ब्रेक थ्रू कल भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, हो सकता है नहीं आए। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है टुवर्ड्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, फेसबुक में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आमने सामने बिठा दिया और बोला कि आप दोनों आपस में बात करके सीखो, मतलब जो ऑटोनोमस बॉट रहते हैं जिनसे बात करते हैं। चालू हुआ और उसका वीडियो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, दोनों ने बात करनी चालू की और मेरे ख्याल से थोड़ी देर बात की और फिर परिचय तो हो ही गया था कि बोला मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये अंग्रेजी तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है विच मे नॉट बी दैट एफिशिएंट, सो वाई आर वी वेस्टिंग आर टाइम, वाई नॉट हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने जो मोर एफिशिएंट मोड ऑफ टॉकिंग है उस पर शिफ्ट जाए, और फिर वो अपने बीप और फ्रीक्वेंसीज में बात करने लगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया, ये वीडियो है आप देखिएगा। तो आप देखिए मशीन्स ने हमारी भाषा में बात करना चालू की और कुछ समय के बाद उनको मशीन्स को लगने लगा कि भाई ये तो बड़ा इनएफिशिएंट मोड है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या बीप्स में बात कर लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। इस प्रकार के जो चीजें हैं ये इसकी ग्रोथ को अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, और इसलिए सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंटली AI की ही मदद से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चेक रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं बच्चे लोग से बहुत बात करता हूँ असाइनमेंट में, जैसे उनको रिपोर्ट दी जाती थी पहले, रिपोर्ट बनाना जब मैं पढ़ रहा था, रिपोर्ट बनाना वॉज एक्चुअली अ वेरी स्किलफुल एक्सरसाइज। हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, तब तो इंटरनेट भी उतना नहीं था, लाइब्रेरी में जाते थे, 4 पुस्तक पढ़ते थे, फिर उसको लिखते थे, फिर उसको समराइज करते थे, फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद गूगल रिजल्ट और ये सब यूज करने से थोड़ा लाइब्रेरी जाने की जो पीड़ा थी वो कम हो गई। आज आपको ChatGPT पे मैं तो कहता हूँ कि आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं, आपको जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसकी एक फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए बिना कुछ कहे, वो इमेज से रीड करके आपको बढ़िया एक रिपोर्ट बना के दे देगा। तो मैं बच्चों का जब असाइनमेंट चेक करता हूँ तो अक्सर उनसे पूछता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी दिख रही है। अब व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसके स्तर का काम नहीं है, तो उसको बुला के पूछता हूँ भाई कैसे, तो मुझे बताता है सर ये टूल आया है, ये प्रेजेंटेशन अपने आप बता देता है, ये रिपोर्ट है ये बहुत अच्छा बना देता है। तो कहने का मतलब यह है कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज. अगर मैं बोल दूं कि नहीं बच्चे लोग से मैं क्यों बात करूं, बच्चे लोग नेचुरली उनको कम समय में ज्यादा काम करना है तो वो इस इन टूल से अवेयर रहते हैं. तो मेरे प्राइमरी सोर्स वो है, एक बार उनसे टूल पूछ लिया फिर चैट जीपीटी की मदद से उस टूल के बारे में और जानकारी लेके सीख लिया. लेकिन इस विषय में अपडेटेड रहने के लिए हमें इन्हीं टूल्स का मदद करके आगे ले जाना पड़ेगा. आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके आजू बाजू जो बहुत ज़्यादा इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, आपके विषय के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, उससे बातचीत की जाए, संवाद किया जाए, उसके पॉडकास्ट देखें. लेकिन मोर और लेस मैंने कहा ना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न. ये जो अनलर्निंग और रीलर्निंग करनी है इसके लिए भी हमको इसी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा.
1: काफ़ी वृहद विषय है. हमने सोचा था ये शुरू तो दो अक्षरों से हो रहा था, मतलब अंग्रेजी की वर्णमाला से AI केवल निकल के आया था लेकिन ये चलता जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा इस पर और भी आगे बात करें.
0: जी जी.
1: लेकिन फिर भी हम मुझे लगता है कि जब हम हमारे श्रोता इसे सुनेंगे तो आज तक जो उनकी सीमित ज्ञान था AI को लेके, संभवतः उसमें वृद्धि जरूर होगी. आपने इसको काफ़ी बेहतर तरीके से, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं और देश के इतने बड़े संस्थान में पढ़ाते हैं, आप स्वयं भी वहाँ से पढ़े हैं, और आपकी बातचीत में वो काफ़ी बेहतर तरीके से निकल के आ रहा था. चलते चलते एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी हमने इसकी बेहतरी अच्छाइयों में बात करी, क्या इसकी कोई खामियां ड्रॉबैक्स भी हैं जिस पर आप रोशनी डालना चाहते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल. देखिए इसकी ड्रॉबैक पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जो हॉलीवुड की तस्वीरों में देखते हैं कि टर्मिनेटर में जैसे मशीनें बंदूक लेके लड़ने आ जाएंगी, AI के दुष्परिणाम ऐसे नहीं होंगे. हो सकता है वो आज से ये भी संभव हो कि मशीनों के पास संज्ञान आ जाए, वो लड़ने आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल 100-200 साल में तो ऐसा नहीं हो रहा. जो इसकी चैलेंजेस हैं, जो इसकी चुनौतियां हैं, वो ज़्यादा वास्तविक हैं. सबसे पहली चुनौती तो ये है कि चूंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्विंग है तो इसकी जो लिमिटेशंस है, जो चुनौतियां हैं, वो भी इवॉल्विंग उसी दर से हो रही है. जैसे मैंने बताया चैट GPT भी यूज़ करते हैं तो उसका ट्रेनिंग डेटा सेट क्या है, या उसमें कैसे बायसेज है, या उसके जो आउटपुट है वो सेफ है कि नहीं, सही है कि नहीं. चैट GPT नाम ले रहा हूँ एक ब्रांड का क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन जितने भी AI मॉडल्स हैं इंक्लूडिंग नोटबुक LLM, आप अपनी PDF अपलोड कर रहे हैं लेकिन अगर आपको PDF के बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है वो अपने एंड पे जानकारी गलत देते, तो ऐसा संभव है. सबसे पहले तो यह है कि जो मॉडल काम कर रहा है उसकी सीमाएं और उनकी क्षमताओं की लिमिटेशंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए. एनीथिंग जनरेटेड बाई AI इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट. वो हमेशा सही बोले ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. तो इंडिविजुअल तकनीक के टूल्स की सीमाएं क्षमताएं, जैसे आप बोलते हैं कि भाई फिल्टर वाली फोटो है तो स्वाभाविक है आपको पता है फिल्टर वाली फोटो है, तो इस चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा कि जो जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं वो हो सकता है थोड़ा अलग दिखे. या आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है तो आने वाले समय में तो अब इतने रियलिस्टिक वो हो सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति है भी कि उसकी एक कैरिकेचर है, मतलब आपको लग रहा है कैमरे के सामने व्यक्ति बैठा है लेकिन वो नहीं है,
1: वास्तविकता
0: नहीं. तो ये सारे केवीएट अपन को ध्यान देने पड़ेंगे. इसके अलावा AI की मदद से, ये तो हो गया इंडिविजुअल यूज के सिनेरियो, गवर्नेंस या लॉ एंड ऑर्डर या सोसाइटल लेवल पे जो इसके दुष्परिणाम है उनके प्रति भी हमें सचेत रहना पड़ेगा. फेक न्यूज जो बोलते हैं, आज सोशल मीडिया न्यूज़ का एक बड़ा प्रामाणिक माध्यम माना जाता है. जैसे फेक न्यूज़ आपको बनानी है तो पहले आप हर किसी व्यक्ति को, एक आदमी 5 अकाउंट को या 10 या 25 या 50 अकाउंट को वो कंट्रोल करता था. आज की डेट में सिंगल प्रॉम्प्ट से आप मेरे ख्याल से एक फेक न्यूज़ के 1000 पॉइंट ऑफ ओरिजिन बना सकते हैं. तो फेक न्यूज़ का दुष्परिणाम, ये AI का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है सोसाइटल लेवल पे. मैं अक्सर अपनी क्लास में एक उदाहरण देता हूँ. फर्ज़ करिए मैं अभी आपसे बात करके यहाँ से घर जाऊँगा और शाम तक आपके WhatsApp के इनबॉक्स में एक वीडियो क्लिप आती है जिसको कहते हैं ना, जो अनएथिकल या न्यूडिटी बढ़ाने वाली, और आप देखते हैं उस वीडियो क्लिप में कि जो व्यक्ति है वो मेरे जैसा दिख रहा है, उसकी आवाज़ मेरे जैसी है. और मैं आपके पास फ़ोन करके बोलता हूँ या मैं आपके पास आता हूँ कि भाई ये व्यक्ति मैं नहीं हूँ, तो क्या अपना लीगल सिस्टम, और ये संभव है किसी के लिए भी, ये मैं अपना उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं सामने वाले का नहीं दे सकता, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि किशोर कुमार अरिजीत सिंह के गाने गा रहा है उसकी आवाज में. किशोर कुमार 90 में नहीं रहे, अरिजीत सिंह अभी आए हैं, लेकिन बहुत रियलिस्टिकली उसकी आवाज लग रही है. तो ये जो डीप फेक वाली बात है, ये एक बहुत प्रेसिंग इश्यू है जो AI के साथ आने वाला है. आज की डेट में इतने टूल्स ऐसे आ गए हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, जो अपना साइबर स्कैमिंग होती है, डिजिटल अरेस्ट उसमें, या आपके पास फोन आया, हाँ साइबर अरेस्ट, आपके पास फोन आया बोला आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और अगली आवाज ने जो आपने सुनी वो बिल्कुल रियलिस्टिकली अपने बच्चे, ये वाली सारी चीजें भी AI के दुष्परिणाम. तो ये चैलेंजेस हैं जिनके हिसाब से आज के गवर्नेंस सेटअप को, सोसाइटी को, लॉ एंड ऑर्डर को इक्विप रहना पड़ेगा. तो ये सारे केवियट्स हैं. बदलती टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है तो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उसके यूज को रेगुलेट करना, वो अपने आप में चुनौती है. और इंडिविजुअली उस टेक्नोलॉजी से हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं या हमारा करियर कैसे प्रभावित हो रहा है, भाई हम अगर नहीं सीख पाएंगे, कोई दूसरा इस टेक्नोलॉजी को सीख के हमसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। ये सारी चुनौतियों के प्रति सचेत रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना, तभी हम इसका समुचित उपयोग कर पाएंगे।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया, हमें हमारा प्रयास था कि ये हमारे सुनने वालों तक ये पहुँचे, और संभवतः ज़रूर ज़रूर ये काफ़ी बेहतर आप तक इसकी जानकारी पहुंची होगी। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि एआई जिस तेज़ी से लोगों के बीच में दस्तक दे चुका है, हम इस पे समय समय पर आप तक जानकारी को और अपडेट करते रहें। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु, जिसमें आज हमने बात की एआई पर। आज का जो कार्यक्रम था इसमें मोटा मोटा हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास करा। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया, इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति, और सुनते रहिए आपका अपना FM 90.8 MHz रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम भारत विभूति में आपका स्वागत है। भारत की महान परंपरा केवल राजाओं, योद्धाओं और संतों की परंपरा नहीं है, ये उन शिक्षकों, विचारकों और ज्ञान पुरुषों की भी परंपरा है जिन्होंने राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी, गणित के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का भी काम किया। आज की हमारी विभूति है सर आशुतोष मुखर्जी।
3: जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था तब बहुत से भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता था कि ज्ञान, विज्ञान और शोध केवल पश्चिम की देन है। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय बुद्धिमत्ता किसी से कम नहीं है। वह व्यक्ति था आशुतोष मुखर्जी, एक गणितज्ञ, एक न्यायविद, एक शिक्षाविद और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता।
2: 29 जून 1864 कलकत्ता का भवानीपुर क्षेत्र एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे डॉक्टर गंगा प्रसाद मुखर्जी, वो अपने समय के जाने माने चिकित्सकों में गिने जाते थे। माता जगत तारिणी देवी संस्कार, धर्म और भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतीक थीं। घर में विद्या, संस्कृति और अनुशासन का वातावरण था और यहीं से प्रारंभ हुई उस बालक की यात्रा जो आगे चलकर भारतीय शिक्षा जगत का एक युग पुरुष बनने वाला था।
3: बचपन से ही आशुतोष असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि वे किसी भी विषय को केवल पढ़ते नहीं थे, उसे समझते थे। और केवल समझते ही नहीं थे, उसके भीतर छिपे तर्क को खोजने का प्रयास करते थे। शायद यही कारण था कि गणित उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता था। संख्याएं उनके लिए केवल गणना का साधन नहीं थी, वे उनके लिए चिंतन का माध्यम थी।
2: उनकी प्रारंभिक शिक्षा चक्रबेड़िया स्थित साउथ सबर्बन स्कूल में हुई। विद्यालय के दिनों में ही उनकी प्रतिभा सबका ध्यान आकर्षित करने लगी थी। शिक्षक समझ चुके थे कि ये बालक साधारण नहीं है, उनके भीतर कुछ तो विशेष है, कुछ ऐसा जो उसे आने वाले समय में अति विशिष्ट बनाएगा।
3: सन 1879, आयु मात्र 15 वर्ष, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और परिणाम आया, आशुतोष मुखर्जी ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उस समय यह उपलब्धि असाधारण मानी जाती थी। यह सफलता केवल एक विद्यार्थी की नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा की बड़ी पहली घोषणा थी।
2: और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह वही संस्थान था जहां उस समय भारत के कई प्रतिभाशाली युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात दो महान व्यक्तित्वों से हुई, एक थे वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय और दूसरे थे नरेंद्र नाथ दत्त। वही नरेंद्र नाथ दत्त जिन्हें दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी।
3: जरा कल्पना कीजिए उस वातावरण की, एक ओर विज्ञान का उजाला, दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन, एक ओर आधुनिकता और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की गहराई, इन सब के बीच अध्ययन कर रहे थे आशुतोष मुखर्जी। यह वातावरण उनके व्यक्तित्व को और व्यापक बनाता चला गया।
2: सन 1883 में उन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें प्रतिष्ठित प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह उस समय की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन आशुतोष मुखर्जी के लिए ये केवल एक पड़ाव मात्र था। उनकी यात्रा अभी बहुत आगे तक जाने वाली थी।
3: गणित में उनकी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गणित में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और इसके बाद भौतिक विज्ञान में भी स्नातकोत्तर किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले ऐसे विद्यार्थी बने जिन्होंने दो अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज भी यह उपलब्धि अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है।
2: लेकिन एक और खास बात थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो लगातार शोध कार्यों में भी लगे हुए थे। जब अधिकांश विद्यार्थी केवल परीक्षाओं की तैयारी करते, तब आशुतोष मुखर्जी नए गणितीय प्रश्नों के समाधान खोज रहे थे। वो विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों को पढ़ा करते, उनके प्रश्नों पर विचार करते और अपने समाधान भी तैयार करते।
3: सन 1880 के दशक का भारत, जहां शोध के अवसर सीमित थे, वैज्ञानिक संसाधन कम थे, फिर भी एक युवा भारतीय गणितज्ञ विश्व के प्रतिष्ठित गणितीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
2: 1881 में उन्होंने यूक्लिड के प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रमेय का नया प्रमाण प्रस्तुत किया। ये शोध इंग्लैंड की प्रसिद्ध गणितीय पत्रिका मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक में प्रकाशित हुआ। उस समय किसी भी भारतीय विद्वान के लिए यह अत्यंत गौरव की बात थी।
3: इसके बाद उन्होंने सलमोन के प्रमेय पर महत्वपूर्ण कार्य किया, एलिप्टिक फंक्शंस पर शोध किया, डिफरेंशियल समीकरणों पर लेख लिखे, ज्यामिति और कलन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके शोधपत्र इंग्लैंड और भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे और धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समुदाय में पहचाना जाने लगा।
2: श्रोताओं, कहा जाता है कि गणित उनके लिए केवल एक विषय नहीं था, वो उनके सोचने का एक तरीका था। वो हर समस्या को तर्क और विश्लेषण की दृष्टि से देखते थे, और शायद यही वजह थी कि बाद में जब वो शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में आए, तब भी उनकी निर्णय क्षमता अत्यंत साफ और व्यवस्थित रही।
3: 1888 तक आते आते वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो चुने गए। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। यह सम्मान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता था। यह उस प्रतिभा की सार्वजनिक स्वीकृति थी जिसे पूरा शैक्षणिक जगत पहचान चुका था।
2: लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि अगर आशुतोष मुखर्जी इतने बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल गणित को क्यों नहीं समर्पित किया? वो विश्व के महानतम गणितज्ञों में स्थान प्राप्त कर सकते थे। उनके पास वो प्रतिभा थी, उनके पास वो क्षमता भी थी, फिर उन्होंने दूसरा मार्ग क्यों चुना?
3: क्योंकि उनके भीतर केवल एक गणितज्ञ नहीं था, उनके भीतर एक राष्ट्रभक्त भी था, और वे समझ चुके थे कि भारत को केवल एक महान वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो हजारों वैज्ञानिक तैयार कर सके, भारत को ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जो विश्व स्तर का ज्ञान उत्पन्न कर सकें। और शायद यही विचार उनके जीवन की दिशा बदलने में सहायक सिद्ध हुआ। देश में नई चेतना जन्म ले रही थी। लोग शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण का साधन मानने लगे थे। ऐसे समय में आशुतोष मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने तय किया कि अब उनका ज्ञान समाज के काम आएगा।
2: हालांकि गणित के क्षेत्र में उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। वो शोध कर रहे थे, नए प्रमेयों पर काम भी कर रहे थे, ज्यामिति और कलन के जटिल प्रश्नों का वो समाधान खोज रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी समझ रहे थे।
3: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं थीं। ज्ञान की रचना कम होती थी, शोध की परंपरा लगभग न के बराबर थी, प्रयोगशालाएं सीमित थीं, और भारतीय विद्यार्थियों के सामने अवसर भी बहुत कम थे। आशुतोष मुखर्जी इस स्थिति से कतई संतुष्ट नहीं थे।
2: श्रोताओं, आप जानते हैं कि वो मानते थे कि यदि किसी राष्ट्र को वास्तव में शक्तिशाली बनाना है, तो उसे ज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उसे ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए होंगे जो केवल पढ़ाए नहीं, बल्कि नया ज्ञान भी उत्पन्न करें, जो केवल डिग्रियां ना दें, बल्कि एक नया विचार भी दें।
3: यही सोच उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर ले गई। सन 1888 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बने। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में यह जिम्मेदारी मिलना उनकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
2: फेलो बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को बहुत करीब से जाना उन्होंने महसूस किया कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उचित मार्गदर्शन और अवसरों की, और ये कमी दूर की जा सकती है।
3: और इसी बीच उनका गणितीय कार्य भी जारी रहा। उन्होंने एलिप्टिक फंक्शंस, डिफरेंशियल समीकरणों और ज्यामिति पर अनेक शोध पत्र लिखे। उनके शोध पत्र केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो रहे थे।
2: शोध पत्रों की सूची देखें तो पता चलता है कि उन्होंने यूक्लिड के प्रमेयों से लेकर मोंज के समीकरणों तक अनेक विषयों पर कार्य किया। उन्होंने गणित को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये भी दिखाया कि गणित का उपयोग वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को समझने में कैसे किया जा सकता है।
3: उनकी एक और विशेषता थी, वे केवल नए शोध नहीं करते थे, वे गणित को सरल बनाने का प्रयास भी करते थे। कहा जाता है कि वे जटिल ज्यामितीय सिद्धांतों को बीज गणितीय रूप में समझाने का प्रयास करते थे ताकि विद्यार्थी उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें।
2: सन 1887 से सन 1890 के बीच उन्होंने भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्था में गणित के अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों में विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते थे। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी सरल होती, वो कठिन से कठिन विषय को रोचक बना दिया करते।
3: श्रोताओं, ये वही समय था जब उनके भीतर शिक्षक का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होने लगा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह दूसरों तक पहुंचे, जब वह समाज को लाभ पहुंचाए।
2: आशुतोष मुखर्जी का यह विश्वास था कि भारत को पश्चिम से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उन्होंने हमेशा भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान परंपराओं के संतुलन की बात की। उनका मत था कि विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन शिक्षा की आत्मा अपने समाज और संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए।
3: और उनके विचारों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिक्षा जगत में उनका सम्मान बढ़ रहा था। गणितज्ञ उन्हें अपने बीच का विद्वान मानते थे, शिक्षक उन्हें प्रेरणा मानते थे और विद्यार्थी उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे।
2: लेकिन आशुतोष मुखर्जी केवल एक विषय तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और जल्द ही न्यायिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना ली।
3: यह उनके व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता थी। एक ओर गणितज्ञ, दूसरी ओर वैज्ञानिक चिंतक, तीसरी ओर शिक्षाविद और अब एक विधिवेत्ता। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व इतिहास में विरला ही देखने को मिलता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। उनका अध्ययन इतना व्यापक था कि लोग उन्हें चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा करते थे। किसी भी विषय पर उनसे बातचीत कर लीजिए, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कानून या गणित, हर विषय पर उनकी पकड़ अद्भुत थी।
3: इसी बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में गणित के लिए सशक्त मंच होना चाहिए, और ऐसा मंच जहां गणितज्ञ अपने विचार साझा कर सकें, जहां शोध को प्रोत्साहन मिले, जहां भारतीय प्रतिभाएं विकसित हो सकें।
2: और इसी विचार के साथ आगे चलकर कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। यह संस्था भारत में गणितीय अनुसंधान की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। आशुतोष मुखर्जी इसके संस्थापकों में अग्रणी थे और लंबे समय तक इसके नेतृत्व से जुड़े रहे।
3: आज जब हम भारत में गणितीय अनुसंधान की समृद्ध परंपरा देखते हैं तो उसके प्रारंभिक स्तंभों में आशुतोष मुखर्जी का नाम अवश्य दिखाई देता है। उन्होंने न केवल स्वयं शोध किया बल्कि शोध की संस्कृति भी विकसित की।
2: धीरे धीरे उनकी दृष्टि और व्यापक होती चली गई। अब वो केवल गणित या किसी एक विषय के विकास की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे शिक्षा तंत्र के परिवर्तन की बात कर रहे थे।
3: और यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वह अध्याय जिसने उन्हें भारतीय शिक्षा जगत का महानायक बना दिया। एक ऐसा अध्याय जिसमें वे विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदलते हैं, नई संस्थानों की स्थापना करते हैं, देश भर की प्रतिभाओं को आगे लाते हैं और भारतीय उच्च शिक्षा को नई दिशा देते हैं। और अब उस समय की बात करते हैं जब भारत राजनीतिक रूप से गुलाम था लेकिन मानसिक रूप से जाग रहा था। देश में नई चेतना का उदय हो रहा था। युवा वर्ग शिक्षा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मार्ग मानने लगा था और ऐसे समय में शिक्षा संस्थानों की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी।
2: साल था 1906। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में एक ऐसा नाम सामने आया जो आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा का पर्याय बन गया, आशुतोष मुखर्जी।
3: उपकुलपति का पद संभालते ही उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाली संस्था नहीं रहेगा, यह ज्ञान निर्माण का केंद्र बनेगा। यहाँ केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाएंगे, यहाँ शोध होगा, नवाचार होगा, नए विचार जन्म लेंगे।
2: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी प्रशासन की जरूरतों के अनुसार काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य ऐसे कर्मचारी तैयार करना था जो शासन व्यवस्था को चलाने में सहायता कर सकें। लेकिन आशुतोष मुखर्जी का सपना इससे कहीं अधिक बड़ा था। वो ऐसे विश्वविद्यालय चाहते थे जो राष्ट्र की बौद्धिक शक्ति बने।
3: उन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई समाज महान नहीं बन सकता। महान समाज वह होता है जो नया ज्ञान उत्पन्न करता है, जो नए प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर खोजता है।
2: और यही कारण था कि उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रमों और उच्च अध्ययन को विशेष महत्व दिया। उन्होंने योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया, शोध वृत्तियां शुरू की और नए विभागों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त किया।
3: उनकी दूरदृष्टि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था विज्ञान शिक्षा को दिया गया महत्व। उस समय विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन आशुतोष मुखर्जी समझ चुके थे कि आने वाला युग विज्ञान का युग होगा।
2: और इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए भी अथक प्रयास किए। उनका सपना था कि भारत के विद्यार्थी विदेश जाए बिना भी उच्च स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें, और साथ ही ये भी कि भारत की धरती पर ही विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित हों।
3: उनके प्रयासों का परिणाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय का विज्ञान महाविद्यालय। यह केवल एक भवन नहीं था, यह भारतीय विज्ञान के भविष्य की नींव था।
2: कहा जाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार लोगों से सहयोग मांगते रहे, दानदाताओं को प्रेरित करते रहे और अंततः उनका सपना साकार हुआ।
3: यहीं से आगे चलकर अनेक वैज्ञानिक तैयार हुए जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। वास्तव में यदि हम आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास को देखें तो उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की दूरदृष्टि दिखाई देती है।
2: लेकिन विज्ञान ही उनकी प्राथमिकता नहीं था, उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वो भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी उतना ही महत्व देते थे।
3: उस समय अंग्रेजी शिक्षा को ही श्रेष्ठ माना जाता था, भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था। लेकिन आशुतोष मुखर्जी इस सोच से सहमत नहीं थे।
2: बिल्कुल, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा और संस्कृति से कटकर महान नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं और भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहन दिया।
3: संस्कृत, पाली, बांग्ला, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, इन सभी विषयों को उन्होंने सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया।
2: उनका विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति साथ साथ चल सकते हैं। एक और प्रयोगशालाएं हो सकती हैं तो दूसरी ओर साहित्य और दर्शन भी। एक ओर आधुनिक शोध हो सकता है तो दूसरी ओर परंपरा का संरक्षण भी।
3: यही संतुलित दृष्टि उन्हें अपने समय के अन्य शिक्षाविदों से अलग बनाती है। वे अतीत में अटके हुए व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे अपनी जड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में भी विश्वास नहीं करते थे।
2: आशुतोष मुखर्जी की एक और विशेषता थी, प्रतिभा को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वो व्यक्ति नहीं देखते थे, वो क्षमता देखते थे।
3: कई युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उन्होंने अवसर दिए, उनकी सहायता की, उन्हें आगे बढ़ने का मंच दिया, क्योंकि वे जानते थे कि एक प्रतिभा को अवसर देना राष्ट्र के भविष्य में निवेश करना है।
2: और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना व्यापक था कि विद्यार्थी उन्हें केवल प्रशासक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। वो उनके पास केवल शैक्षणिक समस्याएं लेकर ही नहीं आते थे, बल्कि उनसे वो अपने जीवन से जुड़े प्रश्न भी पूछते थे।
3: आशुतोष मुखर्जी का उत्तर केवल एक ही दिशा में होता था, परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति में ये तीन गुण हैं तो सफलता देर से मिलेगी लेकिन अवश्य मिलेगी।
2: धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी विद्वता और उनकी निर्भीकता और उनकी राष्ट्रनिष्ठा, इन सब ने मिलकर उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया।
3: इसी दौरान लोगों ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू किया, बंगाल का बाघ। यह केवल एक प्रशंसा नहीं थी, यह उनके साहस और स्वाभिमान का सम्मान था।
2: कारण था कि वो किसी भी तरह के दबाव के सामने झुकते नहीं थे। यदि उन्हें लगता कि कोई निर्णय शिक्षा या विद्यार्थियों के हित में नहीं है तो वो खुलकर उसका विरोध करते, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना खड़ी हो।
3: उनके लिए केवल पद महत्वपूर्ण नहीं था, सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं थी, सत्य महत्वपूर्ण था। और यही कारण था कि वे लाखों विद्यार्थियों की प्रेरणा बन गए।
2: श्रोताओं, जब आज हम भारत के शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि जिन संस्थाओं और परंपराओं पर हमें गर्व है उनकी नींव रखने वालों में आशुतोष मुखर्जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: लेकिन उनके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें जानना है एक न्यायाधीश के रूप में उनका योगदान, एक पिता के रूप में उनकी भूमिका और वह विरासत जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी। वे केवल एक शिक्षाविद तक सीमित नहीं थे, वे न्याय के क्षेत्र में भी उतने ही सम्मानित थे जितने शिक्षा के क्षेत्र में।
2: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके तार्किक क्षमता, गहन अध्ययन और निष्पक्ष दृष्टि ने शीघ्र ही उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई।
3: गणित ने उन्हें तर्क दिया था, विज्ञान ने उन्हें विश्लेषण की क्षमता दी थी और कानून ने उन्हें न्याय का दृष्टिकोण दिया। इन तीनों का अद्भुत समन्वय उनके निर्णयों में भी दिखाई देता था।
2: कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। उनकी पहचान एक ऐसे न्यायाधीश की थी जो तथ्यों को गहराई से समझता था और किसी भी तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होता था।
3: उनके लिए न्याय केवल कानून की भाषा नहीं था, यह नैतिक उत्तरदायित्व भी था। वे मानते थे कि न्यायालय केवल विवादों का समाधान करने का स्थान नहीं बल्कि समाज के विश्वास का केंद्र है।
2: यही कारण था कि न्यायपालिका में भी उनका सम्मान अत्यंत ऊंचा था, लेकिन जितना बड़ा उनका पद था उतनी ही बड़ी उनकी विनम्रता भी थी।
3: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था उनका पारिवारिक जीवन। वे एक अनुशासित पिता थे, लेकिन उससे भी अधिक एक प्रेरक मार्गदर्शक।
2: उनके पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रमुख राष्ट्रनायकों में गिने गए, लेकिन किसी भी महान व्यक्तित्व के पीछे कुछ संस्कार भी होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में इन आदर्शों की छाप साफ दिखाई देती है।
3: आशुतोष मुखर्जी ने अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं दी, उन्होंने आत्मसम्मान दिया, उन्होंने सत्य के प्रति निष्ठा दी, उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना दी।
2: वो मानते थे कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके चरित्र से होती है। डिग्रियां और पद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन चरित्र से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता।
3: उनका जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने कभी सुविधा का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने हमेशा सही मार्ग चुनने का प्रयास किया, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो।
2: और आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक संस्था नहीं थी, कोई एक पद नहीं था, कोई एक सम्मान नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसी बौद्धिक परंपरा का निर्माण जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया।
3: उन्होंने भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विश्व स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षा को यह आत्मविश्वास दिया कि वह केवल अनुकरण करने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि ज्ञान निर्माण करने वाली व्यवस्था भी बन सकती है।
2: श्रोताओं, उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना है और शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना है।
3: आज भारत के विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं, आज भारतीय वैज्ञानिक जो उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आज भारतीय विद्यार्थी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो पहचान बना रहे हैं, उन सब की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी जैसे दूरदर्शी शिक्षाविदों का योगदान मौजूद है।
2: उनकी दृष्टि समय से बहुत आगे थी। वह ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो ज्ञान में आत्मनिर्भर हो, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, जो विज्ञान में अग्रणी हो और जो दुनिया का केवल अनुसरण ना करे बल्कि उसे दिशा भी दे।
3: पच्चीस मई 1924, ये वह दिन था जब यह महान व्यक्तित्व भौतिक रूप से हमारे बीच से विदा हो गया। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन काल से बड़े हो जाते हैं, वे शरीर से नहीं अपने विचारों से जीवित रहते हैं। आशुतोष मुखर्जी ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है।
2: उनकी स्मृति आज भी भारतीय शिक्षा जगत में जीवित है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है।
3: जब भी कोई विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, जब भी कोई शिक्षक शिक्षा को केवल नौकरी नहीं मिशन मानता है, जब भी कोई विश्वविद्यालय नए ज्ञान के निर्माण का संकल्प लेता है, तब कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की विरासत हमारे सामने उपस्थित होती है।
2: श्रोताओं, भारत विभूति के आज के इस विशेष अंक में हमने जाना एक ऐसे महापुरुष को जिसने गणित को साधना बनाया, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया।
3: सर आशुतोष मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके विचारों को नमन, उनके योगदान को प्रणाम।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ।
3: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत विभूति। आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, आलेख मनीषा चतुर्वेदी का था और मैं था आपके साथ विजयकांत नायक
2: और मैं थी आपकी रेडियो मित्र स्वाति।
3: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस पुष्प विन्यास में आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस सर्ग में जहां रण की गर्जना से पहले संकल्प की दीप्ति जन्म लेती है। श्रोताओं, रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग की तपा भूमि से आगे बढ़ते हुए अब हम तृतीय सर्ग के द्वार पर हैं, जहां वनवास की अग्नि में तपे पांडव नव तेज के साथ लौटते हैं और विपत्ति से निखरा मानव साहस अपना स्वर पाता है। यहां शब्द शंखनाद नहीं, संकल्प की धधकती हुई शपथ है।
2: आइए श्रोताओं, अब प्रवेश करें रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में, जहां यह रथ अपने ज्वलंत अश्वों सहित इतिहास की सीमाएं लांघता हुआ हमें नई विभा, नए संघर्ष और नए उत्कर्ष की ओर ले चलेगा। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का भाग एक।
1: हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
2: मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के आगे पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी के जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षु दंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोहे जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं।
1: रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का यह आरंभ हमें एक गहरे जीवन सत्य की ओर ले जाता है। अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हुई और पांडव वन से लौटे, पर ये मात्र लौटना नहीं था, ये रूपांतरण था। वे जैसे गए थे वैसे नहीं लौटे, वे तपे हुए, निखरे हुए और भीतर से और अधिक दीप्त होकर लौटे।
2: यहाँ एक गूढ़ दार्शनिक संदेश निहित है, विपत्ति दंड नहीं अवसर है, वह हमारे व्यक्तित्व की छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। संघर्ष की अग्नि में ही मनुष्य अपनी वास्तविक सामर्थ्य को पहचानता है और उसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग।
1: वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर,
2: विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। श्रोताओं, तृतीय सर्ग के भाग दो में मानो दिनकर जी ने कहीं अपने ही जीवन के संघर्षों से उत्पन्न भावों को पांडवों की कहानी में उकेर दिया हो। जीवन जीना मानो पत्थर पर फूल उगाने की कोई कला जैसा होता है। जो पुरुष कर्मशील है उसे विपत्तियों से भयभीत नहीं होना चाहिए, और जो धीर है वह सुखों में डूबकर अपने लक्ष्य को नहीं भूलता।
1: श्रोताओं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, इन पंक्तियों में केवल पांडवों के लिए संदेश नहीं है, बल्कि ये भारत की युवा शक्ति के लिए एक कालजयी पुकार है। मानो कवि सीधे युवा हृदय से संवाद कर रहा हो और कह रहा हो, हे नवयुवक, तू कठिनाइयों से भागने के लिए नहीं जन्मा, तू उन्हें परास्त करने के लिए जन्मा है। संघर्ष तेरी बाधा नहीं, तेरी निर्माण भूमि है। विपत्ति तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। यदि तू आराम में डूबा रहेगा तो सो जाएगा, पर यदि तू संघर्ष को अपनाएगा तो जाग जाएगा। तेरी नसों में केवल रक्त नहीं, ऊर्जा, स्वप्न और परिवर्तन की शक्ति बह रही है। समय उसी का साथ देता है जो साहस करता है। इसलिए उठ, अपने भीतर की अग्नि को पहचान, विपत्तियों पर छा जा और अपने पुरुषार्थ से अपना ही नहीं युग का भाग्य लिख दे।
2: श्रोताओं, हमें अब उस रथ की आवाज सुनाई दे रही है जिसके रथ से संसार के मनोरथ जुड़ते हैं, जिसके रथ के पहिए पहिए न होकर हम सभी के काल चक्र की ओर घूमते हुए हमारे जीवन और हमारी मृत्यु का विधान तय करते हैं। आइए उसी रथ के साथ तृतीय सर्ग के भाग तीन में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं इस तृतीय सर्ग का भाग तीन। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कृष्ण कहते हैं,
1: दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे।
2: दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
1: जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरू पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र।
2: श्रोताओं, अभी आपने तृतीय सर्ग का ये भाग सुना। कथा महाभारत से ली गई है, पर दृष्टि दिनकर जी की है। यही तो विशेषता है रश्मि रथी की, कि ये केवल अतीत का आख्या नहीं, यह वर्तमान का मार्गदर्शन है। जीवन में शांति मार्ग सदैव श्रेष्ठ होता है। कृष्ण पहले दूत बनकर आते हैं, शस्त्र लेकर नहीं। ये हमें सिखाता है कि संवाद युद्ध से बड़ा होता है। अब समस्या ये है कि हमारा अहंकार उन्हें पहचान नहीं पाता। जब तक हम अपने भीतर के दुर्योधन को नहीं पहचानेंगे, तब तक विराट सत्य सामने होते हुए भी हम अंधे ही रहेंगे। दिनकर जी की कलम हमें झकझोरती है। यह काव्य केवल सुनने के लिए नहीं, आत्ममंथन के लिए है। आइए अब प्रवेश करें उस क्षण में जहां मनुष्य ईश्वर को बांधने चलता है और उत्तर में ईश्वर ब्रह्मांड का पट खोल देते हैं। सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 4 का काव्य पाठ। इसे श्री कृष्ण की चेतावनी के नाम से भी सुनते और जानते हैं।
1: शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु जलपति धनेश, शतकोट रुद्र शतकोट काल, शतकोट दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, पर मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
2: थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
1: श्रोताओं, दिनकर जी की अमर कृति रश्मिरथी हमें केवल महाभारत की कथा नहीं सुनाती, वो हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र को उजागर करती है। अतः आइए इस प्रसंग से ये सीख लेकर आगे बढ़ें कि शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है, विनम्रता ही बल है, और आत्मचिंतन ही वो दीप है जो हमें विनाश से बचा सकता है।
2: आइए सुनते हैं तृतीय सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ। भगवान सभा को छोड़ चले, कर के रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा,
1: हाय हम शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वी तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं और क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हां एक बात यदि तू मानी तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल। तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने हो तत्पर, मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। हा हा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, हसली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुटमान सिंहासन ले ले, बस बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके।
2: श्रोताओं अभी आपने कृष्ण की वाणी सुनी, वह वाणी जो केवल शब्द नहीं करुणा का समुद्र है, केवल तर्क नहीं समय की अंतिम पुकार है। वे कर्ण को समझा रहे हैं, पर वस्तुतः मनुष्य के भीतर बैठे उस द्वंद को संबोधित कर रहे हैं, जहां कर्तव्य और कृतज्ञता, जन्म और पालन, सत्य और संबंध आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कृष्ण जैसे कोई दीपक लेकर अंधेरी सुरंग में उतर आए हों, वे कर्ण को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा,
3: हे कृष्ण, बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं, ग्लानि व्यथा मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण। जिस माँ ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया, मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर? नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ? कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय? ये अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको? हे कृष्ण, जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, दोनों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा पड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निरपता दे महिमा पान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, राधा ने मां का कर्म किया।
4: श्रोताओं, कर्ण के शब्दों में अभी आपने केवल आक्रोश को नहीं सुना, एक ऐसे पुत्र का रिश्ता हुआ हृदय सुना है, जिसे जन्म तो मिला पर अपनापन नहीं मिला। यह संवाद तीर की तरह बाहर नहीं आता, भीतर धसता चला जाता है। कर्ण आज प्रश्न कर रहा है, पर यह प्रश्न केवल कुंती से नहीं है, ये उस समाज से भी है जो समय देखकर रिश्तों की चादर ओढ़ता और उतारता है। सच ही कहा गया है श्रोताओं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जिस बालक ने जन्म से ही तिरस्कार की धूप सही हो, वो अचानक मिले स्नेह पर सहज कैसे विश्वास कर ले।
2: और देखिए ना, कर्ण की वेदना केवल मातृत्व के अनुपस्थिति तक सीमित नहीं है, उसके भीतर वर्षों का अपमान अंगार बनकर धधक रहा है। वह पूछ रहा है, जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराता था, तब किसने मेरा हाथ थामा था? कौन मेरे आंसुओं पर मरहम रखता था? यही कारण है कि उसका मन आज जन्म से अधिक पालन को सत्य मानता है। श्रोताओं, लोक में कहा जाता है कि जिसने दुख की धूप में साथ दिया वही अपना कहलाया। कर्ण के लिए राधा केवल पालक माता नहीं, उसकी आत्मा का आश्रय है।
4: दोस्तों, दिनकर जी यहां केवल कर्ण की कथा नहीं लिखते, वे मनुष्य के भीतर के उस खालीपन को शब्द देते हैं जहां अपनापन और उपेक्षा आमने सामने खड़े होते हैं। कृष्ण उसे उसके जन्म का सत्य दिखा रहे हैं, पर कर्ण जीवन का सत्य सामने रख रहा है। यही इस प्रसंग की महत्ता है। यहां धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, संबंधों की कसौटी पर भी परखा जा रहा है।
2: श्रोताओं, अभी कर्ण का मन पूरी तरह खुला नहीं है। उसके हृदय में वर्षों से दबा हुआ लावा अभी और फूटना बाकी है। उसकी वाणी में अभी भी कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समय के सीने पर चोट करने वाले हैं। अगले भाग में कर्ण अपने जीवन, अपनी मित्रता, अपने अपमान और अपने धर्म का ऐसा पक्ष रखेगा जहां करुणा और प्रतिज्ञा एक साथ दिखाई देंगी। अगले अंक में सुनेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के अंतर मन का वह ज्वालामुखी जो अब धीरे धीरे पूर्ण रूप से फटने को है। तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन दीपक नेमा का, वाचन स्वर मैं भगवती सक्सेना,
4: मैं संदीप शर्मा
5: और मैं दीपक नेमा।
2: इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर विराम लेती है। आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा,
4: नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक। श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
2: और मैं दीपक।
1: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: श्रोताओं, हम अपने इस कार्यक्रम में हर हफ्ते आपको बताते हैं हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें पूरा देश और ये दुनिया ही मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने भारत देश के राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही अर्थों में वे एक महान वैज्ञानिक हैं और मिसाइलों के सृजक के रूप में विख्यात हैं।
2: श्रोताओं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। वे APJ अब्दुल कलाम के नाम से विख्यात हैं। उनका जन्म एक गरीब पर ईमानदार और सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर अत्यंत कुशल, दक्ष और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके पिता के लिए अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करना आसान काम नहीं था, पर वे विनम्र और परिश्रमी व्यक्ति थे। वे अपनी नाव पर तीर्थयात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने और लाने का काम करते थे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने प्रतिभाशाली बालक अब्दुल कलाम को रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया।
1: डॉक्टर अब्दुल कलाम के एक लेख के अनुसार उनके घर के पास कुछ सुसंस्कृत हिंदू परिवार रहते थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था। इस पुजारी परिवार के मानवीय मूल्यों ने कुछ हद तक कलाम साहब को प्रभावित किया। भगवद गीता में कही गई गूढ़ बातों और उनके संदर्भ को उन्होंने समझा। वे आज भी शुद्ध शाकाहारी और गीता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाल्यावस्था में उन्हें इस सुसंस्कृत पड़ोसी से बहुत प्रेम और स्नेह मिला। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 13 वर्ष के अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम जिला मुख्यालय के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। पिता ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक उनके साथ भी गए। उन्होंने कलाम को आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।
2: डॉक्टर कलाम ने शॉर्ट्स हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस स्कूल का संचालन रामेश्वरम के ईसाई मिशनरी द्वारा किया जाता था। वहां वे छात्रावास में रहे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद अब्दुल कलाम के माता पिता ने उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा। पढ़ाई करने के लिए वे उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अपने अध्यापकों का भी दिल जीत लिया था। हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ाई के लिए सन 1950 में वे समीप के नगर तिरुचरापल्ली गए और वहां सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। डॉक्टर कलाम वहां 4 वर्ष तक रहे। अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में उनकी रुचि भौतिकी में हो गई। BSc उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम यानी एविएशन इंजीनियरिंग कोर्स का चुनाव किया। उन्होंने मनी मन ठान लिया था कि वे विमान चालक बनेंगे। 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद अंत में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने DMIT की डिग्री प्राप्त की।
1: मद्रास का DMIT कोर्स पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम ने प्रशिक्षणार्थी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में प्रवेश लिया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने के बाद उनके सामने 2 अवसर थे। दोनों उनकी पसंद के थे। पहला था वायुसेना में भर्ती होकर पायलट के रूप में आगे बढ़ना और दूसरा था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTDAP में निदेशक का कार्यभार संभालना। उन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन पत्र भेजे और दोनों ही स्थानों पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद वे समय पर वायुसेना के साक्षात्कार के लिए गए और साक्षात्कार उनकी आशा के अनुकूल हुआ। इस साक्षात्कार के एक सप्ताह बाद उन्हें देहरादून में वायुसेना चयन समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना था। यहाँ शारीरिक योग्यता के साथ साथ अन्य अनेक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना था। ये थोड़ा सा अलग तरह का साक्षात्कार था। 25 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों का चयन किया जाना था और डॉक्टर कलाम 9वें स्थान पर थे। उन्हें लगा कि वे वायुसेना में जाने का अवसर गंवा चुके हैं। उन्हें दुख भी था। फिर उसके बाद वहां से वे ऋषिकेश गए। पावन गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्हें आत्म शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद वे पास ही स्थित शिवानंद आश्रम में गए। स्वामी जी के दर्शन कर वे बेहद प्रभावित हुए। वे स्वामी शिवानंद जी से मिले। स्वामी जी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने स्वामी जी को बताया कि वायुसेना में काम करने का अवसर खो देने के कारण वे दुखी हैं। तब स्वामी जी ने उनसे कहा, भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में होना था वो हो चुका है, इसलिए निराश मत हो। हो सकता है कि ये बेहतरी और उत्तम काम के लिए हुआ है। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। स्वामी जी की ये बातें सुनकर डॉक्टर कलाम जी को शांति मिली। इसके बाद वो वहां से चल दिए और दिल्ली आ गए।
2: कुछ समय पश्चात ही उन्हें 250 रुपए मासिक वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। शायद उनके भाग्य में यही काम करना लिखा था। वे 3 वर्ष उत्तर भारत में ही रहे। इस दौरान 1 वर्ष तक वे औद्योगिक नगरी कानपुर में भी रहे। अलग अलग लोगों से उनका संपर्क हुआ, पर उनका मन हमेशा रामेश्वरम की शांति के लिए लालायित रहता था।
1: इसके बाद उनका स्थानांतरण बेंगलुरु में नव स्थापित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हुआ। डॉक्टर कलाम कार्यभार संभालने के लिए बेंगलुरु गए। कुछ समय बाद उनके अधीन 4 वैज्ञानिकों का एक दल बनाया गया। इस दल को 3 वर्ष में पूर्ण रूप से स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट बनाने का दायित्व सौंपा गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन ये काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कराना चाहते थे। वे जब भी बेंगलुरु का दौरा करते तब इस परियोजना की प्रगति को अवश्य देखते थे। हॉवरक्राफ्ट का नाम भगवान शिव के वाहन के नाम पर नंदी रखा गया था।
2: उसके बाद कृष्ण मेनन ने रक्षा मंत्रालय छोड़ दिया और यह परियोजना भी ताक पर रख दी गई। एक बार वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के प्रमुख ने कलाम से कहा कि एक उच्चाधिकारी इस परियोजना को देखने आ रहे हैं। वे उच्चाधिकारी नियत दिन आए। उन्होंने परियोजना और उसकी प्रगति के विषय में पूछताछ की और कई सवाल भी किए। डॉक्टर कलाम को यह पता नहीं था कि वे सज्जन कौन हैं। वास्तव में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के निदेशक प्रोफेसर MG के मेनन थे।
1: कुछ समय बाद अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी भारतीय समिति ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु एक साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन ने कलाम का साक्षात्कार लिया और फिर उनको अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिस तरीके से साक्षात्कार किया, डॉक्टर कलाम उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिया गया है। अगले दिन से TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर विभाग में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। उनके अनुसार अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का माहौल बहुत ही अच्छा और अनुकूल था और सरकार के अन्य विभागों से पूरी तरह से अलग।
2: सन 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक स्थान में एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया। इसके लिए डॉक्टर कलाम को रॉकेट लॉन्चिंग में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में जाने के लिए चुना गया। पूरे परिवार को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर कलाम को विदेश जाने का अवसर मिला है। 6 महीने बाद कलाम भारत लौटे। देश का प्रथम रॉकेट नाइक अपाशे विदेश से उपहार में मिला। इसे 21 नवंबर 1963 को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। डॉक्टर कलाम ने इसके तमाम तकनीकी दायित्वों को संभाला था। उसकी सफलता के बाद वैज्ञानिक और तकनीशियनों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। इसके बाद डॉक्टर साराभाई द्वारा बुलाई गई एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि उपग्रह विमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV और कृत्रिम उपग्रहों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाए। उसके बाद 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 नामक रॉकेट थुम्बा स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया।
1: और इसी बीच सन 1968 में भारतीय रॉकेट समिति यानी इंडियन रॉकेट सोसाइटी की स्थापना की गई। भारत के पूर्वी किनारे पर मद्रास से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में श्री हरिकोटा द्वीप में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंडियन नेशनल रिसर्च कमेटी का पुनर्गठन किया गया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो नामक एक नई सरकारी एजेंसी की स्थापना की गई। इसके बाद फरवरी 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए थुम्बा में विषुवतीय यानी इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र का उद्घाटन किया। इससे किसी भी देश के वैज्ञानिक के लिए इस प्रयोगात्मक स्टेशन की सुविधा का उपयोग करना और उसका लाभ उठाना सुनिश्चित हो गया।
2: स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती 15-20 वर्षों के दौरान हमारी सेना को अतिरिक्त पुर्जे और अन्य रक्षा सामग्री के लिए पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशी शक्तियां अपनी पुरानी और अप्रचलित सैन्य सामग्री हमारे जैसे विकासशील देशों को देकर यह जताती थी जैसे वे हम पर कृपा कर रही हों। विदेशी इन उपकरणों की आपूर्ति कर विकासशील देशों से बहुत अधिक धन कमाते थे। इस कमी को दूर करने और इस पर काबू पाने के लिए एकीकृत नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। इसका पूरा उत्तरदायित्व डॉक्टर कलाम को सौंपा गया। प्रोग्राम के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद 12 से 15 घंटे तक प्रतिदिन काम करके डॉक्टर कलाम ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने मिसाइलों का जब गहन और विस्तृत अध्ययन शुरू किया तब उन्हें पता चला कि 4 प्रकार की मिसाइलें बहुत ही आवश्यक हैं।
1: पहली है जमीन से जमीन पर मार करने वाली और दुश्मन के टैंकों, जहाजों और सैन्य सामग्रियों को नष्ट करने वाली मिसाइल।
2: दूसरी है जमीन से आकाश में निर्धारित स्थल पर वार करने वाली मिसाइल। इस प्रकार की मिसाइल दुश्मन के हवाई हमलों का कारगर ढंग से सामना कर सकती है।
1: और तीसरी है आकाश से आकाश में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो आकाश में आने वाले दुश्मन के बम वर्षक विमानों और मिसाइलों की टोह लगाकर उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर सके। और चौथी मिसाइल है श्रोताओं, ऐसी मिसाइल जिन्हें लड़ाकू विमानों से दाग कर दुश्मन के ठिकानों और उनकी सैन्य सामग्रियों का सफाया किया जा सके।
2: इसके बाद रोहिणी परियोजना के प्रमुख के रूप में डॉक्टर कलाम ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने और मिलने जुलने का अवसर मिला। इसरो में उन्होंने उपग्रह प्रमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण का कार्य किया और SLV-3 की सफल उड़ान में कामयाब रहे। डॉक्टर कलाम को महसूस हुआ कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मिसाइलों के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा किए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए डॉक्टर कलाम आज भी उनके कृतज्ञ हैं।
1: अंतरिक्ष विभाग में कार्यभार संभाल लेने के बाद भी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं का लाभ उठाया। वे संगठन के निकट संपर्क में रहे। वहां पर वैज्ञानिकों के समूह ने मिसाइलों को विकसित करने में उनकी सहायता की थी। मिसाइलों के विकास में डॉक्टर कलाम ने सबसे अधिक योगदान दिया था। उनके अनुसार अग्रभाग यानी कि सामने के हिस्से पर बम लगे रॉकेट को मिसाइल कहते हैं। मिसाइल वास्तव में एक विध्वंसक हथियार है। अंतरिक्ष उड़ान में प्रयोग किए जाने वाले रॉकेट से इसका कोई संबंध नहीं है। मिसाइलों को वायुयानों, पनडुब्बियों और भूमि से दागा जा सकता है। जिन मिसाइलों को रेडियो तरंगों द्वारा या किसी आंतरिक क्रिया या यंत्र विधि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, उन्हें नियंत्रित मिसाइल कहते हैं। ये मिसाइल निश्चित स्थान पर अपने निर्धारित लक्ष्य का पता लगा सकती हैं। मिसाइल भेदी मिसाइलों का प्रयोग दागी गई मिसाइलों को उनके मार्ग में ही रोककर नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन देश मिसाइलों का उत्पादन करते थे। भारत ने पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि जैसी अलग अलग मिसाइलों के उत्पादन और निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है। श्रोताओं, भारत विश्व में छठा मिसाइल उत्पादक

0: यानी SLV-3 श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। समस्त चरणों को सही ढंग से कार्यान्वित किया गया और रोहिणी उपग्रह को निर्धारित समय पर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जब डॉक्टर कलाम केंद्र के परिसर से बाहर आए तो लाश से भरे उनके सहकर्मियों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। प्रोजेक्ट की सफलता की घोषणा तत्काल रेडियो और टीवी पर कर दी गई।
1: तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सफलता पर पूरे दल को बधाई दी। भारत इस प्रकार की असाधारण सफलता प्राप्त करने वाला विश्व में पांचवा देश बन गया। 26 जनवरी 1981 को डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद जून 1982 से डॉक्टर कलाम ने अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। कुछ समय पश्चात उनकी सेवाओं के लिए चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद डिग्री प्रदान की। इसके बाद संशोधित ASLV का निर्माण किया गया, जिसमें पेलोड 40 किलोग्राम से बढ़ाकर 150 किलोग्राम कर दिया गया। 26 जून 1984 को डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में विशेष रूप से सेना के लिए विकसित डेविल मिशन का सफल परीक्षण किया गया। इसके

0: स्थिति देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री भी आमंत्रित किया गया। इसी बीच 16 सितंबर 1985 को श्री हरिकोटा परीक्षण रेंज से त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर श्री हरिकोटा रेंज से पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम भार वाले बम ले जा सकती है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। पश्चिमी राष्ट्रों ने सफलता पर चिंता प्रकट की और 7 देशों ने भारत को आवश्यक कच्चा माल नहीं देने का निर्णय किया। परंतु इसके बाद भी अपनी क्षमता को सिद्ध करते हुए भारत ने 22 मई 1989 को सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1990 को गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। साथ ही जाधवपुर विश्वविद्यालय और उसके बाद IIT मुंबई ने उनको डॉक्टरेट की मानद डिग्रियां प्रदान की। इसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और 25 नवंबर 1999 को उन्हें केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके कुछ वर्षों बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया और उसके बाद डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। वे प्रधानमंत्री को अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक और तकनीकी नीतियों और साथ ही वैज्ञानिक विकास के संबंध में परामर्श देते और उनका मार्गदर्शन करते रहते।
1: केंद्र सरकार ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए सतह से सतह तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल विकसित की। ये 250 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसकी मालवाहन क्षमता 1000 किलोग्राम है। इसका प्रयोग एक युद्ध अस्त्र के रूप में किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने पराध्वनि प्रणाली यानी सुपरसोनिक सिस्टम विकसित किया जो शत्रु के युद्धपोतों को नष्ट कर सकती है। वायुसेना के लिए भी डॉक्टर कलाम ने एक शक्तिशाली मिसाइल विकसित की है। यह मिसाइल आकाश से जमीन पर मार कर सकती है। अब वे इसे राडार प्रणाली से जोड़कर और अधिक प्रभावी बना रहे हैं। इस प्रकार चालक रहित विमान स्वयं ही शत्रु के विमानों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकते हैं।
0: श्रोताओं, सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है और इसके बाद डॉक्टर कलाम ने कुछ वर्षों बाद प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद से त्याग पत्र दे दिया और विज्ञान की सेवा करने की योजना बनाई। उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला और इसी बीच नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने उनसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। 15 जुलाई 2002 को काफी बहुमत से डॉक्टर कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए। भारत के सर्व

0: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी एन कृपाल द्वारा उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। और इस प्रकार श्रोताओं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। श्रोताओं,
1: सदैव मुस्कुराते रहने वाले डॉक्टर कलाम सरल, विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। वे मित्रों और सहकर्मियों की बात शांतिपूर्वक सुनते हैं और उन्हें सरल ढंग से समझाते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सरल और महान वैज्ञानिक अपने प्रयासों में प्रगति करते हुए अपेक्षित सफलता प्राप्त करें।
0: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारे ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, जो आज केंद्रित था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के जीवन पर। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।